107.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन शनिवार, ज्येष्ठ मास की नौवीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 30 मई सन 2026 है। प्रातः के 5:55 हो रहे हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

कण में राम, क्षण क्षण में श्याम। हो मस्जिद में अजान या वाहे गुरु का नाम, तुम सुन लेना भगवान, करना सबके कष्टों का निदान। तुम्हारे चरणों में नमन, तुमको बारंबार वंदन। हमारी प्रार्थना स्वीकारो प्रभु, पुष्पांजलि के हर पुष्प में तुम पधारो प्रभु।

नमस्कार श्रोताओं, नई सुबह, नई किरण और नई आशाओं के साथ आप सभी को सुमंगलम सुप्रभात। ये घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि 6:01 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो। मैं हूं आपकी मित्र तरुश्री और आपके समक्ष उपस्थित हूं लेकर भक्ति और आध्यात्मिकता से महकता आपका पसंदीदा कार्यक्रम पुष्पांजलि। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का श्री गणेश करते हैं। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की चरणों की वंदना के साथ

श्रोताओं, सुबह का समय केवल जागने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को जानने के लिए होता है। पुष्पांजलि के ये सुर आपको उस सत्य से अवगत कराएंगे जो सत्य है, शाश्वत है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि मेरे यानी तरुषी के साथ एफएम रेनबो पर। माला के मोती तो हाथ से छूट जाते हैं, पर जो सुमिरन हमारी सांसों में बस जाए उसे विधाता भी नहीं छीन सकता। आइए अपनी हर सांस में उस परम परमेश्वर के नाम करें।

श्रोताओं, ईश्वर को पाने के लिए आकाश को छूने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा झुकने की जरूरत होती है। जितना हम अहंकार से झुकेंगे उतना ही हम परमात्मा के करीब पहुंचेंगे। आइए एक और मधुर भजन में अपने मन को तृप्त करें और भगवान का स्मरण करें।

श्रोताओं, दीपक मिट्टी का हो या सोने का, महत्व तो उसके लौ की है। वैसे ही प्रार्थना किसी भी भाषा में की जाए, महत्व उसमें छिपी उसकी श्रद्धा की है। तो आइए नमन करें उस देवता को जिसने हमारे जीवन में कष्ट जरूर दिए, लेकिन हमें सही मार्ग दिखाया।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: श्रोताओं, दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, पर इस

पुष्पांजलि में इस संगीत इन भजन के जरिए हम अपने भीतर एक शांति का कोना तो बना ही सकते हैं। आइए पुष्पांजलि की यात्रा को समाप्त करते हैं एक और मधुर भजन के साथ।

नमस्कार, सुबह के 7 बज रहे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण करेंगे। ये वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना के वीर सेनानियों को समर्पित श्रद्धांजलि स्थल है। वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गोमती स्थापित किया गया है, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। ये युद्धपोत 28 मई 2022 को सेवा से रिटायर हुआ था। पर्यटन मंत्री ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटक भारतीय नौसेना के इतिहास, युद्ध अभियानों, तकनीकी दक्षता और समुद्री सुरक्षा की व्यापक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस भर्ती प्रक्रियाओं में तकनीकी आधारित निगरानी को और सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की समीक्षा बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस को और अधिक सक्षम, आधुनिक और प्रभावी बनाने की दिशा में ये वर्ष महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश पुलिस बल में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है। श्री योगी ने कहा कि भर्ती एवं पदोन्नति की सभी प्रक्रियाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी हों और अभ्यर्थियों की सुविधा और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन खरीफ अभियान 2026 का कल समापन हो गया। इस सम्मेलन में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। सम्मेलन में खरीफ फसलों की रणनीतियों, उन्नत कृषि तकनीकों और किसानों के कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों, कृषि विशेषज्ञों और अधिकारियों ने सहभागिता पर आगामी खरीफ सीजन को सफल बनाने का संकल्प लिया। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली से जनजीवन प्रभावित हुआ है। आगरा में कल शाम आई आंधी और तेज बारिश के कारण मकान गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग घायल हो गए। तेज आंधी से कई इलाकों में बिजली के खंभे भी गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी प्रदेश के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। 1 जून से तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM रेनबो।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।
4: सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
5: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
4: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

नमस्कार, आदाब और एक बेहद सी रूहानी सुबह जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो और आपके साथ है आपकी दोस्त तरुश्री और लेकर आई है आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम सदाबहार गीत, जिसमें हम एक बार फिर से उस दौर में चलते हैं जहां पर जो गाने हैं ना वो गाने नहीं कहानियां हैं, कुछ दर्द है, कुछ एहसास है, कुछ प्यार भर

दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि वक्त की धूल से आईने धुंधले हो सकते हैं पर यादें नहीं। आज के शोर शराबे वाले दौर में ये जो पुराने गाने हैं, ये महज संगीत नहीं है बल्कि वो टाइम मशीन है जो हमें उस दौर में सीधा ले जाते हैं, जहां पर ये जो गाने, ये किस्से ऐसे होते हैं जो मन को छू जाते हैं और कुछ ऐसी बातें याद आती हैं जैसे हमारे बचपन का आंगन, हमारी पहली मोहब्बत की वो अधूरी चिट्ठी या स्कूल की वो पुरानी सी गली जो हमें ले जाते हैं इन शोर से दूर। ये जो नगमे हैं, सदाबहार गीत हैं, ये शोर नहीं सुकून है, इनमें अल्फाज हैं, इनमें जज्बात हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सदाबहार गीत मेरे यानी तरुषी के साथ। 7:16 हो चुके हैं और आप अगर चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं, बताइए कि ये सदाबहार गीत आपको कैसा लग रहा है। जी हाँ, FM रेनबो लखनऊ @gmail.com पर बताइए मुझे। और एक और चीज़ बताइए कि ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये जो सदाबहार गीत है, इसमें कैसे नगमे आपको सुनना पसंद है, सवेरे सवेरे कैसे गाने आपको सुनना पसंद है। ऐसे गाने जो थोड़ा सा तरोताज़ा कर दें, या फिर ऐसे गाने जो आपको उन गलियों में ही खो जाने को कह दें। तो आप बताइए हमें। ईमेल आईडी आपको पता है, fmakashwanilakhnau@gmail.com। मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तब तक इंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा ट्रैक जो आपके लिए बेकरार बैठा है।

दोस्तों कहते हैं कि जब दिल का दर्द आंखों के रास्ते बाहर आता है तो वो आंसू नहीं सुरों की एक अनकही दास्तां बन जाता है। तो आइए अब इस सफर में एक ऐसे साफ पाक मौसिकी से जुड़ते हैं जो सीधे रूह तक जाती है।

दोस्तों की जैसे वादा हुआ था कुछ मेल्स हमारे पास आए हैं और मैंने पूछा था कि किस तरह के नगमे आप सुनना चाहेंगे या फिर क्या ये नगमे सुनकर आपको याद आता है। तो बड़ी ही प्यारी सी मेल आई है अमित बहेलिया जी की। लिखते हैं कि बचपन का हर एक लम्हा याद आता है, वो दोस्त जिनके साथ मैं नहर में नहाने

और मैंने पूछा था कि किस तरह के नगमे आप सुनना चाहेंगे या फिर क्या ये नगमे सुनकर आपको याद आता है, तो बड़ी ही प्यारी सी मेल आई है अमित बहेलिया जी की। लिखते हैं कि बचपन का हर एक लम्हा याद आता है, वो दोस्त जिनके साथ मैं नहर में नहाने जाता था, क्रिकेट मैच खेलता था, और वो मेरे दोस्त जिनके साथ क्लास में पढ़ता था, टीचर्स जिनसे मैं डरता था और कुछ जिनसे मैं डरता नहीं था, सब कुछ याद आता है। आज मैं दूसरे प्रदेश में गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मुझे सब सारी यादें याद आती हैं। शायद जीवन की सच्चाई यही है कि आगे बढ़ने पर लोग छूट जाते हैं, सभी को अलग अलग दिशाओं में जाना होता है, सब सफल हो जाते हैं, यही मेरी इच्छा है। बहुत ही अच्छी मेल, धन्यवाद आपके लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल के लिए। और सुधांशु जी की मेल आई है मेरे पास, ये बख्शी का तालाब लखनऊ से लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार गीत बहुत अच्छा लग रहा है और आवाज़ बड़ी अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच, लग रहा है कि आज मेरा गला ठीक हो गया है। और लिखते हैं कि ये आपने जो मेल में तरु दीदी लिखा है ना, थैंक यू सो मच, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगा को कोई अपना मिल गया। आगे बढ़ते हैं और मेल आई है जावेद अख्तर जी की, लिखते हैं कि सदाबहार गीत में जो दर्द भरे गीत आप पेश कर रही हैं वो गाने दिल को छू जाते हैं, इन गीतों के बीच शेरो शायरी से भरा अंदाज अच्छा लग रहा है, खुशनुमा बना देता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस मेल के लिए और प्यार भरी तारीफ के लिए। वैसे मेरी ये हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप सभी को अच्छे अच्छे गाने सुनाऊं, जो मुझे पसंद आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पसंद आएंगे, तो इसीलिए मैं चुनकर वही गाने सुनाती हूं जो मुझे पसंद है। उमा शंकर शर्मा जी का भी मेल आ चुका है और लिखते हैं कि आज उनको भजन बहुत अच्छे लगे और ये जो सदाबहार गीत है वो भी अच्छा लग रहा है, और लिखते हैं कि कौन से गाने इन्हें पसंद जो मैंने पूछा, तो लिखते हैं कि आई कैन से द टाइप ऑफ सॉन्ग्स यू आर प्लेइंग आर परफेक्ट फॉर दिस शो। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा आपकी तारीफ सुनकर। इमोशन, मीनिंग, लव, मैसेज, फ्रेशनेस, हर एक चीज़ रहती है इन सदाबहार गीत में, और सच बताऊँ तो मुझे भी हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ना, ये उस दौर में ही पहुँचा देता है और एक एक गाना चुन चुन के एक अलग एहसास देता है। और एहसास से याद आया कि आज जो मौसम है ना वो बड़ा अच्छा हो रहा है ना, गर्मी से जो राहत मिल रही है अच्छा हो रहा है, लेकिन हाँ एकदम से आंधी तूफान भी थोड़ा सा जहरीला लगने लगता है, लेकिन फिर भी वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अपना ये जो मौसम है ना वो कहीं ना कहीं हमारे जो म्यूज़िक का सफ़र है उसे और सुहाना बना देता है। तो आप सभी के लिए एक और खूबसूरत बेहद प्यारा नगमा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: दोस्तों मेल्स तो आती जा रही हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं बिना देर किए वो मेल्स शामिल कर लूँ। महेंद्र दीपन जी का मेल आया है और उन्होंने कुछ लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है कि किस तरह के गाने उन्हें पसंद है। और आपको बता दूँ कि अभी मेरी लिस्ट में ना आपकी लिस्ट से मिलता एक सॉन्ग है, वो आपको अभी सुनने को मिलेगा, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इतने खूबसूरत मेल के लिए और इतनी अच्छी क्रिएटिविटी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

कृष्ण कुमार जी हमें मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि प्रातःकाल की प्रस्तुति अत्यंत सुंदर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति, अत्यंत मार्मिक प्रस्तुति है। बहुत बहुत धन्यवाद इतिक्लिश हिंदी के लिए। परंतु गीत सब कुछ भूल कर सुनने का मन करता है। बात तो सही है और ये गाने भी इसीलिए हम आपको सुनाते हैं कि आप अपनी टेंशन, अपनी जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, उन सबको भूल के थोड़ा सा इस संगीत में खो जाइए तो आपको और अच्छा लगेगा। और कहते हैं ना कि जब एनर्जी और इतने अच्छे म्यूज़िक का साथ होता है तो दिन अपने आप खूबसूरत हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं, इसका आपका बहुत आभार, आपने मेल किया। और योगेंद्र कुमार जी मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि मॉर्निंग वॉक के दौरान आप हमें न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुन रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमें मुजफ्फरनगर से मेल कर रहे हैं और इतना अच्छा लगता है सच में कि जब इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्त हमें मेल करते हैं और अपनी बातें बताते हैं, अपनी जो रोज़मर्रा की भी जो एक्टिविटी होते हैं ना उसमें हमें शामिल करते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है। छोटी सी बात है मगर बड़ी बात है। वारिस अली जी भी हमें मेल कर रहे हैं और लिख रहे हैं सदाबहार गीत बहुत अच्छा लग रहा है और खूबसूरत गाने हैं। शिद्दत से हमें 6 बजे से सुन रहे हैं, आपका और हमारा साथ अभी और भी बना रहेगा। धन्यवाद वारिस अली जी। और वैसे भी जो मौसम इस तरह से खुशगवार है, अभी तो मुझे नहीं पता कि बाहर का कैसा मौसम है, लेकिन जब मैं आई थी तो आज ऐसा लग रहा था कि मौसम तो आज खुशगवार ही रहने वाला है। संजय कुमार वर्मा जी हमें जानकीपुरम विस्तार लखनऊ से मेल कर रहे हैं और इन्होंने लिखा है कि इनको कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और गाने भी अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गाने की ओर और तब तक एंजॉय कीजिए और मैं फिर वापस आती हूँ।

वेलकम बैक दोस्तों, 7:51 का वक्त और सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं मेरे यानी तरुषी के साथ, और सिलसिला कुछ ऐसा जारी है। आज अच्छा लग रहा है आप सबकी मेल्स पढ़कर, और उमा शंकर जी बोलते हैं कि मेरे मेल पढ़ने के लिए धन्यवाद, तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतने खूबसूरती से वो जो मेल भेजा ना, मुझे अच्छा लगा आपके आपका मेल पढ़ के। और मनोज सक्सेना जी हमें भेज रहे हैं मेल और लिखते हैं कि 5:55 से सबसे पहले जो म्यूज़िक आती है उससे एहसास होता है कि सुबह हो गई है। ये सिर्फ आपके घर का आलम नहीं है, मैं सच बताऊँ तो ये बहुतों के घर का आलम है, उसमें एक घर मेरा भी शामिल है। जब ये सुबह होती है ना, 5:50 से अब होती है, पहले 53 से होती थी, तो हमारे यहाँ ट्यून इन हो जाया करता था एफएम रेनबो सुबह से, और एक एक जो प्रोग्राम है वो अपने आप में खूबसूरती बटोरे हुए है। चलिए आगे पढ़ते हैं आपका मेल और लिखते हैं कि उसके बाद जो आप गीत सुनाते हैं और उसे जीवन का हर एक पहलू याद आता है, चारों तरफ घटित घटनाएं याद आ जाती हैं, परिवार के सदस्यों की याद आ जाती है, भाई बहन के रिश्ते, त्योहार का एहसास, वो सब कुछ जीवंत कर देता है जो आप घर से दूर होकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा लगता है कि हम सब एक ही घर में हैं और आप लोगों का तरीका कहीं दूर जाने ही नहीं देता। बहुत खूबसूरत लाइन लिख दी आपने मनोज जी, ऐसा कि मेरा और आपका रिश्ता एफएम का रिश्ता। ये मनोज सक्सेना जी सेक्टर ई आशियाना लखनऊ से हमें मिल कर रहे हैं, और सच में ऐसा ही है आपका और एफएम रेनबो का रिश्ता। हरीश आर्या जी भी मेल कर रहे हैं और लिखते हैं कि पुष्पांजलि में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ज्ञान की बातें होती हैं मगर भजन बहुत नहीं होते, लेकिन मेरे हिसाब से आज आपको ऐसा एहसास नहीं हुआ होगा क्योंकि भजन मैं बहुत चुन चुन कर लाती हूँ आप सबके लिए, जो मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, ऐसा लगता है मैं उनमें खो गई हूँ, वही भजन मैं बजाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसी संगीत में, उसी भजन में आप खो जाएं, और ये जो सदाबहार गीत है वो भी इसी तरह चुन कर लाती हूँ मैं आपके लिए, और ऐसा ही गीत एक और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

अच्छा ऐसा है ना कि ये गानों के बीच में और इस तरह से बातों के बीच में खो गए कि समय का पता ही नहीं चला, 7:55 हो रहा है और इसी खूबसूरत गीत के साथ मैं ये सफ़र कंप्लीट करती हूँ और इस प्रोग्राम को वाइंड अप करती हूँ। लेकिन अभी आपका मेरा साथ तो बाकी है। जी हाँ, अभी मैं फिर से लौटूंगी 8:15 पर गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर। तब तक बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है, दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है,
3: रंग दे तुम गेरुआ।
2: रात में तब सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है,
4: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
2: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो पर।
5: ऐसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
10: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, is Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko workout karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
9: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
11: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
9: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

0: ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2% बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
2: दिस इज ऑफिशियल विजिट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
3: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्ण तया बदलने का निर्णय किया है। चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से

सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल SAD को 192 और

0: का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। उड़ीसा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इनकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिव कुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धारमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: वेरी गुड मॉर्निंग.
1: गुड मॉर्निंग टीचर.
2: गुड मॉर्निंग बेटा.
3: गुड मॉर्निंग बॉस.
4: गुड मॉर्निंग मम्मा.
5: गुड मॉर्निंग.
6: गुड मॉर्निंग.
7: गुड मॉर्निंग.
8: गुड मॉर्निंग.
9: गुड मॉर्निंग.
10: Current affairs, history, birthdays, traffic, weather, music or entertainment. Sab kuch milega Morning Breakfast Show, Good Morning Lucknow mein. Har subah 7:15 se, only on Rainbow, Dhadkan Lucknow ki.
11: हवा में एक अजीब सा सुकून और सादगी है. हवा में एक अजीब सा सुकून और सादगी है. ऐसा लगता है आज मौसम में भी आशिकी है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
12: वेरी गुड मॉर्निंग तरुषि. कैसी है आप भाई? सुबह से आपकी सब हम जो आपके दिल के अंदाज है वो सब सुन रहे हैं. आप ऑनवेयर हैं, ऑन एयर हैं शाम सुबह 6 बजे से.
11: बिल्कुल बिल्कुल.
12: तो सुनते सुनते सुनते सुनते आपके दिल में जो इस समय भाव उमड़े,
11: yes.
12: वो सुन के तो बहुत दिल खुश हो गया.
11: बिल्कुल सही कहा. अब आप बाहर से आई हैं तो आप आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि बाहर का मिजाज कैसा है, मौसम का मिजाज कैसा है.
12: उसके बारे में क्या बताना, जो इतने दिनों से जो इस समय चल रहा था वो जो तपन वाली गर्मी चल रही थी उससे इतनी राहत है, इतनी ठंडी, इतनी अच्छी हवाएं कि इस वक्त लोग अच्छी तादाद में सड़कों पर यानी कि आना जाना या कहीं वॉक पर निकलना कुछ भी जो भी जिस भी काम से, तो वो सब इस समय अच्छी खासी तादाद में लोग सड़क पर दिखाई पड़ रहे हैं. सबसे बड़ी बात खुशी की है. और साथ में वो जो एक सुबह सुबह वाला तड़का चलता है ना, जूस है, चाय है, ये सब चीजें भी खूब आराम से लोग इस समय आनंद उठा रहे हैं क्योंकि मौसम उनका तहे दिल से साथ दे रहा है.
11: बिल्कुल. और अगर ऐसे बात है तो मैं आपको बता दूं, वैसे भी आज वीकेंड है और वीकेंड में तो आप जानती हैं कि क्या होता है ना. वीकेंड में हमारा बहुत ही बढ़िया मौसम और इस तरह का मौसम जब रहता है वीकेंड पे तो हम लोग अच्छे से प्लान्स बना सकते हैं. तो अपने श्रोताओं को बता दें कि भाई आप सभी को भी गुड मॉर्निंग. शुरू हो चुका है गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम और आपके साथ दो दोस्त जुड़ चुके हैं. मैं हूं तरुश्री और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं
12: रत्ना शुक्ला है आपके साथ. तो बस हम दोनों के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ 100.7 FM रेनबो पर आपके साथ ही आता है प्रोग्राम सुबह 8 से 10 बजे के बीच में, सुबह 8:15 से 10 बजे के बीच में.
11: बिल्कुल. और मौसम की बात हो रही है और बारिश के आसार है तो क्यों ना ये गाना तो बनता है ना.

0: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। दिन की सकारात्मक शुरुआत विद आज का मॉर्निंग मंत्रा।
1: भाई 8:23 का वक्त, प्रोग्राम में अब बारी है एक पॉजिटिव तड़के का। तो आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या बोलता है रत्ना?
2: मॉर्निंग मंत्रा की ओर बढ़ते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने सुबह से एक पॉजिटिव सोच के साथ एक अच्छी सी बात करना शुरू कर दी है ना, और अभी भी वही कुछ उसी टाइप का कहने जा रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा में। सकारात्मक सोच से हर दिन सुंदर बनता है। आज का दिन आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन हो, ये सिर्फ आप और आप कर सकते हैं, और इसको जरूर करिएगा। तो सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए और अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, और इसी सोच के साथ अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ कुछ भी करने की ठान लें तो मेरे ख्याल से सब कुछ पॉसिबल है। तो और ये गाना जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ ना, ये भी पॉसिबल है अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगे ना, तो चांद तारे क्या है, हम सब कुछ कर लाएंगे आपके लिए।
2: बिल्कुल।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
3: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
4: जी हाँ, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। जो अभी अभी हमसे जुड़े हुए हैं, 8:27 का वक्त हो चुका है और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग लखनऊ।
5: बिल्कुल सही कहा आपने तरु कि अभी भी जो हमसे जुड़े हैं, यानी कि आज कुछ छुट्टी का दिन है तो हो सकता है लोग थोड़ा फुर्सत से उठे हो।
4: वैसे भी फुर्सत से क्या, जिनका दिन होता अभी फिर भी फुर्सत से उठते हैं।
5: तो बस जिन्होंने अभी भी अपना स्विच ऑन किया है रेडियो, तो 100.7 FM रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। उसमें अब हम कुछ खास बात करने जा रहे हैं जो आज के दिन से जुड़ी, यानी कि 30 मई से जुड़ी हुई स्पेशल सी बात है।
4: जी, और आज देखा जाए तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है उनके लिए जो पत्रकारिता से संबंध रखते हैं। और पत्रकारिता जो है ना, जर्नलिज्म जिसे हम बोलते हैं, हाँ। आजकल की युवाओं में बड़ा क्रेज है।
5: बिल्कुल,
4: और कहीं ये पत्रकारिता कोई एक आज के टाइम पर लोगों ने पहले सोचा कि कोर्स है, नहीं, पत्रकारिता एक जज्बात है, आपका अंदर का हुनर है, ये एक भावना है जो आपके अंदर जागृत होती है।
5: अपनी भावना से आप बहुत कुछ क्रिएट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसमें जब एप्रिसिएशन मिलता है तो फिर बस क्या ही,
4: बस आपका करियर बन गया।
5: बन गया। तो हिंदी पत्रकारिता के कंट्रीब्यूशन को एप्रिशिएट करने और पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है। कहते हैं समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकार करते हैं। इसके अंतर्गत समाज के मुद्दों, घटनाओं और इसके साथ संदेश, सूचना, समाचारों को देश भर के लोगों तक पहुंचाया जाता है।
4: जी, और आपको पता है कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन साल 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक अखबार उदंत मार्तंड, यानी उगता हुआ सूरज इसका मतलब हुआ करता था, कोलकाता से शुरू किया था। और आज हमारे देश के सभी निष्पक्ष और जाबाज जो पत्रकार है ना, उनको ये समर्पित है।
5: बिल्कुल, और ये भी कहते हैं कि पत्रकारिता एक जुनून है, साहस है, वो दर्पण है जो समाज की सच्चाई को आईना दिखाता है, और दूसरों को रोशनी देने के लिए पत्रकार खुद काफी हद तक जलता भी है।
4: बिल्कुल सही कहा। और ये जो आज का दिन विशेष है, हाँ। वो उन सारे पत्रकारों को मैं एक तरह से सैल्यूट भी करती हूँ कि कितनी जाबाज तरीके से वो इस अगर करियर में आगे बढ़े हैं, या उनके अंदर अगर वो जज्बा ना होता तो कैसे हमें वो सब चीजें देखने या पढ़ने या सुनने को मिलती जो हम जिन चीजों से अवगत ही नहीं है।
5: बहुत सी चीज़ों से अवेयर हो पाते हैं, और अवेयर होने के साथ साथ कुछ हमें पॉजिटिव दिखता है उसको अपनाना है, या कहाँ हम गलत थे वो पत्रकारिता के थ्रू हम तक संदेश आता है सही सही, तो वो सब चीज़ों के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यही हम दोनों की तरफ से, पूरी एफएम रेनबो टीम की तरफ से, सभी पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की दिल से शुभकामनाएं।
4: बिल्कुल, और आज एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है,
5: हाँ।
4: उस सब्जी के बारे में,
5: हाँ।
4: जिसके बिना हर सब्जी अधूरी
5: है, वो राजा सब्जी है।
4: बिल्कुल सही कहा। वैसे तो राजा सब्जियों का राजा किसे कहते हैं? बैगन है ना,
5: हाँ।
4: क्योंकि उसके सिर पे ताज होता है। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो बैगन भी अधूरा है,
5: अधूरा है
4: अगर उसके साथ वो आलू ना हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। और आपको बता दें कि

0: ये आपको लगेगा कि अरे आलू का भी दिन होता है तो आपको पता है
1: भाई हमारे लिए तो आलू का हर दिन होता है क्योंकि आलू के बिना कुछ किचन में हो ही नहीं पाता।
0: अरे मैं बताऊँ कुछ कुछ घरों का आलम ये है कि उनके यहाँ कुछ भी बनता है तो उसमें आलू पड़ता है चाहे वो भिंडी ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं इसकी इसकी स्वयं एक मतलब मैं सबूत हूँ,
1: गवाह हूँ।
0: मैंने देखा कि घर में आलू में भिंडी में आलू अरे तुरई में आलू परवल में आलू तो समझ में आता है
1: बिल्कुल।
0: तो मैं वही कह रही हूँ आलू है सबका साथी
1: बिल्कुल
0: और हम सब सब खाएंगे आज साथ में।
1: और इतनी वैरायटी भी तो बनती है आलू की, चाहे उबाल के बनाइए चाहे कट, मतलब क्या क्या नाम लो। फिलहाल आप पहले आप श्रोताओं को पूरी बात बता दीजिए।
0: ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि ये मनाया क्यों जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने आज के दिन को आलू जैसी महत्वपूर्ण फसल के महत्व को समझाने के लिए ये दिन निर्धारित किया है जिसे दुनिया भर में मनाया जाता है। और इसका मेन कारण ये है कि हमारे देश में या हमारे पूरे विश्व में जो भुखमरी है वो खत्म करने का एक प्रण लिया गया था और इसी में ही ये बहुत बड़ा योगदान है जो आज हम आलू को आज के दिन हम नमन करते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि आलू में समोसे में आलू है, ठीक है, वटाटा वड़ा में आलू है। और जिस कल्चर में पहुंच जाएं आप, कोई भी कल्चर हो दुनिया का, वो आलू के बिना अधूरा है। फ्रेंच फ्राइज खाते हैं आप?
1: बिल्कुल खाते हैं
0: बिल्कुल। अब फास्ट फूड में आलू के बिना
1: सैंडविचेस में कई तरीके से आलू का यूज होता है।
0: बस आप सोच लीजिए बिना आलू के आप जीवन आप एक बारी सोच के देखिए कैसे रहेगा।
1: किचन में कुछ हो ना हो, कोई सब्जी हो ना हो, लेकिन आलू होना चाहिए।
0: आलू है तो सब कुछ है, सब कुछ मुमकिन है। तो इसीलिए आलू के लिए आज का दिन हम एक तरह से समर्पित करते हैं। और जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक रेनबो ऐसे ही बनता रहेगा।

0: खबर तो खबर होती है और कुछ लोग उसके बिना अपना दिन शुरू ही नहीं कर पाते।
1: हाँ बिल्कुल,
0: अगर सामने अखबार है, अगर कुछ लोग पढ़ते हैं टाइम देते हैं, कुछ लोग जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी रीजन से, तो पूछते हैं कि भैया इस पेज पे या इस न्यूज को पढ़ के बता दो कि आज इस बारे में क्या निकला है। उनका एक पर्टिकुलर एक कॉर्नर होता है या पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है या उनका जो इंटरेस्ट होता है वो जरूर उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज होती है अखबार में तो वो जानना चाहते हैं। तो हम आज आपके लिए यही मुद्दा लेकर आए कि अखबार का वो कौन सा पन्ना है, कौन से आपका इंटरेस्ट का सबसे विषय है जिसे आप सबसे पहले जानना या पढ़ना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसमें मेरे ख्याल से कि जो अहम खबर होती है ना, जो हमारे पास हमारे चाहे वो मोबाइल पे आए चाहे वो अखबार के रूप में आए, और अखबार के रूप में कहते हैं कि जो भी न्यूज़ हम पढ़ते हैं वो एकदम सही होती है, यू वेरीफाइड होती है, किसी भी हम अखबार में पढ़ते हैं तो हमें उस पर भरोसा होता है
0: कि ऐसा
1: है सटीक। लेकिन आज के डिजिटल युग में हमें कहीं से भी अगर न्यूज मिलती है तो वो कहीं ना कहीं ये हमें आजकल तो AI का जमाना है,
0: बिल्कुल
1: है ना, और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कई बार ऐसी भी न्यूज सामने आती है सोशल मीडिया के जरिए जो कि हम भरोसा कर लेते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हैं।
0: बिल्कुल, यानी कि आपका इशारा है फेक न्यूज की।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, अब आपने पकड़ा मुद्दा। तो जो फेक न्यूज जिस तरह से हम मतलब हम इसका शिकार हो जाते हैं क्योंकि हमें भी ये चीज नहीं पता है कि ये सही है या गलत, तो आप हमें बताइए कि पहले तो दो चीजें आपको बतानी है, एक तो ये कि जो अखबार में कौन सा ऐसा या न्यूज में कौन सा ऐसा पार्ट है, ऐसा सेक्शन है जो आपको पसंद है और जिस पर सबसे पहले आपका ध्यान जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है वो स्पोर्ट्स हो,
0: स्पोर्ट्स हो या फिर आपके राशिफल में लोग बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है, बॉलीवुड न्यूज है और इसके अलावा कुछ पजल है और कई और भी बातें, कई क्षेत्र के न्यूज रहती है अखबार में
1: जी। और इसके अलावा आप हमें ये बताइए कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज जैसी चीजों को कैसे रोका जा सकता है, इस पर आप अपने हमें विचार भेजिए fmakashwani.lucknow@gmail.com पर।
0: बस आपके मेल आना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हम आपके मेल भी ऑन एयर करेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ रत्ना और तरुषी के साथ।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: वेल, आप सबको बता देते हैं 8:45 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, तरुषी और रत्ना शुक्ला के साथ। और आप जुड़ चुके हैं ना हमारे साथ?
3: बिल्कुल, मेरे ख्याल से बहुत सारे और लोग भी जुड़ चुके हैं हमसे। हाँ। और ट्यून कर चुके हैं FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: और इस पर अब हम इस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं कि आज हमारे शहर में कौन कौन से आयोजन होने को है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
3: बिल्कुल, तो उसमें एक आपको बता दें, एरर यूनिवर्सिटी की ओर से शिशु माँ सुरक्षा योजना के तहत कार्यक्रम मिनी ऑडिटोरियम में एरर यूनिवर्सिटी में आयोजित है, और जो कि सुबह 11 बजे से होगा। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जरूर वहां जा सकते हैं।
2: इसके साथ ही सत्यम साहित्य संस्था गोमती नगर की ओर से पुस्तक लोकार्पण समारोह यूपी प्रेस क्लब में दोपहर 3:30 से होने को है। अगर आप इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो जरूर जा सकते हैं यूपी प्रेस क्लब
3: जी। और आपको बताएं, खैराबाद फाउंडेशन की ओर से सदाए जिया ए सूफी नाइट उर्दू अकादमी सभागार में 6:00 से आयोजित है।
2: और इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ एवं रंग भारती के तत्वाधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस की 200वीं वर्षगांठ पर समारोह उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में होने को हजरतगंज में, जो कि 6:00।
3: तो देखिए, आज के दिन में बहुत सारे इम्पोर्टेंट दिवस कुछ आयोजन अच्छे हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और आपको एक और अहम बता दें कि देश के नायकों यानी कि जो नौसेना शौर्य वाटिका का आज लोकार्पण है, जो कि हमारे नौसेना के वीरों को सम्मान और शौर्य के लिए समर्पित ये जो वाटिका है, इसमें आप जा सकते हैं, जो कि माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये लोकार्पण होगा। साथ में रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, राजनाथ सिंह जी शामिल होंगे। और इसका ये जो आयोजन है ये 11:00 से होगा, जो कि आज ही है 30 मई 11:00 से। और इसको ये जो स्थान है वो सीजी सिटी भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम के प्रवेश द्वार संख्या 5 के निकट, वहां पर इसका लोकार्पण है। आप इसमें जाकर शिरकत कर सकते हैं और देख सकते हैं, बहुत सारे मुख्य आकर्षण भी हैं।
2: बिल्कुल, और नौसेना बैंड की प्रस्तुति भी वहां पर होने को है
3: जी।
2: और इसके साथ नौसेना शौर्य वाटिका की जो खास खास बातें हैं, युद्धपोत INS गोमती के उपकरण एवं वेपन्स के इसके वहां पर होंगे, देखने को मिलेंगे आपको। उसके साथ साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो वहां और क्या हो सकता है?
3: जी हाँ, वहां टोही विवान TU-142 फूड कोर्ट भी है वहां पर, और काफी सारी शॉप्स हैं, बहुत ही चीजें देखने को मिलेंगी आपको। और नौसेना में अगर आप जरा भी रुचि रखते हैं ना, तो वहां पर जाके आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप जाइए वहां पर, देखिए इस वाटिका को, आपके लिए ही ये वाटिका है, आपके ज्ञान को और बढ़ाएगी, आपको अवगत कराएगी कि जो हमारे देश के ये जो नौसेना के जो वीर लोग हैं वो किस तरह से संघर्ष करते हैं और हमारे देश की रक्षा करते हैं।
2: तो कुल मिलाकर अगर बात करते हैं तो देश के नायकों को सम्मान, नौसेना के वीरों का शौर्य गान वहां पर आपको कुल मिलाकर देखने को मिल सकता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इन सब बातों के साथ एक इंटरटेनमेंट का सिलसिला यानी कि एक ट्रैक, एक सॉन्ग आप तक भेजते हैं।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: दोस्तों 8:53 का वक्त, तो देखिए बातें करते करते कैसे समय बीत जाता मुझे पता नहीं चलता
2: क्योंकि हम लोग को पिटाने में बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो लगता है सारी चीजें श्रोताओं तक पहुंचा दें जिससे उनको कहीं ना कहीं उनके लिए यूजफुल हो सकती है वो बातें। तो अभी कुछ ऐसी बात, हम काम की खबर आपके लिए लेकर आए, पता है, और खासतौर से एजुकेशन से जुड़ी ये न्यूज़ है। और इस एजुकेशन से जुड़ी न्यूज़ में हम बात करते हैं नेशनल पीजी कॉलेज स्नातक प्रवेश परीक्षाएं 7, 8 और 9 जुलाई को होने को हैं, और ये जो डेट फाइनल की गई 31 मई तक है आवेदन का मौका, यानी कि आज 30 हो गई है।

0: कल है 31 मई तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के साथ साथ
1: जी हाँ आपको बताएं कि ये जो प्रवेश परीक्षाएं हैं इनकी जो तिथियां हैं वो ये 7 जुलाई को बीए जेएमसी सुबह 10:30 से होगा, बीएससी का जो गणित है यानी गणित समूह है वो दोपहर 2:30 से है, 8 जुलाई को बीकॉम सुबह 10:30 से, बीएससी बायो ग्रुप जो है वो दोपहर 2:30 से है, 9 जुलाई को है वो बीसीए बीकॉम एमसीए के एसीसीए के साथ, और बीकॉम ई कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीवॉक बैंकिंग और फाइनेंस, बीवॉक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ई गवर्नेंस सुबह 10:30 से है, और बीबीए डिजिटल बिजनेस, बीपीएच पब्लिक हेल्थ, बीवॉक हॉस्पिटल मैनेजमेंट, बीवॉक होटल प्रबंधन यानी कि ये हॉस्पिटल होटल मैनेजमेंट, बीवॉक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीवॉक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीवॉक फिजियोथेरेपी दोपहर 2:30 से है। तो इस ये जो कार्यक्रम है यानी कि जितने भी कोर्सेज हैं इनके बारे में विस्तृत जानकारी है वो आप आधिकारिक वेबसाइट से ले सकते हैं नेशनल पीजी कॉलेज की, और साथ ही साथ इस आप कॉलेज परिसर में विजिट कर सकते हैं और वहां पर पाठ्यक्रमों के बारे में और विस्तृत तरीके से जान सकते हैं। तो अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं आवेदन के, तो क्योंकि आज और कल की ही तारीखें हैं, तो कल है संडे, आज अगर आपको मौका मिले तो जाइए आप कॉलेज के परिसर में, कॉलेज कैंपस में जाके एक बार पता कर लीजिए कि किस किस विषय में आप अपना परीक्षा दे सकते हैं, और नहीं मिला समय तो आप आधिकारिक वेबसाइट से जाके लॉग इन कीजिए, आपको सारी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे,
0: डिटेल सारे मालूम हो जाएंगे आपको। तो ये एक खास खबर थी जो आप तक पहुंची, और इसके इसे अगर आप रिलेटेड हैं तो आप जरूर कदम आगे बढ़ाइए।
1: जी हाँ, और चलते चलते 8:55 अब ये घंटा हम वाइंड अप करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मुद्दा एक बार दोहरा देते हैं।
0: मुद्दा दोहरा देते हैं कि अखबार में कौन सी एक ऐसा खास स्पॉट होता है, कौन सा खास कोना होता है जिसको आप सबसे पहले पढ़ना या उसके बारे में खबर जानना की कोशिश आपकी रहती है, आपकी इंटरेस्ट का वो कौन सा टॉपिक होता है। इसके साथ साथ फेक न्यूज के बारे में कुछ हम बात कर रहे थे।
1: हाँ जी बिल्कुल, और ये बताना चाह रहे थे कि फेक न्यूज आजकल की पत्रकारिता का एक तरह से कह सकते हैं ना एक बड़ा बुरा निशान है ना। हम उसको फेक न्यूज को हम इग्नोर भी नहीं कर पाते हैं और हम इसका हिस्सा भी नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन किस तरह से आप रोक सकते हैं सोशल मीडिया पर ये फेक न्यूज का जो चलन बढ़ गया है उसको आप कैसे रोक सकते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो अखबार हमेशा सही चीजें आप तक पहुंचाता है, और जैसे कि बचपन में जब हमें अखबार आता था हमारे घर में तो सबसे पहले आप कौन सा कोना पकड़ती थी ये बताइए।
0: हम सबसे पहले कोना पकड़ते थे अगर उसमें कुछ संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम की अगर कुछ डिटेल दिए वो देखने का सबसे पहले इंटरेस्ट होता था कि रविंद्रालय में आज क्या होने वाला है, उमानाथ बली में आज क्या होने वाला है, तो इस तरह की जो उसमें इंफॉर्मेशन होती थी उसको सबसे पहले देखते थे कि कहां पर क्या हो रहा है और क्या क्या चीज आज होने को है या आगे के वीक में क्या होने को है।
1: आपको पता है मैं कौन सा कोना पकड़ती थी?
0: बिल्कुल जानना चाहेंगे हम तनुश्री।
1: टेलीविजन पर क्या क्या आने वाला है।
0: ओके अच्छा।
1: और कौन सी फिल्म कहाँ लगी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक टॉपिक रहता था मेरे लिए, और हमारे भाई बहनों में जितने भी कजिन ब्रदर एंड सिस्टर्स थे तो वो फटाक से जैसे ही हाथ में आता था अखबार सबसे पहले वही पन्ना पलट के देखा जाता था, कार्टून नेटवर्क और ये और वो कौन कौन से और नेशनल, आपको बताया डीडी नेशनल पे जो हमारे किड्स कॉर्नर वाले जो प्रोग्राम होते थे उनके समय एकदम निर्धारित करके टीवी पे ऐसे चिपका दिया जाता था वहां पर इस समय ये वाला प्रोग्राम आने वाला
0: होने वाले हैं।
1: तो इतना क्रेज होता था क्योंकि अखबार में ही पूरी दुनिया समेटी हुई होती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो वही आपका इंटरेस्ट जो था वो आपने बताया, हमारा इंटरेस्ट जो था वो हमने बताया, तो आप भी बताइए हमें 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। फिलहाल एक सॉन्ग, उसके बाद न्यूज ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं, दोबारा आपका स्वागत करते हैं।

नमस्कार, 9 बजे हैं, आप सुनिए अखबारों की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट के टीईटी पर दिए गए आदेश को आज कई अखबारों ने पहली खबर बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, सरकारी शिक्षकों को टीईटी पास करना ही होगा, ससमय सीमा में एक वर्ष की वृद्धि। उप शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता पर नहीं बदला अपना फैसला। हिंदुस्तान ने खबर पर शीर्षक दिया है, सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य, कोर्ट 31 अगस्त 2028 तक परीक्षा पास करनी होगी। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल गिरने की खबर भी आज समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने इस खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, हमीरपुर में पुल ढहा, 6 की मौत। दैनिक जागरण ने लिखा है, पुल का स्लैब गिरा, 6 की मौत। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे पुल का पिलर टूटा, कंपनी समेत 3 पर मुकदमा। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, हमीरपुर में तूफान के बीच हादसा, मौसम विभाग के अलर्ट की अनदेखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मऊ में कार्यक्रम में शामिल होने की खबर भी हेडलाइन बनी है। हिंदुस्तान ने खबर पर मुख्यमंत्री के संबोधन को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, प्रदेश में माफिया किसी को धमका नहीं सकते, योगी। वहीं अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के पुलिस भर्ती बोर्ड की समीक्षा बैठक को हेडलाइन बनाते हुए लिखा है, भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड प्रक्रिया में बढ़ाएं तकनीकी निगरानी, योगी। नवभारत टाइम्स ने सीबीएसई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से छापते हुए लिखा है, 2027 से आंसर शीट भी डिजी लॉकर में, री इवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से खुलेगा। स्वतंत्र भारत ने नीट यूजी परीक्षा को लेकर शीर्ष न्यायालय में सरकार के दिए गए बयान को शीर्षक बनाते हुए लिखा है, मोदी नीट मामले में खुद निगरानी कर रहे हैं। उप शीर्षक है, एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया, पेपर लीक के बाद बड़े लेवल पर सुरक्षा सुधार किए। प्रदेश में जारी आंधी बारिश से संबंधित खबरों ने भी आज पहले पन्ने पर जगह बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ से तबाही, 1 जून तक मौसम विभाग का अलर्ट। यूपी में आंधी बारिश और बिजली से हादसे, 33 मौतें। अमर उजाला ने लिखा है, आंधी बारिश का कहर, प्रदेश में 28 की मौत। कच्चे मकान और पेड़ गिरे, सीएम ने दिए राहत राशि जारी करने के निर्देश। इसके अलावा इस बार मॉनसून में सामान्य से कम बारिश होने की खबर भी कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: 100.7. मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

0: वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और इतने खूबसूरत जो मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम प्रोग्राम में दोबारा आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग लखनऊ लेकर दोबारा शामिल है दो दोस्त आपके साथ, मैं तनुश्री, मेरे साथ है
1: रत्ना शुक्ला। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए इसी प्रोग्राम में, और बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान कर लीजिएगा कि किसी किसी का वीकेंड है और वीकेंड पर किसी किसी की छुट्टी भी है, तो अच्छे से प्लान कर लीजिएगा कि नाश्ते वाश्ते में क्या बढ़िया सा पेश करना है।
0: हाँ सही कहा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: जी हाँ दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाकर अपने जो लिस्टर्स हैं उन्होंने मेल

0: भेजी है आज बहुत ढेर सारी, आज के जो मुद्दे पर भी बात कही और भी बहुत सारी बातें कहते हैं, अपने दिल की बातें कहते हैं हमारे लिसनर्स, तो उनको शामिल करना स्टार्ट करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो पहला मेल किसका आया है?
1: पहला मेल तो मुझे लग रहा है कि राममोहन गुप्ता जी ने मेल किया है।
0: तो ये क्या लिख रहे हैं?
1: ये लिख रहे हैं कि प्रातः 5:50 पर FM की मधुर धुन 6:03 पर प्रभु स्मरण का भजन की लहरी सुन, हम सभी मस्त मगन हो भ्रमण योग को जाते और फिर मधुर गीत संगीत संग मस्त हो जाते। 7-8 बजे के समाचार सूचनाएं दे जाते, सुन समझ जान हम देश विदेश को समझ पाते। राममोहन गुप्ता अमर लखीमपुर खीरी से, बड़े अच्छे से इन्होंने शब्दों को बैठा करके बहुत ही प्यारा सा संदेश और एक मैसेज मेल के जरिए हम तक भेजा है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मेल का। हाँ। अंदाज ही इनका निराला रहता है।
1: बिल्कुल निराला अंदाज है, सुबह से लेके एक एक बातों को कितने अच्छी तरह से इन्होंने पिरोया है कि जिस तरह से आपने भजन स्टार्ट किया तरुषी, उसके बाद प्रभु के स्मरण के बाद हम आगे बढ़े, तो ये योग या कुछ अपना वर्क मॉर्निंग वॉक या जो कुछ भी, सब कुछ बातों को इन्होंने समेट दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आगे बढ़ते हैं और अनुराधा कुमारी जी, इन्होंने मेल भेजा मगर उन्होंने क्या भेजा उसमें कुछ था नहीं। कोई बात नहीं, फिर से मेल भेज दीजिए। नवीन मिश्रा जी मेल भेज रहे हैं, लिखते हैं कि वो अलग ही पत्रकार होते हैं जिनको अपनी जो जिनकी कलम पर गर्व होता है, तो पत्रकार भाइयों को सभी को उन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं आज के दिवस की।
1: इसके बाद सुल्तान रजा जी का भी मेल आया है। नमस्ते मेरी प्यारी मैम और कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा सुप्रभात लिखते हैं, लखनऊ से इन्होंने मेल किया है। और इसके बाद हम अगले मेल की ओर बढ़ते हैं।
0: हाँ, घनश्याम सिंह जी ने भी मेल किया है और उन्होंने न्यूज का कौन सा पन्ना पसंद है उस पर उन्होंने मेल भेजी है। तो लिखते हैं कि मुझे खेल राजनीति और रोजगार वाला पेज बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है।
1: वाह, ये इनका अपना इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट के साथ अगर ये सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं तो ये अपनी चॉइस है।
0: बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।
1: और फिर भैया मोनू सेठ का भी मेल आ गया, लिखते हैं तरुषी जी और रत्ना भैया को हमारा नमस्ते, कैसा है आप सब सभी, मौसम की मार जारी, अच्छा इसने पौधा लगाए गर्मी दूर भगाए और धूप में भी छाओ फ्री में पाए और रेनबो पर गाने जबरदस्त सुनते जाए, जानकारी पाते जाए।
0: वाह क्या बात, क्या बात, क्या बात।
1: वाह भाई, ताली बजाने का मन करता है, आप लोग इतने अच्छे अच्छे मेल करते हैं।
0: और आगे बढ़ते हैं और निधि चौरसिया जी का मेल आया हुआ है और निधि चौरसिया जी लिखती है कि ये इनकी पहली मेल है और लिखती है कि न्यूज़पेपर में उनको पढ़ना बहुत उनका फेवरेट हॉबी है, एजुकेशन क्राइम एस्ट्रोलॉजी वाले पेज उनको सबसे ज्यादा पसंद है और मॉर्निंग बहुत अच्छी हुई है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, उन्होंने लिखा।
1: हम लोग अंदर भी बैठ के मौसम को महसूस कर पा रहे हैं आप लोगों के मेल के जरिए, पता है। सुधांशु जी का भी मेल आया है और गुड मॉर्निंग सुधांशु जी, हम दोनों की तरफ से लिखते हैं, राधे राधे सुधांशु, ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महुना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, आप दोनों की आवाज बहुत अच्छी लग रही है, तो चलिए दोनों लोग कह रहे हैं
0: थैंक यू सो मच।
1: और लिखते हैं टॉपिक पर कहना है कि जब भी मैं कोई भी अखबार देखता हूं तो उसमें सबसे पहले मैं खेल का पेज देखता हूं, और बात रही फेक न्यूज की तो उसे हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और देश में कड़े कानून बनाए जाने चाहिए जिससे फेक न्यूज फैलाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके, ऐसी सजा का प्रावधान हो कि कोई दूसरा फेक न्यूज फैलाने से कम 1,000 बार पहले सोचे। अच्छा सुझाव दिया आपने और आपके जो इंटरेस्ट की बात आपने लिखी कि पत्रकारिता में सबसे पहले आप स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं, थैंक यू सुधांशु जी।
0: अगला मेल है वकील अहमद जी का और वो आलू दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज ना ज्यादा दिखते हैं, ये हमें कटका हथूरी जिला सीतापुर से मेल कर रहे हैं, साइबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, सबको उन्होंने सबका नाम उन्होंने लिख दिया है। चलिए अब बहुत बहुत शुक्रिया आपके मेल के लिए।
1: कुलदीप गुप्ता जी का मेल आया है, नमस्कार सुप्रभात, और इन्होंने अपनी शॉप पर चाय की शुरुआत कर दी, 4 कस्टमर भी आ गए और उनको चाय पीना था, आज का मुद्दा सुना कि लोगों की जिंदगी में पेपर गायब हो रहा है, तो उनका कहना था कि जो लोग आए थे कि लोगों की जिंदगी से रेडियो भी गायब हो रहा है मगर हम ऐसे लोग हैं जो मिट्टी से जुड़े हैं और आज भी रेडियो से अपना नाता दिल से बनाए हुए हैं। वाह, और जनवरी से हमें कोई भी समाचार पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो हॉकर आते थे उनकी तबीयत खराब हो गई है, समाचार पत्र में मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स वाले पेज से होता है, बाकी अपने जिले से संबंधित खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, अब समस्या है कि लोगों को फुर्सत ही नहीं है पेपर पढ़ने की मगर समय बिताने के लिए मोबाइल से जुड़ते हैं और कहते हैं उनको फुर्सत ही नहीं है। मेरा मानना है कि पेपर सच है कोई भी चीज खबरों को स्टोर नहीं कर सकता है, ये इनके अपने विचार है। कुलदीप गुप्ता उधौरी बाराबंकी से।
0: ये बिल्कुल

0: एक बात है, कई इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक में रखती हूँ कि जो पेपर है ना, आप उसको पढ़िए, आपको एक बार में इतनी सारी जानकारी एक साथ मिलती है, आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती जो हम लोग स्क्रॉलिंग में ढूंढते हैं, सर्च करते हैं और ये सारी चीजें मिलती हैं। हमें पेपर में सब कुछ और वो भी वेरीफाइड जानकारी मिलती है। सबसे अहम बात ये कि वेरीफाइड जानकारी मिलती है हमें पेपर से। तो इसी तरह के और भी मेल्स हम शामिल करेंगे, मगर एक म्यूजिकल ब्रेक के
1: उसके पहले लेते हैं कॉमर्शियल ब्रेक।
0: हाँ बिल्कुल, पहले एक कॉमर्शियल ब्रेक करते हैं, फिर एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: जी,
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत।
1: गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।
2: तो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आलू दिवस भी साथ में, और आलू की बातें अगर हम करना शुरू कर दें तो आप बताइए जरा, कभी खत्म हो पाएंगी बातें?
3: आलू की इतने ज्यादा व्यंजन तो मुझे को पता है, दो चार की बात आपने अभी कर दी। कुछ लोग तो सुन रहे होंगे कि भाई आलू दिवस है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग रोज आलू के बिना रह ही नहीं पाते, आलू की कई वैरायटी बनाते हैं, है ना। लेकिन आलू के साथ साथ आपको यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, जो अभी सब्जियों की बात चल रही है, कि 15 दिन में दोबारा से सब्जियों के दाम लगभग 30% तक फिर से बढ़ चुके हैं
2: जी। तो आपको बता दें कि अगर आप सब्जी मंडी जा रहे हैं और आपको निर्धारित, आप सोच रहे हैं अरे इतने में तो हो जाएगा, तो थोड़ा सा और 30% तक अपने बजट बढ़ा लीजिए, क्योंकि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं।
3: हाँ।
2: और अगर देखा जाए तो गर्मी भी एक बहुत बड़ा कारण है, और हाँ। जब बेमौसम बारिश भी होती है ना, उस वो भी एक कारण होता है। तो क्या कहते हैं ना, रेट बढ़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से अब जो ये जो बढ़ा है उसका एक और कारण ये भी है कि माल भाड़ा जो है उसमें हाँ। बढ़ोतरी हुई है, तो इसलिए सब्जियों के दरों में भी बढ़ोतरी हो गई है।
3: तो ये आप तक ये न्यूज़ पहुंचा दी, अगर आज भी आप वीकेंड पे आप कहीं बाहर निकल रहे हो, आपको सब्जी खरीदारी करनी है, तो थोड़ा सा जैसे कि दर्शी ने कहा, थोड़ा सा अपना बजट बढ़ा लीजिए,
2: बजट बढ़ा के चलिए। और वैसे अच्छा ये बताइए कि आप सब्जी लेने जाती हैं?
3: बिल्कुल जाते हैं, मुझे तो बहुत इंटरेस्ट है, खासतौर से अपने हाथ से चूज करके प्यारी प्यारी हरी हरी सब्जियां लेना। लौकी भी हो तो बिल्कुल ताजी बेबी लौकी हो। और
2: अच्छा आपको वो जो सब तरीके पता है, सब टोटके जो हम बोलते हैं, टोटनी तो तरीके होते हैं ना ताजी सब्जी टटोलने के, क्या होते हैं?
3: जैसे नींबूनी के, अगर वो नींबू दे रहे तो उन्होंने अपने तराजू में रखे अपने हाथ से और दे दिया, हम कहते नहीं हमको थोड़े कागजी नींबू चाहिए। इस टाइप की चीजें, अगर संतरे फल की बात करते हैं, संतरे लेने तो थोड़े पतले छिलके वाले संतरे चाहिए, इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं
2: हाँ,
3: जो अपने हाथ से लेने में बहुत सेटिस्फेक्शन रहता है।
2: अच्छा वैसे ये तो हमारी जो महिलाएं हैं
3: हाँ।
2: इन सब में पता नहीं जैसे कैसे कैसे वो इतना ज्यादा ट्रेन हो जाती हैं, मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन अभी अभी ये भी प्रश्न है कि अभी कई सारी ऐसी महिलाएं भी हैं,
3: पता है कैसे ट्रेन हो जाती हैं
2: हाँ।
3: जब वो किचन में उसको यूज करती हैं, चाहे वो सब्जी हो या फिर फल, तो जब सब्जी को यूज करती हैं तो देखती हैं अरे ये हिस्सा तो कड़ा है, ये हिस्सा तो पीछे से
2: भिंडी को कैसे टटोला जाता है, तो उसका जो पीछे की जो डंडी होती है, उसकी जो टेल होती है, उसको हल्का सा आप तोड़ लीजिए, अगर वो पट से टूट गई का मतलब अच्छा ये तो गड़बड़ है। तो वही है कि ताजी भिंडी कैसे टटोलनी है या ताजी सब्जियां कैसे लेना है, इसको ये भी एक हुनर है,
3: बिल्कुल
2: आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता,
3: नहीं बना
2: और खासकर सब्जी वाले तो बिल्कुल नहीं। और जितने सब्जी वाले हमें सुन रहे हैं उनसे एक खास रिक्वेस्ट है कि वैसे तो हमें पता है कि कोई भी अपना नुकसान नहीं करता, साथ ही साथ अगले का भी नुकसान नहीं करना चाहता, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि कृपया जो सब्जियां हैं उसको देख समझ के भी आप, काफी ज्यादा जब पुरानी हो जाती है सब्जी और कोई ले जाता है तो कभी कभी हेल्थ भी खराब होने की आशंका रहती है। तो उनसे हमारा निवेदन है कि सब्जियां भी देखिए, और खासकर जो ले रहे हैं सब्जियां वो भी जरा देख समझ के लें।
3: जब आप लेते हैं, अगर आपकी जहां आप सब्जी बेच रहे हैं, चाहे आपका ठेला हो चाहे आपका कोई शॉप हो, उसमें अगर कोई सब्जी खराब हो गई, जैसे टमाटर कोई हल्का सा गल गया साहब, या आलू खराब हो, तो उसको आप खुद ही हटा दीजिए। ये सब्जी वालों से हम लोगों का अनुरोध है
2: जी बिल्कुल। और आपको बता दें 9:23 का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग लखनऊ, मेरे यानी तरुश्री और रत्ना के साथ।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: सात हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।
4: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: हाँ जी दोस्तों, सुबह से मौसम के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन मौसम का क्या हाल रहने वाला है अभी पूरे दिन और आगे क्या रहेगा, इसके लिए हमसे जुड़ चुके हैं मोहम्मद दानिश जी, जो कि हैं सीनियर साइंटिस्ट। स्वागत है सर। सर तो बताइए जरा, मौसम का क्या हाल रहने वाला है आज?
8: जी मौसम की बात करें तो मौसम आज खुशनुमा रहेगा और बीच बीच में बारिश का सिलसिला आएगा इस पल में, तो आज भी मतलब गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है और बीच बीच में हल्की बारिश की भी संभावना है। तो आज और कल दो दिन थोड़ा, आज थोड़ा मेन है, कल थोड़ा हल्का फुल्का होने की संभावना है
7: जी।
8: तो आज और कल दो दिन मौसम अभी खुशनुमा बना रहेगा और बारिश की संभावना है
7: जी। तो अभी मेरे ख्याल से ये जो मानसून का जो सिलसिला है अभी मतलब जैसा लग रहा है, तो एक्चुअली में मानसून सर अभी थोड़ा समय है ना?
8: जी बिल्कुल, ये तो एक तरीके से थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ईस्टर्ली विंड की वजह से हो रहा है
7: जी।
8: बाकी इसके बाद ये कल परसों से क्लियर हो जाएगा
7: जी।
8: तो फिर से फिर धीरे धीरे आगे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी,
7: यानी जून में जून वाली गर्मी पड़ेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारी ये जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए।
9: लोग खुश हो गए आपकी बात को सुनकर सर।
8: धन्यवाद
9: धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।
7: तो श्रोताओं ये थे मोहम्मद दानिश जी सीनियर साइंटिस्ट, और इन्होंने

0: जैसे कि बताया कि हाँ. कैसा मौसम रहने वाला है आज, तो काफी खुशनुमा मौसम रहेगा हाँ. तो आप भी प्लान कर सकते हैं कहीं घूमने जाना है.
1: हाँ बिल्कुल घूमने जाना है. और आपको तरुषि बताया, मेरे मन में जो चल रहा था कि मैंने सोचा था शाम को कॉफ़ी प्लान किया था, लेकिन अब शाम के बजाय हम दिन में भी कॉफ़ी प्लान कर सकते हैं, मौसम साथ देगा तो आप जो कुछ भी चाहे मन का खा सकते हैं, चाहे वो कुछ पकौड़े शकौड़े हो या कुछ
0: बिल्कुल घर में भी घर में बिल्कुल घर में. वैसे भी आलू दिवस, हम तो हर बात में आलू लाएंगे आज.
1: हाँ, हर बात में आलू आएगा. और जरूर आप प्लान कर सकते हैं मौसम के हिसाब से, जो कुछ भी आपका मन है, जो कुछ भी आपको सूट करता है और आपको टाइम है, तो टाइम निकालिए, मौसम को पूरी तरह से मौसम के साथ एंजॉय करिए और जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: हाँ जी रत्ना जी, हाँ। चलिए एक बार नजर डाल देते हैं आज के इतिहास पर भी।
2: जी, आज के इतिहास से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जो आप तक पहुंचानी है, और कई बातें आप तक पहुंचा चुके हैं, उनमें से अब बात करते हैं इतिहास की। गोवा राज्य स्थापना दिवस आज के दिन 30 मई के दिन होता है। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, जो भारत का 26वां राज्य बना। इससे पहले यह दमन और दीव के साथ केंद्र शासित प्रदेश था।
1: ओके, और अगर हम बात करते हैं 1919 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में नोबल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था।
2: और 30 मई 2012 में विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बने।
1: ओके, तो आज देखा जाए तो काफी ज्यादा मतलब अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये।
2: और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज जयंती किनकी है।
1: हाँ ठीक है, बिल्कुल।
2: रेडाउंड सितार पॉप प्लेयर पंडित देवू चौधरी जी की आज जयंती है। सोनी

0: महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये।
1: और अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आज जयंती किन की है।
0: हाँ ठीक है,
1: बिल्कुल। रेडाउन सितार पॉप प्लेयर पंडित देवू चौधरी जी की आज जयंती है। सेनिया घराना के कलाकार रहे और आपको पद्मश्री और पद्मभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया और आपकी जयंती पर आपको नमन।
0: तो आज पंडित
1: मुखराम
0: शर्मा जो हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध कथा और कहानी लेखक पे हैं, आज भी आज उनकी जयंती है और इनका जन्म जो है वो 1909 30 मई आज ही के दिन हुआ था, तो उनको भी हमारी तरफ से नमन।
1: और पुण्यतिथि की अगर बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु आपकी पुण्यतिथि है आज के दिन, आपको भी नमन।
0: और अगर हम ऋतुपर्णा घोष जी की बात करें तो आज ही के दिन साल 2013 में भारतीय सिनेमा के एक जादुई और बेहद संवेदनशील जो बंगाली फिल्म निर्देशक रहे वो हमें छोड़कर चले गए थे। उन्होंने 19 नेशनल फिल्म अवार्ड जीते, सिनेमा को एक नया नज़रिया दिया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं।
1: बिल्कुल।

0: इसके बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: अब रत्ना जी,
4: हाँ,
3: जरा बिना देर किए हम लोग मेल्स पढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि हमको नहीं लगता हम लोग खत्म कर पाएंगे जिस तरह से ऐसे अंबार आए हुए हैं मेल्स, हाँ, के।
4: कुलदीप गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी, इन सबका मेल हम शामिल कर चुके थे।
3: मनीष गुप्ता जी की मेल से शुरुआत करते हैं। चलिए,
4: गोसाईगंज से मनीष गुप्ता जी का मेल आ गया। गुड मॉर्निंग उन्होंने भेजा है, और आपका प्रोग्राम शिमला से सुन रहा हूँ। जब अखबार में पढ़ता हूँ तब सबसे पहले मेरा पेज खुलता है माय सिटी का, कि आज हमारी सिटी में क्या कुछ खास है, क्या हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ सबसे पहले। तो शिमला में इनका यही सबसे पहला अखबार के लिए रुझान होता है कि माय सिटी देखते हैं कि आज क्या शहर में होने वाला है।
3: हाँ, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट पेज है वैसे भी। और महेंद्र दीपन जी की मेल आई हुई, ये हमें राजस्थान नागौर ज़िले से, गांव रूड़ से हमें मेल करते हैं और नियमित श्रोता हैं हमारे, और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही समय का महत्वपूर्ण है। अखबार के पन्नों के बारे में बताऊं तो उनकी दिनचर्या की शुरुआत अखबार के खेल पृष्ठ से होती है, क्या बात है, स्पोर्ट्स पेज से। और खेल की खबरें, खिलाड़ियों का प्रदर्शन मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है। उसके बाद मैं पूरे अखबार में जो भी महत्वपूर्ण या मोस्ट इम्पॉर्टेंट खबरें होती हैं उन्हें ध्यान से पढ़ता हूँ। और जहाँ तक फेक न्यूज़ का सवाल है, तो उनका मानना है कि आज के दौर में सतर्कता ही सबसे बड़ा हथियार है। किसी भी खबर को पढ़ने से पहले के बाद मैं उसे तुरंत सच नहीं मानता, मैं पूरी तरह से सच्चाई की गहराई तक जाने की कोशिश करता हूँ, और पुष्टि होने के बाद ही उस जानकारी को अपने दिमाग में उतारता हूँ। यदि कोई खबर बहुत रोचक या महत्वपूर्ण लगे तो उसको, उसका फैक्ट चेक करना, उसकी सच्चाई खोजना उनका कर्तव्य अपना समझता हूँ। और ये बिल्कुल सही बात है, और ये संदेश भी देना चाह रहे हैं कि अंधे होकर किसी खबर पर विश्वास ना करें, पहले सच्चाई जाने।
4: बिल्कुल, और अच्छी बात आपने लिखी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सफीपुर जिला उन्नाव से बहमाना तहसील से मेल आ गया है रोशनी रावत जी का, बड़ा चंडीगढ़ से प्रोग्राम इस वक्त सुन रही है, बड़ा सजा बजा के इन्होंने मेल लिखा है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड रत्ना मैम जी, तरुश्री मैम जी, तो आप भी गुड मॉर्निंग बोल दीजिए तरुश्री।
3: बिल्कुल, गुड मॉर्निंग।
4: और लिखा, सुबह से जुड़े हुए पुष्पांजलि और सदाबहार गीत बहुत अच्छा लगा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तरुषी और रत्ना मेरी तरफ से भी, क्योंकि मैंने भी सुना, मुझे भी बहुत अच्छे लगे दोनों प्रोग्राम। प्रोग्राम शानदार, धमाकेदार, लाजवाब, बिंदास चल रहा है। आज चंडीगढ़ का मौसम बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है ठंडी ठंडी हवा के साथ। वाह, वहाँ बारिश चल रही, देखिए कितनी अच्छी बात है उन्होंने बताई। मेरा नाम रोशनी रावत है, इन्होंने बताया। मुद्दे की बात है कि मुझे अखबार में सबसे खास अपनी राशि पढ़ना लगता है। अच्छा जी, और जब से FM रेनबो के दीवाने हुए तब से मुझे हर छोटी बड़ी खबर सब मिल जाती है। FM रेनबो से फेक न्यूज के बारे में लिखती है कि पूरी जानकारी जब तक ना हो तब तक कोई भी जानकारी किसी दूसरे को फॉरवर्ड ना करें, और पहले खुद ही जांच पड़ताल करना चाहिए, इसके बाद आगे भेजना चाहिए। तो धन्यवाद मेरा ईमेल शामिल करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर सा खूबसूरती से लिखकर सजा के और काम की बात लिखने के लिए, रोशनी जी धन्यवाद।
3: और तेज बहादुर जी का मेल आया है और लिखते हैं कि आज का मुद्दा जो है वो अखबार बहुत ही कम पढ़ने का समय मिलता है, तो अब सब मोबाइल पर ही सब खबर मिल जाती है। हम तो 2003 से 8 तक सबसे पहले पिछले पन्ने की शुरुआत करते थे, और अखबार पढ़ना, क्योंकि क्रिकेट की खबर पढ़ना बहुत ही रुचि से, इन्हें बड़ा पसंद था, इन्हें बहुत चाव था। और ये लिखते हैं, ये हमें गाँव मऊ शर्की ज़िला रायबरेली उत्तर प्रदेश से गुरु मेल ये है, और गुरुग्राम हरियाणा से ये हमें सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। तो दोस्तों, जैसे अभी मेल्स और भी बाकी हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर वापस आते हैं, आपके मेल्स को शामिल करते हैं।
5: देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
6: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो।

0: दोस्तों 9:49 50 मिनट हो गए देखिए कहते कहते और बता
1: दें जल्दी वक्त बीत गया ना।
0: हाँ बिल्कुल वक्त कैसे भाग गया। और आपको बता दें ये भी कि उन सभी को जन्मदिन की मुबारकबाद जो आज के जिनका जन्मदिन है उनको विश करना ही भूल गए।
1: बिल्कुल 30 मई को जिनका जब बर्थडे होता है उन सभी को एफएम रेनबो टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू जिन जिनका बर्थडे है।
0: और साथ ही जो भी आज अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और
0: साथ ही साथ बता दें किसके साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बताइए क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होंगे।
0: हाँ बिल्कुल तो आज हम एक दिग्गज कलाकार के साथ आप अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं। हम अगर बात करें कॉमेडी टाइमिंग की तो उनसे परफेक्ट मुझे नहीं लगता ऐसे ऐसे एक्टर जो होते हैं ना वो छाप छोड़ जाते दिल में। आज भी बाबू भैया याद है बाबू भैया है ना तो बाबू भैया नाम ही बोल दिया और मेरे ख्याल से सबको परेश रावल जी की वो जो चेहरा है वो और वो साथ ही साथ जो उनका चश्मा है वो तुरंत दिमाग में आता है।
1: ये हास्य अभिनेता यानी कॉमेडियन परेश रावल जी की बात कर रही है तरुषि। और आपके अपने शानदार अभिनय के लिए जरिए 240 से भी ज्यादा इन्होंने फिल्में की हैं। फिल्मों में काम किया और वर्सटैलिटी कॉमिक टाइमिंग जो है वो जैसा कि बात की और दमदार विलेन के रोल में के लिए भी ये काफ़ी पॉपुलर हैं। पद्मश्री जैसे सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड भी इनको मिला परेश रावल को और आईफा अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। कई और अवार्ड्स इनकी झोली में आ चुके हैं। तो इसी तरह से ये फिल्मों में आते रहे और अपने रोल से लोगों को लुत्फानंदोज करते रहे।
0: बिल्कुल। और अगर हम कॉमेडी की ही बात कर रहे हैं तो एक और टेलीविजन के क्षेत्र में कहा जाए तो उनकी दुनिया में बड़ी बेमिसाल कॉमेडी और कमाल के डांस से सबको

0: लोटपोट करने वाले गोविंदा जी के भांजे कृष्णा अभिषेक का भी आज हैप्पी बर्थडे है, तो उनकी कॉमेडी टाइमिंग के लिए उनको हमेशा याद किया जाता है और हमेशा ही याद किया जाएगा। जिस तरह से वो कॉमेडी करते हैं सबको ही हंसा देते हैं, आपने उनके देखा
1: कभी कभी खुद भी मुस्कुरा लेते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। और कहते हैं जो अपनी कॉमेडी पे खुद भी थोड़ा मुस्कुरा देते हैं ना, तो उसमें चार चांद लग जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ रियलिटी भी हो रहा है ना।
1: और स्क्रीन पर देख के कृष्णा अभिषेक को लोग काफी खुश हो जाते हैं कि अरे कृष्णा भी इसमें आ चुके हैं, तो चलो देखने के लिए बहुत मन करता है,
0: दिल बन गया
1: बिल्कुल। उसके साथ कृति कुलहरी का भी आज हैप्पी बर्थडे होता है, जो कि एक्ट्रेस हैं ये, और इनको भी जन्मदिन की बधाई। इनकी एक्टिंग आपको फिल्म पिंक है, यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक है, इन सब में, मिशन मंगल में आपको इनकी एक्टिंग देखने को मिली थी, उनको भी हैप्पी बर्थडे।
0: तो चलिए आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं और उसके बाद जल्दी जल्दी वापस आते हैं क्योंकि कुछ मेल्स आपके बाकी हैं।

0: ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: जी दोस्तों, 9:55 हो गए हैं, यानी कि आखिरी के 5 मिनट बाकी हैं हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने में, और इसलिए जल्दी से मेल्स, तो अब समय के अभाव के कारण पूरी मेल्स तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मेल्स हैं अभी बाकी।
5: नाम ले लेते हैं तर्षी।
4: हाँ, नाम ले लेते हैं।
5: तो चलिए देखिए, तेज बहादुर यादव जी ने मेल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अंजू जी ने भी मेल किया है, और संध्या जी ने भी मेल किया, जावेद अख्तर जी ने मेल किया, वारिस अली खान जी ने मेल किया, वकील अहमद जी ने मेल किया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और के साथ और भी नाम है भाई,
4: कुछ और नाम है, जैसे मोनू सेठ जी ने दोबारा मेल किया, संतोष जी ने, कि राजेश कुमार, गुलाफसा सिद्दीकी, मुनेश कुमार, मदन गुप्ता, और भी लोग हैं जिन्होंने मेल किया है। लेकिन एक वादे के साथ हम इनको बोल सकते हैं कि अभी जब 11 बजे से आपका जब संदेश हम शामिल करेंगे रत्ना, तो उस समय, उस वक्त आपका मेल जरूर शामिल किया जाएगा।

0: कोशिश रहेगी। और वैसे भी आज हम पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं, तो ये मेल शामिल करना बनता है,
1: बिल्कुल बनता है,
0: है ना। तो इसी वादे के साथ हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और तब तक ये भी बता के चलते हैं कि कुछ जैसा कि आयोजनों के बारे में बताया गया था, और आपको बताएं कि अगर आप भी ये जो नौसेना को हम के लिए, नौसेना को उनकी प्रेरणा के लिए जो हम वाटिका की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप शिरकत करना चाहें तो जरूर जरूर शामिल होइएगा।
1: बहुत सी चीजों के साथ वहां पर सम्मानित भी किया जाना है लोगों को, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं और उस मोमेंट के साक्षी बन सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने रत्ना। और अब प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं एक बढ़िया सा गीत आपके लिए मेरी तरफ से, और इसके साथ ही मैं कहती हूँ आप लोग को टाटा बाय बाय, लेकिन रत्ना अभी रहेंगी आपके साथ, तो अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण करेंगे। ये वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता, पराक्रम और तकनीकी क्षमता को समर्पित है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना के वीर सेनानियों को समर्पित श्रद्धांजलि स्थल है। वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्ध पोत INS गोमती स्थापित किया गया है, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कल दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा के लिए प्रदेश के 72 जिलों में 1011 केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 4.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन करने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडे ने बताया कि परीक्षा को शुचिता और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शिता प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है।

सीबीएसई ने कहा है कि इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए सीबीएसई के टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800-11-8004 या वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। अमरोहा में माटी कला को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय निःशुल्क आवासीय शिल्पकारी प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत माटी कला से संबंधित दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सजावटी सामान, खिलौने, मूर्तियां, मिट्टी के उत्पादों पर कटिंग, पच्चीकारी, चित्रकारी और आदि विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही बैंकों से ऋण प्राप्त कर इकाइयां स्थापित करने के लिए योजनाएं की जानकारी प्रदान की जाएंगी। जिला ग्रामोदय अधिकारी गजेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक लोग 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम ने फाइनल में जगह बना ली है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक सुनते रहिए FM Rainbow।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सरगम है,
4: सात जन्म है सात समंदर,
2: साथ हमारा हरदम है,
4: जिंदगी के सतरंगी रंग
3: FM रेनबो के संग।

सभी के राम राम प्रणाम स्नेह भरा नमस्कार पढ़े थे हम आपके रेडियो साथी रत्ना शुक्ला। आप सब श्रोता के पसंदीदा कार्यक्रम सुगंध माटी की आज तनुक विशेष होवे वाला है। अब विशेष का कही श्रोतन के बिना कछु विशेष होवत नहीं है। तो 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम सुगंध माटी की माँ 90 साल आकाशवाणी के यही से जुड़ी छुटक तुनुक बत कही हम करब। तो आप सब हो के आप सभी के साथ चाहिए ही माँ, तो सुनत रहो, बने रहो और गीत के आनंद उठावत रहो।

0: खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

कैसा लगा? नीक नीक नीक नीक गवनई, हनुमान जी के चरण में यूं समर्पित रहा। तो चलो आज की बात का आगे बढ़ावत है, जो हम जौन हम आपसे कह रहे कि सुगंध माटी की कार्यक्रम में आज 90 साल आकाशवाणी की यही से जुड़ी छुटुक तनुक बतकही करब सुनब। तो एक अगर आगे बढ़ावत हैं तो हम सबसे पहल आप तोरे सबका बताई दे, याद दिला दे कि सन 1927 में भारत में रेडियो प्रसारण के आरंभ हवा रहा। मुंबई और कोलकाता में दुई ट्रांसमीटर उसे ही आरंभ हवा रहा, जानते हो। वही के बाद और ये का भारतीय प्रसारण सेवा नाम रखा गवा, ठीक है। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो रखा गवा। धीम धीम हुई के बाद 1957 में इनके नाम बदल के आकाशवाणी रख दीन। इन सब बात के बाद अब जब गर्मी के दिन चलत हैं तो हालांकि मौसम में तनिक राहत हुई है, जैसा कि सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन गर्मी तो हाई है। तो गर्मी के मौसम भी चलाते, तो गर्मी के मौसम चले थे तो हमका काया आदाबा वही सब हम आपके सुनावे जा रहे हैं कि कौन गीत हमके सुनावे का मन करा तोरे सबका। तो चलो यू गीत सुन लियो।

वाह भाई वाह, गर्मी के दिन में कौन कौन कौन कौन बात कही सुनाए डालिन, बहुत नीक लगा। आप आओ के लगा हुई कि नहीं। हम बात करते रहे 90 साल आकाशवाणी के साथ। तो आकाशवाणी की अगर बात करें तो सब कहूँ जब नाम हुई गवा आकाशवाणी रख दीन गया 1957 में, वही के बाद आकाशवाणी करी टीम मिलकर ऐसा ऐसा उड़ान भरीन मेहनत कहीन कि 1976 तक आवत आवत प्रभावशाली सशक्त राष्ट्रीय पहचान बनाए लीन आकाशवाणी। और जानते हो आकाशवाणी का कहता है, आकाशवाणी कहता है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि अनेक लोगवन के हित और सुखों के लिए ये प्रसारण सेवा अपन प्रसारण देव थे। और एक के बारे में अगर बात करें तो जत्ते लोग देश दुनिया में जत्ते लोग हैं उनका कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करे के प्रत है, चाहे कहूँ रहे जौन जौन काम करत रहे, लेकिन आकाशवाणी के कार्यक्रम के संग जुड़ के उनके बहुत आसान पड़त है और जुड़ जावा थे जानना जाने कत्ती संख्या है, अनगिनत लोग हैं मनई हैं जो आकाशवाणी के गीत संगीत कार्यक्रम के साथ बहुत बहुत आनंद उठावत हैं। कैसे कि आप लोगों की चिट्ठी पाती मेरे सभव फोन सभव कुछ बतावत है कि आकाशवाणी से कत्ता स्नेह करत हो आप सब। और हम ज़्यादा कुछ ना कहा, बस ये कहे कि यू गाना जो हमका लग रहा है जीव में आवत है कि आप सबका सुनाई दे कार्यक्रम सुगंध माटी की में। आज हम हैं आपके साथ, यानी कि रत्ना शुक्ला हैं आपके साथ आपके साथी। तो आप लोग जुड़ जाओ और गीत संगीत के साथ आकाशवाणी के 90 साल के सफर की ब्याद पात हम बत कही करब और आप लोगों के विचार जानब मेल के जरिए। तो सुनत रहो और एक बात अब आपके का मेल करे के वो भी हम बताऊ, लेकिन पहले ये गीत सुन लें।

पहले तो जादू कहनों के बाद खड़ी खड़ी मुस्काते हैं ऐसे नीक नीक मुस्कावत हैं कि जौन जादू है वो तो अपन आप हो भी करब कैसे कि जब नैन लड़ जाते हैं उसके बाद जादू की बेरिया शुरू हो जाते हैं। तो चलो हम वादा कह रहे हैं कि एफएम रेनबो के जितने श्रोता पंचन है आकाशवाणी के जितने श्रोता पंचन है उनसे से हम बात कही करब उनके विचार जानब। तो हम आपसे का कहे जा रहे हैं जानते हो, हम जानना चाहते हैं कि 90 बरस का जौन इतिहास है ना आकाशवाणी के वही के विषय में तनुक बात कही जौन चल रही है। तो पिछले दशक से लई के आज के बखत तक अत जो सफर है वो सब आप साथ सब साथ रहे हो सब साक्षी रहे हो एक सफर जौन जौन बदलाव होवत रहा एक साथ जौन जौन कार्यक्रम आपके बीच में आवत हैं। तो श्रोता पंचन 90 साल जब पूरे हो ही रहे हैं तो आगे हम का और बढ़िया काम करे के आप सब लोगों के लिए बहुत बढ़िया नेक नेक कार्यक्रम लेके आवे के है वो जो कि हम सबे आकाशवीर की पूरी टीम लावत है। तो आप हमका बतावा कि कौन कौन कार्यक्रम तोरे पंचन का नीक लागत है पाछे के पुरान कार्यक्रम आद है कौनो जे के बारे में तुम बत कही लिख कर पाओ। तो चलो हमका मेल कर सका तो आप एफएम कौन है मेल का पता एफएम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर आप हमका मेल कर सकते हो बताई सकते हो। और अब

बेरी आई गई है जो जितनी टिकुरिया लटकत है ना बिरवा में वो टिकुरिया के लाए के तमाम तरह की चटनी है और चटनी के साथ साथ खटमीट अचार है कछु तुम डाल सकते हो लेकिन ये गीव सुन ले वही के बाद कछु करे के सोचियो तो रत्ना शुक्ला कहते हैं आप सभी से बने रहो सुनते रहो और ये वो गीत के आनंद उठाओ

0: अब देखें भैया।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: और मेल कर दीन है हमका, कौन है ये? विकास जी मेल कर दीन है कि हेलो मैम, चरण स्पर्श से विकास, गांव सलीत, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से आपका कार्यक्रम सुनाते हैं। कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब और झकास चला है। मेरे मित्र ब्रजेश सिंह दीपू बराई से हमारी बहन प्रिया का नाम ले ले उतनिक, तो नाम ले ली है हम दीपू सिंह जी का, ब्रजेश सिंह दीपू बहराई से और प्रिया जी का नाम ले लेना है। और कार्यक्रम के विषय में जो हम लिखे हैं, बताए हैं आप सबका कि 90 साल आकाशवाणी के ये का जो इतिहास रहा, ये इतिहास में आप और जुड़े रहो, जितने साल से भी जुड़े, कौन कौन कार्यक्रम आपका नीक लागत है और कौन कौन कार्यक्रम आपके घर वाले सुनत रहे, यूँ सब कुछ आकाशवाणी के बारे में कछु तनिक मेल करके हमका बतावा है ना। तो अब अरुण कुमार जी भी मेल करीन है, खाली हेलो लिखिन है, तो चलो अरुण कुमार जी के भी नाम ले लीन हम। वकील अहमद जी का लिखे ने, नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, संदेश ये है

कि गर्मी बहुत तेज हो रही है, सब लोग अपन ख्याल रखें और जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि जल्द जल्द ठीक हो जाएं, पानी पियत रहें। और मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से साहिबा अंसारी, शाजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एमन नवाब जी का नाम लिखिन है। अब मतलब की बात हम ढूंढत हैं कि कौन लिखिन है मतलब की बात। मोनू सूर भैया का लिखिन है, अच्छा लिखिन है कि अच्छा ये फोटो भी भेजीन है, कहा भेजीन है फोटो मा, फोटो में कुछ खास दिखाते हैं, चलो बतावत हैं। रत्ना वेनी जी का नमस्ते, कैसन हैं आप सब ही, उम्मीद कहें कि आप सब कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि बहुत नीक हुई हुए हैं। हाँ हम बहुत नीक हैं, आप सबसे जुड़ के बहुत मज़ा आवा रहा है, आ रहा है कैसे कि आपके मेल शामिल कर रहे हैं, आप लोग के नीक नीक गवनई सुनावे की कोशिश करते हैं। नानी की तरफ से राम राम लिखिन है, और ये कार्यक्रम गाँव में बहुत अधिक सुना जाते हैं, आज हमारे नानी और पड़ोस वाली मामी भी ये कार्यक्रम सुन रही हैं। नानी जी आज चना की घुघरी सेवई पूड़ी आपाओ के भी बुलाइन है। हम तो फोटो देख के गदगदाए गए, मोनू सेठ भैया कत्ता नीक, अच्छा आलू और लाल चना के घुघरी बनाई है, तो आलू दिवस भी है, तो चलो आलू भी दिखा रहा है हमका फोटो में, उसके बाद सेवई है, पूड़ी है, बहुत नीक नाश्ता रखे हो आप, तो चलो आप सब गांव वाले मिल के नाश्ता करो, और जो जो कार्यक्रम सुन रहा है वही के हम गोड़ लागत हैं, आप हमारा संदेश वही के दे दो, कौन कार्यक्रम नानी के नीक लागत रहा वही के बारे में तनिक बताओ, जो 90 साल का इतिहास हो रहा है, 90 साल हो रहे हैं आकाशवाणी को, वही के बारे में तनिक बताओ मोनू सेठ भैया। जितने लोग सोता पंचन सुने थे सभी बतावे की कोशिश करो। बबीता राव जी का लिखिन है, अच्छा लंबा लंबा लिखिन है, कई रंग ही मैं दिखाते हैं, कौन कौन रंग है, हरा रंग है, भूरा रंग है, उसके बाद कौन रंग है, काला रंग है, पीला रंग है, अरे वाह, काका लिखिन है, पता बेली कला पोस्ट सठवारा गोसाईगंज नवाबों का शहर लखनऊ यूपी से लिखिन है, कौन है, राम राम लिखे ने बबीता राव जी, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, आपका प्रोग्राम हमेशा ही काबिले तारीफ होता है, मुझे अवधि बहुत पसंद है, इसलिए मैं सुगंध माटी के प्रोग्राम कभी सुनना नहीं भूलती हूँ। मेरे पापा, भाई रजनीश, बहन विनीता, रोशनी रावत, नीलू दी सब बड़ी शिद्दत से सुन रहे हैं प्रोग्राम को, एंजॉय कर रहे हैं, आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करेंगे। जब रेडियो अति मन लगा के आप सभी लोग सुना थो, तो तनिक यू बताओ जो हम आज आप सब लोगों से जानना चाह रहे हैं कि 90 बरस जो आकाशवाणी के पूर्व हो रहे हैं होवत हैं, तो उहिमा आप लोगों का कौन कार्यक्रम सबसे ज़्यादा पसंद आवत रहा, कौन आपके पापा का पसंद आवत रहा, और आकाशवाणी के साथ जुड़ के कैसा महसूस कर रहा था, यू जरूर बताओ। जावेद अख्तर जी का लिखे ने पहले तो अच्छा ये पिछले कार्यक्रम के लिए मेल करी ने, जावेद अख्तर जी आजमगढ़ से, मुबारकपुर रेशम नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से, और दुई नाम लिखे ने शमशुल कमल राही जी, बेगम रुखसार जी, रकीबा शाहीन जी, इन्हों के नाम हम शामिल कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अख्तर जी, मेल करे खाते। इंद्रपाल मिश्रा का लिखे हैं, आपको हमारे प्यार भर नमस्कार, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, समस्त ग्रामीण श्रोताओं की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आप बहुत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे, अत्ता टाइम ये टेम निकाल के मेल कर रहे थे, वो सुनते हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी का नारा, शिक्षा सूचना संगीत सुनता या देश हमारा है, अच्छा बुन चुन के लिखे ना हो आपकी, ग्राम अमीरता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, अच्छी बात लिखे हो कि सूचना संगीत सुनता यह देश हमारा है आकाशवाणी के माध्यम से, तो ऐसे ही तारीफ करे रहो और आकाशवाणी के कार्यक्रम सभी आप लोगों के दिल तक उतरे, यू हमार कोशिश रहत है, तो सभी लोग यू चाहत हैं। सोनू परवाना जी मेल किन है, सुगंध माटी की प्रोग्राम में रत्ना जी के प्रणाम, राम राम आपाहू के, बारिश के बाद पहली बूंद जब सूखी मिट्टी पर पड़ती है तो यह एक मनमोहक खुशबू फैलते हैं जिसे विज्ञान की भाषा में पेट्री चोर कहते हैं, यह खुशबू किसी भी महंगे इत्र से ज़्यादा सुकून देवते हैं, तो यहू बहुत अच्छी बात लिख दी हो तुम सोनू परवाना जी की, इत्र की खुशबू के एक आगे फीकी पड़ जाते हैं जब बारिश की पहली खुशबू के बाद जो माटी से जो सुगंध उठा थे, तो यही तो कार्यक्रम चल रहा सुगंध माटी के, ये अपन अपन संस्कृति अपन अपन माटी से जुड़ी जो दिल में उद्गार जो भाव आवत है ना, वही सुगंध माटी के कार्यक्रम हम बटोरत हैं और आप सब लोगों तक पहुंचावत हैं, तो अब कौन बारी आ गई, अब बारी आ गई है काहे कि एक गीत की, तो वो गीत कहाँ है, कहीं नहीं लुका, यू है ये गीत,

किसान मेरा रू बड़के बच्चन से लड़के सभी शहर के कारोबारी दफ्तर घर दुकान मकान हर जगह रेडियो छाया रहते है। कैसे छावा रहते आपन कार्यक्रम केरी जादू से। हाँ मुला है ना कि है कि नहीं यू बताओ। तुम्हों सोचा थे कि चलो मेल करके हम आऊँ बताई तो चलो हम इंतजार करें थे आपू मेल करो हमका बताई दो कि का नीक लगा थे ये जो 90 साल का सफर हुआ थे आकाशवाणी का युमा कौन कौन चीज तुमका नीक लगी और कौन कौन चीज में आप अपन भागीदारी की हो ये हो आप बता सकते हो है ना। आकाशवाणी तो बड़े गर्व की बात है। और सुना तो होवे करो कि देश की सीमा बॉर्डर के जवान जौन है ना सन्नाटे में प्रहरी बनकर जौन देश की रक्षा कर रहे थे उनके तीर आकाशवाणी के सब कार्यक्रम उन्हों के भले लागत है। उन्हों अपन घी सुने खाते आकाशवाणी में फरमाइश भेजते हैं पाती भेजते हैं कार्यक्रम जवानों के लिए और तमाम कार्यक्रम में अपन शिरकत करके कार्यक्रम के लाभ उठावते हैं और वहाँ बहुत अच्छा साधन है आकाशवाणी में जुड़ के वे सब दूर दराज बैठ के आकाशवाणी के कार्यक्रम के लाभ उठावत हैं सुनत हैं मनोरंजन करते हैं और समाचार सुनत हैं उसके साथ साथ सूचना पावत है बहुत कुछ आकाशवाणी की द्वारा सेवा उनके मिलत है और मनोरंजन भी करते हैं।

आकाशवाणी के 90 साल जो हुआ थे के बारे में अगर बात करें तो बहुत बहुत नेक कार्यक्रम, जैसे कार्यक्रम के बहुत सारे कार्यक्रम जो बरस से लोग सुना चले आ रहे हैं, तो बहुधन हिताय बहुधन सुखाय जो हम बात कर रहे थे आप लोगों से, तो यही माध्यम से आकाशवाणी के माध्यम से हर वर्ग के मनई तक सीधे सीधे सुगमता से आकाशवाणी के अलावा और कोनो सुगमता पूर्वक जो शिक्षा ज्ञान सूचना मनोरंजन के जो सेवा होते ना वो नहीं मिल सकते है। ऐसा केवल हमार नहीं, सभी लोगों के सभी मने के जितने लोग आकाशवाणी सुना थे इसे मनोरंजन और लाभ उठावा थे वो सब के कहन है। चाहे गांव के

अब जाना तो हम का सोची लगी आप सब के लोगों के बीच में रत्ना शुक्ला है, यानी कि हम अपन बात करे थे, हमारा दिमाग चला गया कि का करी गीत गौने सुनाई दे कि मेल पठे दी सुना, तो चलो पहले गीत गौने सुन लो, उसके बाद हम आप सब लोगों का मेल शामिल करब।

देखो, हम आप लोगों से पूछा कि 90 साल जो आकाशवाणी के हुए रहे के सफर में आप कितना आनंद उठाए हो, कौन कौन कार्यक्रम आपका नीक लगा, आपके परिवार में कौन कौन कार्यक्रम आकाशवाणी से जुड़े जो लोग हैं उनका नीक लगा। तो मिसेस गीता सेठ का लिखिन है, ज्यादा कुछ तो नहीं लेकिन पिताजी के जमाने में समाचार जरूर सुना जावत रहा, जिससे पूरे देश की खबर मिल जावत रही। और हाँ, समाचार सुना सुना कोई बीच में बोल देता था तो बहुत गुस्सा होते थे, ऐसा जुड़ाव रहा था हमारे पिताजी के। तो

रायबरेली से भेजे ने खाली 9 साल आकाशवाणी की बेमिसाल। अच्छा इतनी छोटे में इतनी नेक बात लिख रही ने 90 साल आकाशवाणी की बेमिसाल। देखो अति नेक बात लिख दी बेमिसाल तो है आकाशवाणी का, ऐसे कि इतने अनगिनत लोगों का जोड़ा थे उनका तनिक नहीं बहुत ढेर सारी विशाल जानकारी पहुँचावा थे, मनोरंजन पहुँचावा थे, सूचना समाचार पहुँचावा थे, तो एक ही बात ही अलग है। भैया मनु स्वीट जी फिर लिख दें कि नानी जी बता ही रही हैं कि घर आंगन और कृषि के बारे में जो उनका कार्यक्रम आवत रहा वो बहुत नीत ताकत है। तो अब हूँ यू कार्यक्रम आवत है नानी जी, आप सुना तो कि नहीं आकाशवाणी पर ऐसा प्रोग्राम आवत है घर आंगन और कृषि के बारे में जो उन कार्यक्रम है वो आवत है समय समय पर, और घर आंगन में तो बहुत सारी जानकारी मिलत है, स्वास्थ्य से लेकर के रसोई से लेकर के बहुत सारी जानकारी मिलत है नानी, अब हूँ सुना करो। ठीक है तो नानी की बात कही के बाद अब हम तेज बहादुर यादव जी की बात का है, रत्ना शुक्लिया दीदी के परिणाम कैसे हैं? हाँ बहुत नीक है, आप सब लोगों से जुड़िए बात कही करते हैं और लिखते हैं कार्यक्रम बहुत सुंदर सुंदर भक्ति गीत के साथ शुरुआत करे हो आप, हनुमान राम रसिया ला ला ला ला और आगे तो और बेहतरीन गीत गाने सुनाए कर मिल रही है हमका, और बस सुनत रहो एफ एम रेनबो का, आपके पसंद में भी बहुत मिठास होवत है दीदी, बहुत अच्छा अच्छा गाने सुनावते हो, और तेज बहादुर यादव, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव, बेबी वानिका, गाँव मऊ शर्की जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश से, अभी हम गुरुग्राम हरियाणा में अपन रेडियो ऑन करके आपके गीत सुनाते हैं कार्यक्रम सुनाते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखे ना कि हमरे जब हम आकाशवाणी सुनाते तो हमें आला बहुत आवत रहा, हमारा ना हमारी नानी बतावत ने बहुत ध्यान से सुनत रही, आला के कार्यक्रम उनके बहुत पसंद आवत रहा और लोक संगीत के लोक धुन के वो कार्यक्रम होत रहा, तो आला इनके सुने बहुत पसंद है आकाशवाणी में। लगभग सन 2000 की बात करते हैं कि आला के कार्यक्रम आवत रहा, आला गीत सुन सुन के हम सब बहुत हर्षावत रहे, तो तेज बहादुर यादव जी बहुत नीक अच्छी बात कही करो, आला बहु आवत है लेकिन कभी कहू बीच में आवत है, कहे से कि लोक संगीत के कार्यक्रम सब तरीके के गीत शामिल किए जाते। और किनके मेल पाती आई गई, गुलफसा सिद्दीकी कछु लिखिन है, कहाँ लिखिन है, यू लिखिन है कि नमस्ते रत्ना मैम, मैं गुलफसा सिद्दीकी संडीला से, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, ध्यान से सुन रही हूँ। हाँ आकाशवाणी का जलवा है भाई, आप सब जुड़ आवत हो, आप सबके जुड़ाव के साथ नेक नेक आप पाथी एफएम मेल सब में भेजत हो तो इससे बड़ी का बात हो सके। वारिस अली खान जी कहाँ लिखिन है, मैं बचपन से आकाशवाणी से जुड़ा, मेरे पिताजी आकाशवाणी के समाचार सुनते थे, उन्हें अमीन सैनी द्वारा प्रस्तुत विना का गीत माला बहुत पसंद था, बहुत सारे लोगों की ये पसंद थी, उन्हें आकाशवाणी से प्रसादी बहरे बाबा और मजदूर मंडल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था। वाह किस जमाने की याद दिला दी आपने वारिस अली खान जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी, मुझे बहरे बाबा और हवा महल कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था, आज भी मैं हवा महल सुनता हूँ। इसके अलावा जब कोई नई फिल्म रिलीज होती थी तो उसके पब्लिसिटी रेडियो पर होती थी और हमारा फेवरेट कार्यक्रम वो भी था, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को यादों को समेट दिया। वारिस अली खान जी संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से आपने मेल किया, बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर, आपने जो लिखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बीते दिनों की याद दिलाई। फिलहाल हम आप तक एक गीत भेजते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि समय बहुत कम रह गया है, ये भी हमारी एक माटी की सुगंध लिए हुआ एक गीत है जो आप तक पहुँच रहा है, जिसको साल में कभी भी गाया जा सकता है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब से पिछले दिनों में बहुत ही नामचीन मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी सादगी भावनाओं और सहज शब्दों से जिंदगी के गहरे फलसफे को बयां करने के लिए जाने जाते हैं ये शायर। उनकी शायरी और गजल सीधे दिल को छूती है। उनके बहुत ही ज़्यादा मशहूर लोकप्रिय शेर, उनकी गज़लें जो कि देश दुनिया में आगे आगे आगे लंबे समय तक हम सबके साथ रहेंगी। बस कहना चाहूँगी, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ऐसे तमाम शेर से हम उनको याद करते हैं। दिल में उनकी शेर व शायरी, उनकी गज़लों की एक ख़ास जगह बनी है जो कि आगे तक बनी रहेगी। उनको नमन करते हैं और एफएम रेनबो टीम की तरफ से, आकाशवाणी की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम कुछ और नाम जो कार्यक्रम में ले रहे थे, जिन लोगों ने मेल किया उनके नाम हम शामिल कर लेते हैं, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मोहम्मद आसिफ जी का भी मेल आया है और गुलफ्ता सिद्दीकी जी का भी मेल आया, जावेद अख्तर जी का भी मेल आया है, बहुत सारे नाम हमने लिए। बबीता राव जी ने भी मेल किया है, सुरेंद्र सिंह जी ने भी मेल किया है, रवि कुमार राहुल रवि जी ने भी मेल किया है, एमके राज लखीमपुर से भी इनका मेल आया है, तेज बहादुर यादव जी का भी मेल आया है। तो सभी को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं और अब मिलते हैं अगले घंटे कार्यक्रम सुगंध मार्टी की से अपनी साथी रत्ना शुक्ला को। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सबके।

नमस्कार, 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि

और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य शिक्षा किसान कल्याण महिला सुरक्षा रोजगार आदि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 जून से 21 जून के बीच हर विधानसभा क्षेत्र में प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि गांवों में चौपाल लगाएंगे और ग्राम प्रधानों व स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि जन जागरण, जनमत और जन भावना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने सदैव समाज को दिशा देने का कार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में TET पास करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। CBSE ने कहा है कि विद्यार्थी किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली परामर्श हेल्पलाइन 1800 11 8004 या वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

ये जो मन है ना ये कभी कभी अपने बस में नहीं रहता, क्योंकि जब आप प्रोग्राम सुनते हैं 100.7 एफएम रेनबो पर अलग अलग घंटे अलग अलग कलीवर के साथ हम प्रोग्राम्स लेकर आते हैं आपके बीच में, तो बस मन करता है कि मेल करें, जल्दी से फ़ोन से बात करें और जल्दी से अपने फेवरेट गाना सुने। तो फेवरेट गाना सुनने की जहाँ तक बात करते हैं तो वो तो प्रोग्राम अलग है, लेकिन प्रोग्राम इस वक्त जो शुरू हो चुका है जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे। तो संदेश आपके हमारे बीच में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं मेल के ज़रिए और उन मेल को हम शामिल करेंगे, ज़रूर आपके बीच तक आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन मेल शामिल करने के साथ साथ आपके फ़ोन नंबर के लिए आपको बता देते कि आप किस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। आपको कोड लगाना है 0522, उसके अलावा 2238845, ये एक नंबर है जिस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। उसके अलावा एक और नंबर है जिस पर आप डायल कर सकते हैं 2238852, ये दोनों नंबर हैं जिन पर आप डायल करके हमसे जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपना एक प्यारा सा संदेश हम तक पहुँचा सकते हैं। तो उस संदेश को तो हम ज़रूर शामिल करेंगे, उसके साथ साथ हमारे पास बीच में मेल आ भी गया ना, तो वो मेल हम ज़रूर से शामिल कर लेते हैं। और वो क्या मेल है, क्या है, चलिए पढ़ते हैं। लिखते हैं संदेश ये है, बीड़ी तंबाकू और शराब कर देते हैं ज़िंदगी ख़राब। बहुत अच्छा से मेल है इंद्रपाल मिश्रा जी का, और लिखते हैं ये मीठी बोली आपकी बहुत अच्छी लगती है, सुनवाती हैं संदेश गीत, सबको शिक्षा मिलती है। ग्राम अमृता महोली सीतापुर से इंद्रपाल मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा सा मेल करने के लिए और छोटे में बड़ी बात कहने के लिए। अब आगे बढ़े तो किनका मेल शामिल होता है ये भी देखना है भाई। इंद्रपाल जी के बाद वकील अहमद जी का भी मेल आ गया है, वालेकुम अस्सलाम आपको भी, और आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। संदेश है कि धूप बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, लोग अपना ख्याल रखें, पानी समय समय पर पीते रहें।

0: गुलफशाह सिद्दीकी, एमन नवाब जी, सबका इन्होंने, हमें लगता है पुराना मेल उठा के इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि अभी फिलहाल तो धूप की इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं है जैसे कि मौसम ने करवट ली है, और अभी एक आध दिन तक ऐसा ही कुछ मौसम खुशनुमा सा रहने वाला है। तो चलिए कोई बात नहीं, आपका मेल, आपका नाम शामिल हो गया है, और इन सब बातों के साथ हम आपका फ़ोन भी अटेंड करेंगे और ये गाना भी आप तक पहुँचाते हैं।
1: झनक झन झनक झन झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झनक झन

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. धड़कन लखनऊ की।
2: प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे वादा किए थे कि आपसे मिलूंगे फोन लाइन पे। कौन हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो
2: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे।
3: मैं वही वाला म्यूजिक बजाइए जो आपने अभी बजाया था, वो वाला सुगन मिट्टी के प्रोग्राम में।
2: अच्छा ठीक है, बजाएंगे। ठीक है बिल्कुल बजाएंगे। ठीक है ठीक है। आप कौन बोल रही है, पहले अपना नाम तो बताइए। बहुत बहुत नमस्कार, कौन बोल रही है?
3: मैं सुरभि सिंह बोल रही हूँ, नई गढ़ी धरावा जिला सीतापुर से।
2: अच्छा जी, सीतापुर से सुरभि सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम रेनबो पर। और आपको कार्यक्रम एफएम,
3: ये बताइए आपने क्या जानना चाहा था जब आपने सुगन मिट्टी की प्रोग्राम में मेल करने के लिए बोला था?
2: हमने क्या जानना चाहा था, आपने पूरा प्रोग्राम सुना ही नहीं क्या?
3: जी हमने सुना तो था लेकिन मैं भूल गई, मैं आप फिर से बता दीजिए।
2: हमने ये कहा था कि 90 साल पूरे हो रहे हैं आकाशवाणी के, तो उसमें आप लोगों का इस सफर में क्या योगदान रहा, कैसी आपकी पसंद रही, कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं, या आपके घर में कौन से कार्यक्रम सुना जाता रहा था, पसंद कर किया जाता था, ये सब बातें हम कर रहे थे उस सफर की।
3: अच्छा तो आपने यही जानना चाहा था?
2: हाँ जी जी बिल्कुल।
3: तो देखिए पुराने जमाने में पहले एक प्रोग्राम आता था आपका 9089,
2: आता था बिल्कुल आता था
3: जी, 9 बजे आता था और एक 12 बजे प्रोग्राम आता था, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो ये कार्यक्रम हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा सुना जाता।
2: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने एक अच्छी सी याद दिला दी और सुना जाता था, आप लोग एंजॉय
3: हमको तो खासकर बहुत अच्छा लगता था ये प्रोग्राम, तो मैं सुनती भी थी, रात 12 बजे तक आप सबके साथ जुड़ी रहती थी।
2: वाह, तो सुरभि आप एफएम रेनबो सुनना बहुत पसंद करती हैं, है ना?
3: जी एफएम रेनबो को मैं बहुत पसंद करती हूँ और अपने फेवरेट आरजे को भी, जैसे कि आपको और अपनी प्यारी सी क्यूट वाली मैम को, आपका सब
2: जी। सभी लोग बहुत मशक्कत के साथ प्रोग्राम लेकर के आते हैं, आप लोगों के लिए सजा कर लाते हैं प्रोग्राम सारे एंकर्स।
3: और एक एक प्रोग्राम पहले और आता था मंगलवार को रात में 8 बजे एफएम बैठता। उसमें मतलब जो अवधी भाषा की वो होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी
2: जी, उसमें हम बिजुरिया बनकर आप लोगों का साथ देते थे।
3: तो अब हम चाहेंगे कि वो वाला प्रोग्राम फिर से वापस आ जाए, एफएम बैठता जो आता था।
2: अच्छा जी ठीक है, आपकी बात हमने सुनी कि आपकी प्रोग्राम ये आप पसंद आप लोग करते थे, तो चलिए इस बात को भी सुना। आज का संदेश जल्दी से दे दीजिए
3: जी, एफएम बैठकर कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, ये दो प्रोग्राम वापस आ जाए तो अच्छा लगेगा।
2: ठीक है, ये बात आपकी सुन ली, लेकिन
3: और आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे और आपसे आपको संदेश अपना बता देते हैं।
2: हाँ
3: मेरा संदेश ये है कि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ अपने फोन का पासवर्ड ना सेट करें, क्योंकि जब वो पासवर्ड देख लेते हैं आपके फोन का, जब आप उनके सामने पासवर्ड खोलती हैं तो वो उनको पता चल जाता है, फिर वो फोन का पासवर्ड खोल लेते हैं, फिर इसीलिए वो फोन ज्यादा करके गेट छोड़ते नहीं।
2: अच्छा जी, फोन का पासवर्ड आप बच्चों के सामने ना खोलें, जिससे बच्चे उस चीज को फॉलो ना करें और आपका फोन ना खोल सके अगर आप नहीं चाहते हैं तो।
3: अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा कॉल रिसीव करने के लिए।
2: सुरभि जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश आपकी गीत हमारे में फोन करके अपना संदेश देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
1: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। साहिबा जी, आपका बहुत बहुत
0: साहिबान सारी मेहरागन जी लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं।
1: जी, लखीमपुर से साहिबा जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप?
0: हम दीदी बहुत अच्छे, अपना बताइए आप कैसी हैं।
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। और हमारी आवाज़ वहाँ पर ईगो कर रही है। आप रेडियो के आसपास हैं कहीं, है ना
0: जी? हम रेडियो के पास हैं इसलिए कि हमारे फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है। हम रेडियो पे सुनते हैं तब हम जो है बता रहे हैं आपको।
1: ठीक है, चलिए ये बताइए कि आपकी तरफ मौसम कैसा है आज लखीमपुर खीरी में?
0: मौसम तो दीदी हमारे बहुत अच्छा हो गया है। कल बारिश हुई थी रात में, मौसम बहुत अच्छा है।
1: अच्छा, अभी सुबह से बारिश नहीं हुई एक बार?
0: नहीं।
1: अच्छा बताइए कि प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे में, आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जल्दी से बताइए।
0: मैम संदेश हमारा ये है कि जैसे कि हमको रात में बारिश हुई थी और जब घर की छत के ऊपर टायर वगैरह है, गमले में है, गमले में पानी से भरा तो मैं उसके पानी निकाल दे क्योंकि मच्छर होते हैं।
1: जी जी, ठीक है। तो आपने अच्छी सी बात कही, मौसम को देखते हुए उस हिसाब से हमको कदम उठाना चाहिए। अगर बारिश का पानी इकट्ठा होता है कहीं तो उसको हटा दें, साफ कर दें, जिससे किसी तरह के।
0: हेलो मैम।
1: हाँ जी बताइए।
0: आप हमारे वहाँ ईद में नहीं आई थी?
1: ईद में नहीं आ पाए, बात सही कह रही हैं आप। आपको बकरीद की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। चलिए कोशिश करते हैं, लेकिन वादा तो नहीं करेंगे, ठीक है?
0: नहीं, वादा करिए।
1: नहीं, वादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी तो हम यहाँ स्टूडियोज में ही बैठे हैं।
0: तो आप लोग बहुत दिन से करें, कोशिश कर नहीं पा रही
1: हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कोशिश करेंगे आने की। और लखीमपुर तक आना एक थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा। तो साहिबा जी, अपनी इतनी मोहब्बत लुटाने के लिए एफएम रेनबो के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पूरी फैमिली को आपके शुक्रिया। और वक्त बिल्कुल बिल्कुल जरा सा वक्त इसलिए, हाँ जल्दी से बोलिए, क्या बोल रही हैं?
0: मैम ये बोल रहे जैसे कि आप अभी सुगंध मिट्टी के प्रोग्राम में पूछ रहे थे कि इससे पहले कि कौन से प्रोग्राम आए थे, तो हमें याद है जहाँ तक कि वो एफएम बैठ का आता था, हेलो एफएम।
1: जी जी।
0: और जो है कुछ आपको कुछ हम के हैं, ये हम लोग के बहुत अच्छे लगते थे।
1: अरे वाह, चलिए आप लोग ने इतना समय दिया, याद करके बताया।
0: नाम भी लेना चाहते हैं, थोड़े से नाम ही ले लें।
1: देखिए आप रुक रुक के एक के बाद एक बात, क्योंकि समय बहुत कम है, कुछ अगला प्रोग्राम खास जाना है, इस वजह से आज रहने दीजिए साहिबा जी, फिर अगली बार बात करते हैं आपसे, ठीक है? ठीक है
0: जी। सिर्फ दो नाम
1: जी लीजिए।
0: रूबी रोही है, तालगांव पसंदी पर्वत जिला सीतापुर से हैं।
1: ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मेल हमें फोन करने के लिए जुड़ने।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
6: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
7: शत्रुपा से माँ जी।
8: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
7: शत्रुपा से।
9: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
7: शत्रुपा से।
10: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
11: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
12: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
13: हर घर सूर्य घर।
3: गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
14: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

वेल एक बार फिर से हम आप सबके बीच में आ गए हैं लेकर प्रोग्राम संदेश आपके गीत हमारे 11:51 हो रहे हैं भाई और बहुत सारे मेल आपके आ चुके हैं उनको भी शामिल करना है आपकी बातें लोगों तक पहुंचानी है आप तक पहुंचाने इनफैक्ट आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं प्यारे से संदेश के साथ तो वो बातें भी हम पहुंचाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं ना आपका साथ देने के लिए तो हम आपका जो मेल है वो आप तक पहुँचाते हैं और लिखते हैं मोनू सेठ जी कि आज के युग में हम आधुनिक दुनिया में आ गए हैं आज के युग में आधुनिक दुनिया में आ गए इसलिए आनंद कम है वो दौर जब चाय की चुस्की के साथ अखबार का आनंद सुबह का पेपर वाला राम यानी कि इन्होंने मॉर्निंग शो में जो टॉपिक लिया गया था उसके बारे में इन्होंने मेल किया है तो चलिए मोनू सेठ जी आपने मेल किया और अपनी बात एफएम तक पहुंचाई इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और भी कई लोगों का मेल आया है कि इन लोगों

का मेल आ गया, महेंद्र दीपन जी का भी मेल आ गया है। संदेश आपके गीत हमारे में, इन्होंने सिर्फ नाम लिखा है और नहीं, इन्होंने पोस्टर भी बना के भेजा, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपके गीत हमारे। और इनका संदेश है, स्वच्छता का ज्ञान देना आसान है पर उसे जीवन में उतारना असली जिम्मेदारी है। सफर में खिड़की से कचरा फेंकना या सार्वजनिक जगहों को गंदा करना हमारी सोच को दिखाता है। बदलाव का इंतजार ना करें, उसकी शुरुआत आज अपने आप से करें। आइए पहले खुद जिम्मेदार बने, फिर दूसरों से उम्मीद करें। बहुत अच्छी सी बात आपने लिखी है, चूँकि संदेश देना और दूसरों तक केवल बातें बातें बातें पहुँचाना वो तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा सा आसान सा काम है, लेकिन जो आपने खुद से पहल करी ये बात जो लिखी वो सबसे यहाँ पर मेन है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने प्यारी सी बात लिखी। और मोहम्मद सद्दाम जी का भी मेल आ गया है, मेरी क्यूट सी आरजे रत्ना शुक्ला, आपको प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा गुड मॉर्निंग भी है। ईद अल बकरीद की इन्होंने ढेर सारे मुबारकबाद दी, आपको भी बहुत बहुत तहे दिल से बकरीद की मुबारकबाद शुभकामनाएं इन्होंने दी है। मोहम्मद सद्दाम रामपुर कटरा जिला बाराबंकी से ईमेल कर रहा हूँ, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरा संदेश ये है कि सभी लोग अपना ख्याल रखें और पानी पीते रहें। एक मेरे दोस्त का नाम लेना है, मोहम्मद फैज साहब का इन्होंने नाम लिखा है जो कि हमने मेंशन कर दिया है। और अब समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते पहले गाना सुन, अच्छा चलिए थोड़ा मेल और शामिल कर लेती हूँ। एम के राज लखीमपुर जी से उनका मुनेश कुमार राज जी का भी मेल आया है, गांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से। हिंदी पत्रकारिता दिवस के सभी श्रोताओं एवं टीम को हार्दिक शुभकामनाएं इन्होंने भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग से लेकर सुगंध माटी तक की मेरा ईमेल नहीं पढ़ा गया, आज ही नहीं बीच बीच में अक्सर मेरा ईमेल इग्नोर होता है, ऐसा तो कभी नहीं है क्योंकि आप लोग के मेल से प्रोग्राम बनता है तो आपके मेल तो शामिल किए ही जाएंगे, वो कुछ स्किप हो सकता है, कुछ मजबूरी होगी, ऊपर नीचे वो हो गया होगा। मैं हमेशा कुछ लाइनों के साथ ईमेल भेजता हूँ पर या तो सिर्फ एम के राज पढ़ दिया जाता है या वो भी नहीं पढ़ा जाता। मैंने तो पूरा पढ़ा, गाँव भानपुर हरौआ सब आपका एड्रेस भी पूरा पढ़ा लखीमपुर खीरी से। एक बात और, कार्यक्रम मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब रोज़ वही श्रोता बार बार फ़ोन करते हैं, हर दिन की आवाज सुनकर शायद और भी श्रोताओं को अच्छा ना लगता हो, तो कृपया इसी संदेश को हमारा आप लोगों तक पहुंचा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुनेश कुमार राज जी, आपका संदेश हमने पहुंचा दिया, लखीमपुर से आपने संदेश किया कि रोज रोज वही श्रोता फोन ना करा करें, औरों को भी मौका दिया करें। जावेद अख्तर जी का भी मेल आया है, गुड मॉर्निंग रत्ना जी, आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर बहुत शुभकामनाएं, हमने ज्ञान शिक्षा बहुत सी हमें जानकारियां फराहम करता है और एफएम रेनबो से प्रसारित सदाबहार गीत घोटों पे तेरी बात। संदेश आपके गीत हमारे, पॉप टाइम फोन इन फरमाइश रजनीगंधा शत्रुपा हमारे एक लिए एक दवा का काम करते हैं, रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से। इन्होंने सभी प्रोग्राम्स की इनफैक्ट तारीफ की, जावेद अख्तर जी तहे दिल से शुक्रिया, सभी प्रोग्राम्स को बड़ा दिल लगा के सुनते हैं। और फिर मोनू सेठ जी ने मेल किया है, लिखा है कि बहुत मज़ा आता था जब हम सुबह सुबह पेपर पढ़ते थे, पेपर वाले भैया को एग्ज़ाम का रिजल्ट देखने के लिए उनको ढूंढने जाते थे और पहले पहला पेज पढ़ते थे और देश दुनिया की खबर और सुडू का आंसर ढूंढते थे उसमें। तो आज के आधुनिक युग में हम इस आनंद हमारा कम हो गया, वो दौर था जब चाय की चुस्की के साथ अखबार का आनंद लिया जाता था सुबह सुबह। जी बिल्कुल सही कहा, आज आपने पत्रकारिता दिवस पे ये इन्होंने आप संदेश भेजा है, तो उसके साथ हम अब क्या करेंगे कि सोचते हैं कि गाना भी आप तक पहुँचाना है, गाना भी सुनवाना है। तो संध्या जी ने भी मेल किया था, अरुण कुमार कुशवाहा जी घुमैया हरदोई से, तनुश्री रत्ना शुक्ला जी को प्यार भरा नमस्कार, सकारात्मक एनर्जी ड्रिंक के साथ कार्यक्रम शुरू करके आज गर्मी और लू से हम सबको बचाने के लिए धन्यवाद, ये मौसम में तब्दीली हुई है और सभी को मौसम का बड़ा आनंद आ रहा है। सब्जी किंग आलू डे पर आप दोनों को वो सभी सुनने वालों को बहुत बधाई, एक ज़माना था जब हम अखबार के लिए दीवाने रहते थे, आज तो अखबार पढ़ना छोड़ दिया है। नहीं, अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी सुकून मिलेगा और बहुत ही ऑथेंटिक खबरें उसमें होती हैं। अरुण कुमार कुशवाहा हरदोई उत्तर प्रदेश से। अब समय कह रहा है कि हम आपसे क्या कहें, हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस गाने को एंजॉय करिए और इस गाने के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बस मेरी यानी कि रत्ना शुक्ला के यहाँ से इजाज़त लेने का इस हॉट सीट से वक्त आ गया है। सभी लोगों ने जिन्होंने मेल किया, फ़ोन किया, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अब पता कहे का नंबर आ गया, क्या वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि आपके बीच में अगले कुछ घंटे चंद्रकला रहेंगी, तो उनके साथ आप एफएम रेनबो को एंजॉय करिए। रत्ना कहती है रखिए अपना ख्याल और मौसम को एंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद एफएम रेनबो।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक, भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
9: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
10: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, महिला सुरक्षा, रोजगार आदि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि 5 जून से 21 जून के बीच विधानसभा क्षेत्र में प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि गांवों में चौपाल लगाएंगे और ग्राम प्रधानों व स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने TET को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि TET प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। आदेश में TET पास करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET पास करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित 7वें

की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पिछले 24 सप्ताह के दौरान आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक दक्षता, युद्ध कौशल से प्रशिक्षित 835 जवानों ने इस परेड में हिस्सा लिया। परेड की समीक्षा डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की। प्रशिक्षण अवधि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर तरुण राणा को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में व्यापार बंधु बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों ने जल भराव, अतिक्रमण और प्रकाश व्यवस्था समेत कई समस्याएं उठाई। जिलाधिकारी ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कर व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, व्यापारी एवं उद्यमी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: सात रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: सात हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

12 बजकर के 5 मिनट हो गए हैं. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड आफ्टरनून. इस खूबसूरत सी खुशनुमा दोपहर में आपका स्वागत है और मैं आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई हूँ आपके साथ. और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे. और ये जो सेगमेंट आज का हमारा होता है, अक्सर लेके आ जाती हूँ आपके पास. देखिए ना, पता नहीं क्या कारण है कि फैमिली फन आपके साथ ही करना होता है मुझे हर बार. है, लेकिन आज सैटरडे है. आपको याद दिला दूं, याद दिलाने की जरूरत ही क्या है. आज का जो दिन है ना, वो खास होता है, खूबसूरत होता है. और इस दिन का इंतजार करते करते पूरा हफ्ता हफ्ता राह देखते रहते हम. खैर, और अब आप प्रोग्राम शत्रुपा का चंक फैमिली फन सुन रहे हैं, सेगमेंट आज का. और आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए, बहुत खूबसूरत है, छोटा सा है, हैप्पी है, इजी है. आप इसको समझना चाहेंगे तो बहुत फायदेमंद होगा. लेकिन मोबाइल से थोड़ा सा दूर, परिवार के थोड़ा सा और करीब. आजकल घर में सब साथ तो रहते हैं, लेकिन अक्सर सबकी दुनिया अलग अलग स्क्रीन में सिमट सी गई है. बच्चे मोबाइल में, बड़े सोशल मीडिया में, धीरे धीरे बातचीत, कहानियां, साथ बैठने की आदत कहीं खोती जा रही है. लेकिन सोचिए, अगर रोज सिर्फ एक घंटा परिवार के साथ बैठ के कोई कहानी पढ़ना शुरू की जाए तो क्या हो. और फिर ऐसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए और खूबसूरत कहानी की शुरुआत हो. और ये कहानी हमारी हेल्थ, हमारे रिश्ते, प्यार, मोहब्बत, सबको साथ लेकर चले. ढेर सारी

बातें करनी है इसी बारे में हमें, लेकिन ये खूबसूरत सा गाना हमने आपके लिए ट्यून इन करके रखा है, क्या कहते हैं उसको, आपके रेडियो सेट पर भेज दिया जाए और प्रोग्राम शत्रुपा में आज इस खूबसूरत सेगमेंट किसका, फैमिली फन का आगाज कर ही दिया जाए। ये रहा आपके रेडियो सेट पर, तुरंत वापस आते हैं।

क्या बढ़िया वाइब है ना इस गाने की, और ऐसे ही जूबी डूबी करने का दिल करता है सैटरडे संडे के दिनों में। और फैमिली फन की बात देखिए ना, जब भी मैं आती हूँ थोड़ी सी सीरियस बात लेकर के आ जाती हूँ और मन थोड़ा सा अलग हो जाता होगा ना। लेकिन हालांकि आपको मूड अपना थोड़ा सा अलग या खराब या थोड़ा सा लो करने की जरूरत नहीं है, मैं बात तो लेकिन जरूरी करती हूँ, साथ में फन करने की बात भी तो करती हूँ। घर में फैमिली रीडिंग टाइम शुरू करने की सोच रही हूँ मैं तो, और मैं आपसे शुरू करवाने की सोच रही हूँ बात कहूँ तो सच। फैमिली रीडिंग टाइम क्या है? अब देखिए, रीडिंग अगर जब हम बात करते हैं पढ़ने की,

ना ये कंसेप्ट कहीं थोड़ा सा धीरे से कम हो गया है. पहले आप सोचिए, आपके जमाने में, हमारे जमाने में क्या था? कहानियां थी, किस्से थे, दादी थी, नानी थी, और दादी नानी के साथ साथ चंपक, कहानियां. और बच्चे कितनी जिद करते थे, कॉमिक कॉमिक कॉमिक, हमें चाहिए कॉमिक. और जो कॉमिक बुक होती थी ना, वो लेकर के आते थे तो ऐसा लगता था दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई है. और वही कॉमिक बुक पढ़ने वाले बच्चे, वही चंपक कहानियां पढ़ने वाले बच्चे शरीर से भी तंदुरुस्त हैं, मानसिक रूप से भी तंदुरुस्त हैं, और मैं बताऊं व्यावहारिक भी हैं. व्यावहारिक इसलिए हैं, उनका बिहेवियर अच्छा है, लोगों से अच्छा मिलते हैं, अच्छी तरीके से बात करते हैं. जिसको सीधे भाषा में, आपकी भाषा में बोलूं मैं, होश में रहते हैं. खैर, वो होश में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो स्क्रीन टाइम उनका जीरो था. मतलब मैं भी उनमें से एक हूं, मैंने भी कॉमिक बुक्स पढ़ी हैं और मैंने भी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, दादी नानी वाली कहानियां सुनी हैं, किस्से सुने हैं. और सुनाओ ना, थोड़ा कुछ बताओ ना, ऐसा कहा है, इंटरेस्ट लिया है. फैमिली रीडिंग आवर एक बनाने की जरूरत है हमें, फन करते करते भाई, मतलब मजा करते करते. ऐसा नहीं कि वो बहुत बोरिंग होगा. आप कितना परेशान हो गए होंगे कि बच्चे मोबाइल से हटते ही नहीं हैं, बस मोबाइल में ही आंखें खराब कर लेते हैं. और आप खुद का हाल देखिए, खाली समय में आप क्या करते हैं? बस मोबाइल ही तो स्क्रॉल करते रहते हैं. रोज का नियम बनाना है, शाम को 1 या 2 घंटे तय करने हैं. उस समय घर के सारे मोबाइल साइलेंट मोड पर रख के, टीवी बंद, सिर्फ परिवार, किताब, बैठने का तरीका, सब अपनी अपनी पसंदीदा कुर्सी, सोफा, जहां भी जिस जिसको बैठना हो, कुशन तकिया लेकर गोल घेरा बनाकर बैठ सकते हैं. और बीच में किताब रखी जाए, एक मेंबर 2 पन्ने पढ़े, फिर दूसरा मेंबर आगे पढ़े, फिर छोटे छोटे बच्चों को पैराग्राफ पढ़ने दें. और बच्चों को इन्वॉल्व करना है, कहानी के जो करेक्टर्स हैं, किरदार हैं, उनकी आवाज बदल बदल कर बनाकर पढ़नी है. बच्चों से पूछना है कि अगर तुम इस करेक्टर की जगह होते तो क्या करते. मुझे पता है थोड़ा सा कठिन है ये टास्क, लेकिन कठिन तो है ये टास्क, लेकिन मैं बताऊं बहुत जरूरी है ये टास्क. अगर आप ये नहीं करेंगे ना, तो ये जो स्क्रीन टाइम है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है. एक खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर भेज रही हूं, और थोड़ा सा विचार करिए इस बारे में, किया जा सकता है कैसा. आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ. आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ. प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा का सेगमेंट फैमिली फन.

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।
5: जी हाँ, और इस समय प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ। बार बार याद दिला देती हूँ मैं, क्योंकि आप कहीं खो ना जाए किसी और दुनिया में। आज का जो सेगमेंट है हमारा, वो दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बता, फ़न के तो ढेर सारे तरीके होते हैं। ऐसे तो हम कोई मूवी देख सकते हैं साथ में, कोई पुरानी मूवी जो सबको देखने की इच्छा हो। अब तो हमारा जो वेब सीरीज़ वाला सिस्टम है, इसमें वेब सीरीज़ भी कोई देख सकते हैं, या हम किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम पुरानी मूवीज़ को भी देख सकते हैं दोबारा, उसके लिए हमें थिएटर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे घरों में ऐसी ऐसी टीवीज़ भी हैं जिनमें हम बहुत अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं। हालांकि व्यवस्थाएं सारी हैं, फ़न करने के तरीके कई सारे हैं। हो सके तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं, फैमिली पिकनिक अरेंज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये थोड़ा डिसिप्लिन वाला तरीका है। देखिए, जब हमें कुछ पाना होता है तो कुछ खोना पड़ता है, और आप फ़न करना चाहते हैं, घर में चाहते हैं कि शांति हो, सभी लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने काम के लिए आगे बढ़ें। जो बड़े लोग होते हैं वो तो अपनी मंजिल की तरफ ऑलरेडी पहुंच के अग्रसर हो गए होते हैं, आगे बढ़ चुके होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की, यूथ की, यंगस्टर्स की सबको चिंता होती है, मोबाइल में ना लगे रहें, समय से अपना करियर, अपनी मंजिल पा लें। तो उसके लिए आपको भी कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचती हैं कि आप सिर्फ कहें, डांटें, उनको हड़का दें, जोर के कस के एकदम डर बिठा दें अपना, और उसके बाद करने लगें वो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता दोस्त। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ये है कि आपको भी वही करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा जो आप करवाना चाहती हैं, आपको देखकर।

आप उनका पहला स्कूल है ना, तो मैं ज्यादा ज्ञान नहीं देती हूँ, आगे की तरफ बढ़ती हूँ. आइडिया ये है कि अगर आप ये स्क्रीन टाइम को घटाने के लिए, कम करने के लिए फैमिली रीडिंग आवर शुरू करते हैं घर में, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, कि बच्चों से पूछिए कि उस कहानी में आपको कौन सा किरदार अच्छा लगा और अगर आप इस किरदार की जगह होते तो आप क्या करते. बच्चों की बहुत सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी ये एक्टिविटी करने से. उनकी जो वोकैब होगी ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनकी जो शब्दावली है बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी. इसके अलावा उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. कॉन्फिडेंस बढ़ने के अलावा स्क्रीन टाइम तो एकदम बढ़ जाएगा, घट जाएगा, मतलब बिल्कुल स्क्रीन एकदम कम हो जाएगी. दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वाली बात ये होगी कि उनकी सुनने और समझने की जो पार होगी वो बहुत अच्छी डेवलप होगी. इसके अलावा जो परिवार में आप चाहते हैं एक दूसरे को समझना, कोऑर्डिनेशन, प्यार, अपनापन, ये बढ़ेगा. बस इतनी छोटी, इतनी बड़ी खुशी है ये, इतनी बड़ी खुशी है. अगर यहाँ ये सब मिल जाए तो सोचिए अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा. मैं सोच रही हूँ कि ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर पहुँचाया जाए इससे पहले कि आप थोड़े टेंशन में आ जाएं कि किया कैसे जाएगा इतना कठिन काम. बहुत आसान है, बस सोचिए आप भी ठीक होते जाएंगे उसके साथ.

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: Make some noise!

वैसे मेरे हिसाब से फैमिली फन का जो एक तरीका है ना, वो इसी तरीके खूबसूरत डांसिंग बीट्स पे डांस करके भी किया जा सकता है. डांस वैसे बहुत ही हेल्दी तरीका है सेलिब्रेट करने का, फन करने का. भाई जब जब मौका मिलता है ना, तब तब तो ऐसा कर ही लेना चाहिए. और ऐसा करने से पता है क्या होता है, आप थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं फिजिकली, मेंटली भी थोड़े से फिट हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से थोड़ी देर आपका दिमाग डाइवर्ट होता है. भाई सारी चीज़ों में तो स्ट्रेस ही है इस समय, चाहे वो पढ़ाई का भूत हो, चाहे वो तैयारी करने का हो, नौकरी का हो, बाहर वालों का सुनने का हो, सोशल प्रेशर हो, या फिर रिश्तेदारों की बातें हो, सब कुछ तो प्रेशर ही है. खैर इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत है भी नहीं आपको. जब आप डांस करते हैं ना, तो आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स के मूव्स को देख के आपको इतनी हंसी आती है कि आपका जितना स्ट्रेस होता है सारा खत्म हो जाता है. खैर हम तो फैमिली रीडिंग आर बनाने की बात कर रहे थे, और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किताबें लेकर के आई हूँ. मतलब आपने उनके बारे में सुना होगा, बचपन में पढ़ी भी होंगी वो कहानियाँ. लेकिन जब दोबारा शुरू करना होता है ना, तो बहुत बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होती है. अब सोचिए, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत वेट गेन कर लिया, 5 किलो वेट गेन कर लिया आपने, और वेट गेन कर लिया तो अब आपको लूज़ करना है. जब आप वेट लूज़ करने की जर्नी शुरू करेंगे, तो आप बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज से शुरू करेंगे. और बेसिक एक्सरसाइज पता है आपको, इतनी बेसिक आप सोचेंगे कि सोचिए एक ज़माने में मैं कितना दौड़ लेती थी, लेकिन आज जो समय है सोचिए वॉक करके गुजारा करना पड़ रहा है. लेकिन जब आप वही वॉक धीरे धीरे करना शुरू करती हैं, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, आपकी स्पीड बढ़ती है, और ब्रिस्क वॉक से लेकर के वो रनिंग फिर से पहुंच जाती है. समय लेती हैं चीज़ें, लेकिन पा लेती हैं वही. तो पहले जो किताब आपके लिए लेकर के आए हैं वो है ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की. अब आप कहेंगे ये किताब ये हमने पढ़ी है, ये नहीं पढ़ेंगे हम. लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी होगी ये, और अगर नहीं पढ़ी है उनसे पूछ लीजिए. पढ़ी है तो मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी कहानियां हैं. पहली कहानी यही आप पढ़ लीजिए, और ये अगर पढ़ी हुई है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो उनकी कोई सी भी आप दूसरी कहानी ले सकते हैं. अगर मैं इस कहानी के बारे में बताऊँ, बच्चों के साथ आपको पढ़नी है, तो ये मेरी फेवरेट भी इसलिए है क्योंकि इस कहानी में ना छोटा बच्चा हामिद है, जो ईद के मेले में अपने लिए खिलौना या मिठाई लेने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है. अब सोचिए इसमें सीख क्या मिलती है ना, बड़ों का सम्मान करना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने अपने लोगों के लिए त्याग करना, प्यार. छोटी उम्र में उसकी कितनी बड़ी सोच होती है. और बच्चों से पूछिए, अगर तुम्हारे पास 50 रुपये हों तो तुम क्या खरीदोगे? मतलब अगर तुम्हें भेजा जाए, बहुत छोटे बच्चे हैं, भेजा जाए अगर तुम मार्केट में हो, तुम्हारे पास 50 रुपये हैं तो क्या खरीदोगे? और उनके जवाब से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें. तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होनी है. अब मैं सोच रही हूँ कि ये गाना सुनते सुनते आप सोचिए कि आपको यही कहानी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है. और पढ़ने का तरीका क्या है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. पढ़ने का तरीका ये है कि सारे मेंबर्स बैठेंगे बिना मोबाइल के, टीवी नहीं चलेगी, कोई रेडियो नहीं, कोई टेप नहीं, कुछ नहीं. सब लोग बैठेंगे, एक आदमी रीडिंग करना शुरू करेगा और बाकी सब सुनेंगे.

दो पेज वो पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे लोग रीडिंग करेंगे, सब सुनेंगे और कहानी का मतलब, किरदार के बारे में, उस करेक्टर के बारे में सबसे पूछा जाएगा। किसी किसी समय उस किरदार की एक्टिंग भी की जा सकती है। कितना बढ़िया तरीका है ना। ये ट्रैक आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं और देखती हूँ आप कितनी तैयारी सोच रहे हैं इसके बारे में, फैमिली रीडिंग आर के बारे में। मोबाइल स्क्रीन, बहुत फालतू के रेडिएशन से बचने के लिए कितना आप डेस्परेट हैं। ये प्यारा सा ट्रैक आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستانیں، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب۔
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک، یہ بھی لکھنؤ ہی ہے جناب۔
2: سمجھے جناب علی،
1: جہاں ہر گھر میں بچتا ہے 100.7 FM رینبو۔ धड़कन लखनऊ की।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
7: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: वेलकम बैक। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद, अच्छा ब्रेक में आप कहीं और दूसरी चीज के बारे में तो नहीं सोचने लगते हैं? अगर सोचने लगे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो लखनऊ, और प्रोग्राम इस समय चल रहा है शत्रुपा का सेगमेंट फैमिली फन। और अगली जो रीडिंग की बात करूं मैं आपसे, क्या आपने पढ़ना है, पढ़ाना है, एक और कहानी है मुंशी प्रेमचंद की ही, पंच परमेश्वर। अगर बच्चों के साथ आपको पढ़नी है, उनमें रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी है, मॉरल वैल्यूज डेवलप करनी है, स्क्रीन टाइम उनका कम करना है, खुद भी पढ़िए ना। देखिए ना मैं कितनी बड़ी हो गई, लेकिन मैं चंपक वन की कहानियाँ अभी भी पढ़ लेती हूँ कभी कभी। इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेंटल पीस मिलता है, और दुनिया भर की बातों से और फालतू की वीडियोस से, फालतू शोर शराबे से मेरा दिमाग जो है एक जगह स्थिर होता है। और जब मैं उठती हूँ एक कहानी पढ़ने के बाद, नई एनर्जी, नई एफिशिएंसी, ऐसा लगता है कि एक रिफ्रेश मिल गया नए स्टार्ट को। खैर बातें तो हैं आपको बताने की। मैं इस कहानी के बारे में अगर आपको बताऊं तो, पंच परमेश्वर के बारे में, दो दोस्तों की कहानी है जहां दोस्ती, न्याय आमने सामने आ जाते हैं और सीख मिलती है सच्चाई, ईमानदारी, न्याय सबसे बड़ा होता है। और घर में छोटा सा फैमिली कोर्ट खोल के देखिए, अगर छोटे छोटे मेंबर्स हैं आपके यहाँ तो, और बच्चों को किसी को जज बना के उनसे पूछिए कि आप इस मामले में क्या जजमेंट देते, क्या फैसला सुनाते, आपको क्या लगा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। और ये जो प्रैक्टिस है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं लेती है। अब मैं बताती हूँ, जो बहुत देर तक काम करके आते हैं बाहर से, उनके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो जो सदस्य घर पे हैं वही ये आपस में कर सकते हैं। और देखिए ना, वीकेंड और संडेज तो होते ही हैं सबके पास, और ज़रूरी नहीं है कि फ़न करने के लिए मॉल्स जाया जाए, पार्क्स जाया जाए, मूवी थिएटर जाया जाए, या बाहर ही गेम्स खेलने जाया जाए। फ़न का मतलब होता है कि जिसमें आप एक दूसरे को समझ सकें, प्यार कर सकें एक दूसरे को, एक दूसरे के लिए इम्पॉर्टेंट समझ सकें एक दूसरे की,

दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानियां हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, वो सब जान सकें, इसीलिए तो हम ये सब करते हैं। मैंने आपको बार बार कहा है, अगर आप अपने से किसी छोटे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो समझ लीजिए पहले आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, वरना तो संभव नहीं हो सकता ये। और मैं सोच रही हूँ कि ये जो ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा सोचने की आप सोच रहे हैं, ये थोड़ा कम किया जाए। ट्यून इन करके रखिए मेरे साथ, अभी वापस आते हैं।

और कहानियों की बात हो रही थी तो कुछ और कहानियां हैं, जैसे चंपक वन की कहानियां, जानवरों और जंगल की मजेदार कहानियां हैं जिसमें भाई कॉमेडी भी है, सीख भी है, दोस्ती, टीम वर्क, समझदारी, बच्चे किसी भी जानवर की एक्टिंग करके मतलब आपको भी खिलखिला सकते हैं, आप करके खिलखिला सकते हैं, हंस सकते हैं। बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते हैं, वो हमको देख के सीखते हैं। अगर हम चाहते हैं कि उनमें अच्छी आदतें आए तो उसकी शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। किताबें पढ़ने की आदत, स्क्रीन टाइम कम करना हो या डिसिप्लिन सिखाना हो, बच्चों की पहली पाठशाला तो आप हैं, उनका घर है, उनके मम्मी पापा हैं, उनके भाई बहन हैं। जब बच्चे आपको किताबों के साथ समय बिताते हुए देखते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना खेलना। और जब घर में मोबाइल से और इन सारी चीज़ों में ज़्यादा बातचीत हो रही है तो फिर वो उसी तरीके का माहौल बच्चे को मिलता है। बच्चे खुद ब खुद स्क्रीन से दूर होने लगेंगे यदि आप स्क्रीन से दूर रहेंगे तो। बच्चों को बदलने से पहले खुद को बदल कर एक एग्जाम्पल सेट करिए कि देखो इस समय भी मैं पढ़ती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं काम करता हूँ। इसके अलावा दो बुक्स मुझे आपको सजेस्ट करनी है। एक है गुलिवर्स ट्रेवल्स, गुलिवर की यात्राएं हैं, हिंदी में भी है। ये जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है, ट्रैवल के बारे में लिखा है, एडवेंचर के बारे में लिखा है, नई नई चीज़ों को सीखना, दुनिया को नए नज़रिए से देखना, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। और द फेमस अकबर बीरबल की कहानियाँ, हाजिर जवाबी हो गया, और इसके अलावा अनोखी रीडिंग टाइम। और ये कुछ अलग सी चीज़ें होंगे जो आपके साथ, आपको खुद डे बाय डे इफ़ेक्टिव लगेगा, आपको बहुत सारा परिवर्तन अपने आप में दिखाई देगा। हाजिर जवाबी हो गया, बुद्धिमानी हो गया, मुश्किलों का हल निकालना। हर कहानी के बाद बच्चों से पहेली पूछिए, उसका सार पूछिए, आपको क्या समझ आया। पर शर्त यह है कि स्क्रीन टाइम से दूर। हो सकता है आपके पास समय कम हो, लेकिन एक घंटा भी समय निकालेंगे ना तो काफी है। हाँ, वैसे मैंने आपका फन बर्बाद तो नहीं किया, लेकिन आपको एक आइडिया दिया है। इतनी गर्मी में आपका बाहर जाने का मन नहीं है तो बाई चांस आज शाम को आप यही कर सकते हैं, एक डेढ़ घंटा सबके साथ बैठ के, चलो आज एक कहानी पढ़ी जाए। बहुत अनयूजुअल होगा, रीडिंग लिटरली, इतने सारे ऑप्शंस हैं इंटरटेनमेंट के, लेकिन ये टफ है लेकिन बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो इसे अपना सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। इन्हीं सारी बातों के साथ, इसी मेरी आइडिया के साथ आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप इंजॉय करिए अपना वीकेंड खूब, अपने लोगों के साथ खूब प्यार से रहिए, ढेर सारा प्यार है आपको। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें सुनने के लिए। प्रोग्राम शत्रुपा को, इस खूबसूरत सेगमेंट फैमिली फन को आज यहीं वाइंड अप करने का समय है। खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, न्यूज़ ब्रेक के उस पार आपका अपना प्रोग्राम होठों पे तेरी बात लेकर तुरंत हाजिर होते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने उपस्थिति के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में आने वाला हर व्यक्ति भारत की परंपरा और विरासत को जानने के साथ देश की सुरक्षा से जुड़े इस केंद्र में भ्रमण कर गौरव की अनुभूति कर सकता है। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि इस वाटिका में नौसेना को लगभग 3.5 दशकों तक सेवा देने वाले INS गोमती के साथ प्रदर्शित अन्य सैन्य उपकरण युवाओं को देश की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को समझने का मौका देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। भारतीय सेना में 4 दशकों से अधिक समय तक सेवा देने वाले जनरल चौहान ने अपने कार्यकाल को संतोषजनक और उत्कृष्ट बताया। 1981 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त करने वाले जनरल चौहान को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उच्च युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। सेना चिकित्सा कोर केंद्र और कॉलेज लखनऊ ने कल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान सेना चिकित्सा कोर के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल शिवेंद्र सिंह ने दो प्रमुख संस्थानों के बीच विशेषज्ञता के आपसी आदान प्रदान पर प्रकाश डाला। KGMU के कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद ने संस्थान की शैक्षणिक और पेशेवर उत्कृष्टता के जरिए भारतीय सेना का सहयोग करने की KGMU की प्रतिबद्धता को दोहराया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी टिफनी ट्रंप ताजमहल का दीदार करने के लिए आज आगरा पहुंची हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत टिफनी ट्रंप खेरिया एयरपोर्ट पर पहुंची है, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होटल ले जाया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: एक बजकर के 4 मिनट हो गए हैं। नमस्कार और फिर से शुभ दोपहरी आपको, गुड आफ्टरनून। आपकी दोस्त चंद्रकला जुड़ गई है आपके साथ और आपका अपना प्रोग्राम लेकर, होंठों पे तेरी बात। और सीधे सीधे आते हैं आज के मुद्दे पर कि आपके चेहरे पर, किसी भी के भी चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है। आप क्या समझते हैं कि चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है उससे क्या फर्क पड़ता है? चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान का क्या महत्व है? बस इसी बात को आप पहुंचाइए अपने होठों की, जो भी आपकी बात है, हमारी आकाशवाणी के हैंडल पर, मेल पर, fmakashwani@gmail.com, ये हमारी मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पर अपनी होठों की बात हम तक पहुंचाइए। दोबारा आपको बताऊं कि आज होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में आपको मेल्स भेजने हैं इस बात पर कि किसी के भी चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान का क्या महत्व है। बस मैं कर रही हूँ आपका इंतजार और आपके अपने प्रोग्राम की ये खूबसूरत सी ओपनिंग, खूबसूरत सा आगाज, ये लीजिए आपके रेडियो सेट पर।
5: दिन दिन तक दिन दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दिन तक दि

0: सिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच कल इस मामले में दायर अर्जियों की समाअत कर रही थी। इनमें एक अर्जी में एनटीए के नौ तश्कील या इसके हटाने के अहकाम देने और इसकी जगह पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बाइख्तियार और खुद मुख्तार इदारे के तश्कील का मतालिबा किया गया था। बेंच ने मरकज से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की आइंदा समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। एडवोकेट जनरल तुषार मेहता ने बेंच से कहा है कि हुकूमत नौजवानों के लिए फिक्रमंद है और ये यकीनी के लिए पुरहद है कि आगे ऐसी कोई चूक ना हो। दरअसल मरकजी वजीर बराए तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक का मामला बेहद अफसोसनाक है। डीडी न्यूज को दिए एक खसूसी इंटरव्यू में जनाब प्रधान ने यकीन दहानी कराई कि री एग्जाम का अमल बगैर किसी दिक्कत के मुनज्जम तरीके से मुनक्किद होगा।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: मरकजी सानवी तालीमी बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल यकम जून से एक्टिव हो जाएगा। दरख्वास्त करने के ख्वाहिशमंद तलबा की आंसर शीट की तस्दीक और दोबारा तशखीस के शफाफ अमल को यकीनी करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इसमें तशखीस का आला मेयार कायम होगा। बोर्ड ने कहा है कि तलबा किसी भी जानकारी के लिए CBSE की टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन 1800-1108-004 और रिजल्ट CBSE2026@CBSE.in पर राब्ता कर सकते हैं। बीएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम कल दो मीटिंगों में मुनक्किद होगा। पहली मीटिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी मीटिंग दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इम्तिहान के लिए रियासत के 72 अजला में 1011 मराकज बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 4.5 लाख लोग इम्तिहान देंगे। रियासत में गुज़िश्ता जुमेरात की रात से मौसम में आई तब्दीली से अवामी जिंदगी मुतासर हुई है। तेज़ आंधी तूफान बारिश और आसमानी बिजली से कई अजला में जानो माल का नुकसान हुआ है। कल शाम आगरा में आंधी और तेज़ बारिश के चलते एक खातून समेत दो अफराद की मौत हो गई और कुछ दीगर जख्मी हो गए। जौनपुर में भी बारिश से दर्ज हरारत में गिरावट आई है। आंधी पानी से हुए नुकसान को लेकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को फौरी फील्ड में जाकर सर्वे और राहती रकम जल्द जारी करने के अहकाम दिए हैं। वज़ीर आला ने रियासती आवाम से खराब मौसम के दौरान अलर्ट रहने, गैर जरूरी सफर से बचने और इंतजामिया के जरिए जारी गाइडलाइन पर अमल करने की अपील की है। इस दरमियान महकमे मौसमियात ने रियासत के कई हिस्सों में आज और कल तेज हवाओं के दरमियान बारिश और आसमानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नष्ट किया जाएगा।

एक बजकर के 16 मिनट हो गए हैं और वेलकम बैक न्यूज ब्रेक के इस पार आपका स्वागत है अपने ही प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में। और मुद्दा हमने आपको तुरंत बता दिया था बिना देरी के, और मुद्दा ये था कि चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान का क्या महत्व है, आपको क्या लगता है। और सबसे पहली जो मेल हमारे पास आई थी वो सुल्तान रजा की आई थी। इन्होंने लिखा है कि सबसे अच्छी बात हमको आपकी ये लगती है कि आप मेल पूरा पढ़ती हैं। अच्छा, और इन्होंने दूसरी बात ये लिखी है मुस्कान के बारे में कि 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने से, फिर भी बाज नहीं आते लोग मुंह फुलाने से। ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सुल्तान रजा जी, आपने ये जो लाइनें लिखी हैं बेहद खूबसूरत, आज के टॉपिक से बहुत मिलती हैं। और आपने हमें मेल किया है, कहाँ से मेल किया है आपने? कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से। और सुल्तान रजा, इकबाल रजा, सादिक रजा, मोनिश रजा, अफजल, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान रजा जी आपका हमें मेल करने के लिए। अगली जो मेल हमारे पास आई है वो है सुधाकर जाधव जी की। इन्होंने हमें मेल किया है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। और आपने हमें मेल आज के मुद्दे पर लिखा है कि होठों पे तेरी बात प्रोग्राम में जिसके भी चेहरे पर मुस्कान होती है वो दिखने में भी अच्छा।

अच्छा दिखता है और आनंदित रहता है। चेहरे की मुस्कान सबको आकर्षित करती है। सुधाकर जी बहुत शुक्रिया, आपने आज के मुद्दे पर बात की और सही बात है। मैं देख रही हूँ कि कौन बहुत यूनिक बात करता है मुस्कान के बारे में, है ना। मुस्कान कोई लड़की नहीं, मुस्कान आपके चेहरे की हंसी, मुस्कुराहट आपके चेहरे की। शिव पूजन लाल जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, हेलो आरजे चंद्रकला मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून शिव पूजन जी। और इन्होंने लिखा है, कहो क्या हाल है आपके। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आपके क्या हाल हैं। इन्होंने लिखा है, विलेज सनीगावा लखीमपुर खीरी से, प्रोग्राम में आपके टॉपिक सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। टॉपिक चेहरे पर मुस्कान तो हर कोई रख लेता है, पर जो दिल से मुस्कुराए मेरी नज़र में वही सच्चा इंसान है, और जिसके पास संतुष्टि है वही इंसान दिल से मुस्कुराता है। एंड थैंक यू सो मच शिव पूजन जी, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है, दिल से खुश रहेगा इंसान तो मुस्कान जो है वो बहुत ही बेहतरीन और ओरिजिनल वाली आएगी ना चेहरे पर, बात तो सही है। अगली जो मेल हमारे पास है रामराज जी की है, इन्होंने लिखा है, श्री गणेशाय नमः, और होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम में इन्होंने मेल किया है रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजभानु, शंकर और बहुत सारे लोगों का नाम शामिल किया है। साथ में लिखा है, चंद्रकला बिटिया को प्यार भरा नमस्कार, शुभ आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया रामराज जी आपका, बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है, हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जब लोग हंसते हैं एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आती है। रामराज जी आपका बेहद शुक्रिया, बहुत सही बात आपने बोली है, लेकिन हम हंसने की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुस्कुराहट की बात कर रहे हैं। चेहरे पर जिन व्यक्तियों के हमेशा मुस्कुराहट रहती है वो क्या चीज़ है, मतलब क्या है उसका महत्व क्या है। कोई आपको, आपने अक्सर सुना होगा किसी को कहते हुए कि बड़ी हंसमुख लड़की है, बड़ा हंसमुख लड़का है, या हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो उस बारे में आपको बताना है कि आपको अच्छा लगता है। अगली जो मेल हमारे पास है प्रज्ञानंद देवांगन जी की है। प्रज्ञानंद जी, आपने प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में मेल किया है और आज का मुद्दा है, मुस्कुराने का क्या महत्व है, चेहरे पर जो मुस्कान होती है उसका क्या महत्व है। ये जो खूबसूरत गाना है आपके रेडियो सेट पर हम भेजने जा रहे हैं, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं। और ये जो गाना है ना बहुत ही खूबसूरत है, वैसे ही जैसे आपके चेहरे की मुस्कान।

बस इसी खूबसूरत गाने की तरह आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और आपके दिलों में जो है ना वो मोहब्बत के बाग ऐसे ही हरे भरे गुनगुनाते रहें भाई, खिलते रहें हरे भरे, यूं मतलब एकदम लहरते झूमते रहें। मेरी तो यही दिल से दुआ है आपके लिए और साथ में अपने लिए भी, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, मतलब मुस्कुराते गुनगुनाते खुश खुश एकदम दिल में मोहब्बत के बाग खिलते रहें। और वो जो मोहब्बत है ना वो सबसे पहले अपने आप से होनी चाहिए हालांकि, लेकिन एक बात तो मुझे बड़ी सही लगी आज अभी तक जो मेल्स आए उनमें कि भाई अगर जो दिल से सुकून में रहता है, सुख में रहता है, दिल से सुखी है, संतुष्ट है और अंदर उसके दिल में मोहब्बत है, और संतुष्ट भी तो तभी इंसान रहता है जब वो 100% सही काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसके चेहरे पर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मुस्कान अपने आप दिखाई देती है, अच्छी खूबसूरत सुकून भरी रस भरी, है ना। अगली जो मेल हमारे पास है सुधांशु जी की है, इन्होंने लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इन्होंने लिखा है राधे राधे, सुधांशु ग्राम भगवतीपुर पोस्ट महुना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब जिला लखनऊ से, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आवाज अच्छी है, टॉपिक पर हमारा ये कहना है। अच्छा सुधांशु जी शुक्रिया हमारा सबसे पहले आपको। दूसरी बात इन्होंने लिखा है मुस्कान हमारे जीवन का वो अनकहा किस्सा है, अनकहा हिस्सा है जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ बयां कर देता है। हमारे होंठों पे सजी एक छोटी सी मुस्कान केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे आंतरिक स्वास्थ्य, मानसिकता, सामाजिक व्यवहार का दर्पण है। हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य का आधार बनती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारा मस्तिष्क सकारात्मक संकेत पाता है जिससे तनाव पैदा करने वाले जो हार्मोन्स है वो कम होते हैं, खुशहाली बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल होता है, मेंटल पीस हमको मिलती है। और इसके साथ ही इन्होंने लिखा है मुस्कान रिश्तों में मिठास और पॉजिटिविटी लाती है। भाई इतना सारा सुधांशु जी आपने लिखा है मुस्कान के बारे में, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी मुस्कान से ही मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव और मुश्किल समय में भी चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना हमारी इच्छा शक्ति और साहस को दर्शाता है। परिस्थितियों के सामने टूटने नहीं देती है मुस्कान, बल्कि अंदर से एक नया हौसला देती है। क्या बात है सुधांशु जी, आपने बहुत अधिक लिखा है और बहुत अच्छा लिखा है, बहुत शुक्रिया। आपने मुस्कान के बारे में ये खूबसूरत सी जो आपकी चेहरे पर मुस्कुराहट होती है उसके लिए बहुत अच्छा लिखा है। वकील अहमद जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वकील साहब। और इन्होंने आगे लिखा है चेहरे पर मुस्कान अच्छी होती है, सबको मुस्कुराना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। इन्होंने लिखा आपके चोट लगी थी, दुआ करते हैं जल्द ठीक हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, हमारी चोट जो है वो ठीक हो रही है और क्योंकि हमारे चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान है तो ये मुस्कान जो है दर्द का एहसास होने नहीं देती। और इन्होंने हमें मेल किया है सीतापुर से, बहुत बहुत शुक्रिया वकील अहमद जी हमें मेल करने के लिए। और जो अगली मेल हमारे पास है वो है रहमान जी की, और इन्होंने तो लेकिन गाने की फरमाइश की है, तो गाने की फरमाइशी प्रोग्राम तो ये है नहीं, ये प्रोग्राम होठों पे तेरी बात प्रोग्राम का है। प्रवीण जी की मेल हमारे पास आई है, इन्होंने लिखा है नन्हे नन्हे छोटे बच्चों की प्यारी सी मुस्कान इंसानियत की सबसे शुद्ध और खूबसूरत होती है जो हमें अट्रैक्ट करती है। उसी तरह हमारी एक छोटी सी मुस्कान किसी के भी दिल में बहुत जल्दी जगह बना लेती है।

0: चेहरे पर मुस्कान एक प्यारा एहसास होती है जो देखते ही एक दूसरे में फैल जाती है। प्रवीण जी, बात तो आपने एकदम बेहतरीन और सही लिखी है। बात आपकी सटीक इसलिए है क्योंकि ये जो आपने बात लिखी है ना, बच्चों की छोटी छोटी मुस्कान, आप देखिए, मतलब अगर कोई छोटा बच्चा होता है वो मुस्कुराता है तो सबके दिल लाइन से पिघल जाते हैं। चाहे कभी ना हंसने वाला इंसान हो, कभी ना हंसता हो, आपने उस इंसान को कभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए नहीं देखा है, लेकिन उसके सामने छोटा सा बच्चा ला दीजिए, 2-3 साल का, वो अगर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे तो वो कभी ना हंसने वाले खड़ूस भाई साहब के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। बात तो आपने एकदम सही लिखी है, मुस्कान का बड़ा महत्व है। और जो अगली मेल हमारे पास है, गुलफ्सा जी की है। इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून गुलफ्सा सिद्दीकी, संडीला से। इन्होंने लिखा है, मेरे हिसाब से मुस्कान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहे जितना अच्छा और महंगा मेकअप करा लें खूबसूरत दिखने के लिए, जब तक हमारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान नहीं होगी और घमंड गुरूर होगा तो सब बेकार है। मुस्कान से हमारे घर वाले भी खुश रहते हैं। बिल्कुल सही। एक और देखिए, एक और पॉइंट मिल गया मुझे गुलफ्सा जी, आपने बहुत ही सही बात लिखी है। पॉइंट हमें यह मिला कि घर के सदस्य भी वही सबसे ज़्यादा डांट खाते हैं जो मुंह बना के रहते हैं। और घर वाले पता है उनसे क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं कि मतलब पता नहीं किस बात का दुख है जो एकदम अजीब सा मुंह बना के बैठे हैं ये लोग, है ना। और मैं भी ज़्यादातर उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा डांटती हूँ जो लोग बोलते हैं कि मेरा मुँह ही ऐसा है, मैं नहीं मुस्कुराता हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल आपने सही लिखी है। तो मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुस्कुरा के रहते हैं तो एक जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है ना, वो बन के रहता है। बात तो सही है। देखिए कितनी ज़रूरी बातें निकल करके आ रही हैं धीरे धीरे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर आ रहा है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। और तब तक आप ट्यून इन करके रखिए, अपनी मेल्स टाइप करके रखिए और लिखिए कि मुस्कुराहट का क्या महत्व है, मुस्कान का आपकी ज़िंदगी में क्या महत्व है, किसी के चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है। ये खूबसूरत सा गाना आएगा एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

1:36 हो गए हैं और हम भी यही कह रहे हैं कि सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। और भाई होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम में मुस्कान की बात हो रही है और ये जो मुस्कुराहटें हैं, अगर मुस्कान के बारे में मैं बात करूं तो किसी की सहमति अगर जाननी हो बिना लफ्जों के, वो ढूंढते हैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट। कभी किसी भी बात के बारे में हाँ जानना हो बिना जुबान के, वही मुस्कान कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पसंद आया। और ये वही मुस्कान होती है जिसको पहली बार आप देखते हैं और पहली बार देखने के बाद वो पहली बार देखा हुआ इंसान आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर जाता है। उसका कारण होती है उनकी वो निश्चल मासूम सी खूबसूरत मुस्कान। ये मुस्कान ही है जो आपके दिल दिमाग तन बदन जहन सब जगह बस जाती है। मेरे हिसाब से तो मुस्कान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर किसी का मुंह बना हुआ है तो भाई दो ही चीजें मुझे समझ आती हैं, या तो ये आदमी खड़ूस टाइप का है या फिर कोई अंदरूनी तकलीफ है, बहुत बड़ी पीड़ा है जिसको ये छुपा ही नहीं छुपा पा रहा है, चेहरे पर उतर आई है। पर मैं आपको बताऊं, मेरा तो चेहरा ही ऐसा है कि टूट फूट के भी मेरे

चेहरे पे दर्द नहीं दिखाई देता, हमें आदत है मुस्कुराने की। और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि आप मुस्कुराया करिए, मुस्कुराया करिए। क्या जरूरत है किसी को अपना गम दिखाने की, अपना दर्द दिखाने की, अपनी जो तकलीफें हैं वो दिखाने की? क्या जरूरत है भाई किसी को दिखाने की? हाँ, अपनों के सामने तो आप दिल खोल के धड़ाधड़ रो भी सकते हैं, लेकिन ये दुनिया जिसके साथ आपने चलना है वो आपको तभी समझ पाएगी जब आप मुस्कुराते हुए उनको दिखेंगे। आप उनके सामने खुश दिखिए, चेहरे पर एक चमचमाती मुस्कान।

ये दुनिया जिसके साथ आपने चलना है वो आपको तभी समझ पाएगी जब आप मुस्कुराते हुए उनको दिखेंगे, आप उनके सामने खुश दिखिए, चेहरे पर एक चमचमाती मुस्कान लाइए, मुस्कुराइए, उनसे बात कीजिए मुस्कुराते हुए, हो सकता है वहाँ से भी आपको बराबर पॉजिटिव वाइब्स मिले। खैर अपनी बातें मैं नहीं बोलूँगी, आपके होंठों की तेरी बात जो यहाँ तक पहुँचनी है, आपकी बात यहाँ तक पहुँच रही है, वही बातें हम बोलेंगे। होंठों पे तेरी बात प्रोग्राम है भी यही। रामेश्वर जी लिखते हैं कि होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता बहन चंद्रकला को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। इन्होंने लिखा है कार्यक्रम बराबर सुन रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी प्रस्तुति होती है, शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। इन्होंने लिखा है जब बहन चंद्रकला आती है तो कार्यक्रम में चार चांद लगा देती हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है, हमें खुशी होती है आप आती हैं कार्यक्रम में। अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रामेश्वर जी, आपने ये तारीफ लिख के हमें मतलब मुस्कान का महत्व बताया है कि आपने इतनी तारीफ लिखी है चार चांद वाली, तो मैं ही मुस्कुरा दूं तो आपका जवाब ख़त्म हो जाए। रामेश्वर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मेरी तारीफ लिखी है, लेकिन मुस्कुराहटों का मुस्कान का क्या महत्व है ये नहीं लिखा आपने। आपने हमें लिखा है कानपुर देहात से, मुंगीसापुर से आपने लिखा था, खैर शुक्रिया आपकी मेल के लिए। अगला मेल जो हमारे पास है हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी जी का, इन्होंने लिखा है सादर प्रणाम, मैं पिंकू सोनी टिकैतनगर बाराबंकी से, और इन्होंने लिखा है कि हम लड़कों को बहुत कुछ सहकर भी मुस्कुराना पड़ता है। बात तो आपने बहुत गहराई वाली कही है, अपने परिवार को खुश रखने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। पिंकू सोनी जी आपने बात बहुत गहराई वाली कही, बहुत जरूरी बात कही, खूबसूरत बात कही। और यही बात थोड़ी देर पहले मजाकी अंदाज में कह रही थी मैं। हाँ ये तो है, मुस्कुराना तो पड़ता है, खासकर लड़कों को, गम सहकर भी, वो चाहकर भी अपना गम चेहरे पर, शिकन चेहरे पर लाते नहीं। इस बात के लिए तो सलाम करते हैं हम बॉयज को, लेकिन कभी दिल खोल कर रो लेना भी अच्छी बात है। पर लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ मुस्कान की बात हो रही है, तो सल्यूट है सारे लड़कों को जो सारे दर्द और गम से तुम अपने चेहरे पर दबा कर छुपा कर मुस्कुराते रहते हैं, कि घर में कहीं किसी को ये ना लगे कि लड़का हमारा कमजोर है, मुंह बनाए बैठा है। पर सल्यूट भी करते हैं और आपके स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए आपसे बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बताने के लिए, और अपने एहसासों को दबाकर भी, अपने दर्द को दबाकर भी सबके सामने मुस्कुराता चेहरा लाने के लिए। महेंद्र देपन जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है सादर प्रणाम। महेंद्र जी आपको भी प्रणाम। इन्होंने लिखा है राजस्थान के नागौर जिले के रूण से, ये बहुत प्यारा प्रोग्राम होठों पे तेरी बात सुन रहा हूँ, आपकी सुरीली आवाज़ और प्रोग्राम का विषय हमेशा हमेशा मन को मोह लेते हैं। बहुत शुक्रिया महेंद्र जी, आपको पसंद आया तो इससे अच्छी और खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। आज का जो सब्जेक्ट है मुस्कुराहट, वाकई में बहुत खूबसूरत है। जिंदगी की भाग दौड़ और काम के तनाव के बीच चेहरे पर एक मुस्कुराहट न केवल खुद को सुकून देती है बल्कि आसपास के माहौल में भी एक सकारात्मकता भर देती है। मेरे लिए मुस्कुराहट मेरी उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जो मुझे हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है, चाहे मैं पुणे में रहूं या गुजरात के प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहूं, अपनों के साथ साझा की गई एक मुस्कान ही सारी थकान मिटा देती है। मेरी ओर से इस प्रोग्राम के लिए छोटी सी पंक्तियाँ। चेहरे पर मुस्कुराहट हो तो हर दिन त्योहार सा लगता है, सादगी भरी मुस्कान से ही तो अपना हर अपना यार लगता है। महेंद्र जी बहुत ही खूबसूरत लाइनें हैं, बहुत शुक्रिया, और मेरी दुआ है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बने रहे। और राजेश कुमार जी का मेल हमारे पास आया है, इन्होंने लिखा अंदर से तो बहुत टूटे हुए रहते हैं मगर बाहर से लोग मुझे मुस्कुराते हुए देखते हैं, यही आपकी स्पिरिट है राजेश कुमार जी, और मेरी दुआ है कि आप यूं ही मुस्कुराते रहें। जितने भी श्रोताओं ने मेल किया है, आज जो प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, इस प्रोग्राम का मुद्दा ही यही है, मुस्कुराहट का क्या महत्व है, चेहरे पर मुस्कान का क्या महत्व है, और आपकी नज़र में मुस्कान क्यों ज़रूरी है, क्या सोचते हैं आप, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है तो क्या होता है। आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ, प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात। मेल टाइप कर लीजिए अगर आप नए श्रोता हैं हमारे साथ, fmakashwani@gmail.com ये हमारी मेल आईडी है, इस पर आप

बिल्कुल, और ये खूबसूरत सी मुस्कान अगर आप लिए रहते हैं तो आपके लिए यही वाइब आती है और यही बात आती है कि भाई आप सा मासूम खूबसूरत प्यारा कोई है क्या इस जहान में भला।

किसी को सकारात्मक संदेश देना, अपने चेहरे से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना, किसी दूसरे इंसान को कंफर्टेबल करना। अगर आप अपने चेहरे पर मुस्कान लिए होते हैं तो बाकी लोग आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बात तो आपने बिल्कुल सही लिखी है। मुस्कुराता हुआ आदमी सकारात्मक लगता है, और जो अंदर से हमेशा हंसमुख दिखते हैं वो अंदर से हमेशा सुकून में होते हैं, इसीलिए वो अक्सर हंसमुख कहलाते हैं। बात तो सही है, अंदर से जो इंसान मुस्कुराता रहेगा ना, दिल से खुश रहेगा, छोटी मोटी गिले शिकवे को भुलाकर उसके चेहरे पे मुस्कान रहेगी ही। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात आपने पूजा जी लिखी है। चंद्रमोहन मिश्रा जी लिख रहे हैं नौरंगपुर लखीमपुर से। सबसे पहले प्यारा सा नमस्ते, आज का मुद्दा बहुत ही प्यारा है। उस पे मैं यही कहना चाहूंगा कि मुस्कान सिर्फ चेहरों की एक हरकत नहीं बल्कि आत्मा की भाषा है। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती है और सामने वाले के दिल में एक सुकून भर देती है। आपकी एक प्यारी सी मुस्कान किसी के टूटे हुए दिन को संवार सकती है, दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना सकती है। याद रखिए, आपकी मुस्कान ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और दूसरों के लिए सबसे कीमती उपहार है। हमेशा मुस्कुराते रहिए। क्या बात है चंद्रमोहन जी, बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और मुझे बड़ी पसंद आई आपकी ये बात, और बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए इस मुद्दे पर। आपके लिए भी दिल से दुआ है कि आप खूब मुस्कुराते रहें। एक मेल इन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, सहारनपुर से। आपका कार्यक्रम सुनकर, आपकी मीठी आवाज सुनकर बहुत परेशान है मैम जी। परेशान है कार्यक्रम सुन के और मीठी आवाज सुन के परेशान है? क्यों भाई, परेशान क्यों है आप? आपको तो खुश होना चाहिए अगर कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और मुस्कान मतलब आवाज आपको मीठी लग रही है तो आपको खुश होना चाहिए ना। खैर कोई बात नहीं, और आपके रेडियो सेट पर ये खूबसूरत सा गाना, आपके मुस्कान के लिए जो मैसेजेस आए हैं, आ हा हा हा, मतलब मुस्कान कोई लड़की नहीं, मुस्कान चेहरे की मुस्कुराहट की बात हो रही है। और जिस भी लड़की का नाम मुस्कान होगा या जिस घर में मुस्कान होगी, आज तो उसका दिन ही बन गया होगा। सोच रही होगी कि एक एक घंटे तक लोग सिर्फ मेरी ही बातें कर रहे हैं। ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर, आप इसे सुनिए, तुरंत वापस आते हैं।

और राजेश कुमार जी का मेल फिर से हमारे पास आया है। इन्होंने लिखा है, आपका प्रोग्राम सुनकर इसलिए दीदी परेशान है कि वो छोड़कर कहीं नहीं जा पा रहे हैं, रेडियो से चिपके हुए। हमारी समस्या तो यही आ रहा है राजेश कुमार जी। हाँ, ये बात हो सकती है। खैर, अब अगले प्रोग्राम के लिए मेल्स हमें आने लगे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो समय है उसको बहुत ज़्यादा देर तक पकड़ के ना रखा जाए। हम सोच रहे हैं कि निकला जाए और बस ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज कर हम सोच रहे हैं कि बबाई किया जाए। प्रोग्राम होठों पे तेरी बात का सफ़र आज यहीं होता है ख़त्म, यहीं करते हैं वाइंड अप। लेकिन अगला जो प्रोग्राम है हॉटमेल, उस प्रोग्राम में आपके मेल्स, आपकी फरमाइशें आनी शुरू हो जाएंगी। तो तब तक के लिए ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। न्यूज़ ब्रेक के उस पार तुरंत आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल लेकर आते हैं।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में आने वाला हर व्यक्ति भारत की परंपरा और विरासत को जानने के साथ देश की सुरक्षा से जुड़े इस केंद्र में भ्रमण कर गौरव की अनुभूति कर सकता है। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि इस वाटिका में नौसेना को लगभग

साढ़े तीन दशकों तक सेवा देने वाले आईएनएस गोमती के साथ प्रदर्शित अन्य सैन्य उपकरण युवाओं को देश की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को समझने का मौका देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि जन जागरण, जनमत और जनभावना के सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में हिंदी पत्रकारिता ने सदैव समाज को दिशा देने का कार्य किया है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत प्रशिक्षित 7वें बैच की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पिछले 24 सप्ताह के दौरान आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण, शारीरिक दक्षता, युद्ध कौशल से प्रशिक्षित 835 जवानों ने इस परेड में हिस्सा लिया। परेड की समीक्षा डोगरा रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने की। प्रशिक्षण अवधि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अग्निवीर तरुण राणा को गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करना अनिवार्य होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने टेट को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को कल खारिज करते हुए कहा कि टेट केवल औपचारिक परीक्षा नहीं बल्कि प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में टेट पास करने की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष कर दी है। अब शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक टेट पास करना अनिवार्य होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
6: नमस्कार, आदाब और गुड आफ्टरनून। फिर से आपके पास, आपके साथ, आपके रेडियो सेट पर हाजिर हूँ, आपकी दोस्त चंद्रकला। 2:04 हो गए हैं और आपका अपना प्रोग्राम हॉट मेल शुरू हो चुका है। उफ, हॉट मेल कहते ही ये जो गर्म दोपहरी है ना, ये याद आ जाती है। और ये जो गर्म दोपहरी है, बस क्या कहने इसके। अब हमें पता है कि हमारा मेल बॉक्स जो है वो बिल्कुल फुल हो चुका है, एकदम फुल, बेहतरीन तरीके से भर चुका है। और जो पेज है उससे हमें पीछे ही जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो मेल्स हैं आपकी वो मिलती नहीं है, इतनी ज़्यादा मेल्स हैं। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डबल डबल मेल ना करें, कई बार अपनी मेल्स को रिपीट ना करें। हो सकता है कि आप रेडियो से इधर उधर जाते हो किसी समय, उस समय आपकी मेल पढ़ी जाती हो। आप प्लीज़, आप बार बार मेल्स रिपीट ना करें, ये आपसे बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। उससे क्या होता है कि आपके जो जेन्युइन मेल्स होते हैं वो दब जाते हैं नीचे। खैर, आज जो अगली पहली मेल आज के प्रोग्राम की है, वो उत्तम कुमार भगत जी की है। पाकुड़ झारखंड से आपने मेल किया है और गाने की फरमाइश के साथ आपने उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसू, अर्णव, सत्यम जी का नाम शामिल किया है। और जो

अगली मेल हमारे पास आज प्रोग्राम में है वो है दिलीप कुमार जी की, मुंदी चूक भागलपुर बिहार से आपने मेल किया है। दिलीप कुमार सोनी आपने अपना नाम लिखा है और गाने की फरमाइश की है। उदयवान पाल जी की मेल हमारे पास है और किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से आपने हमें मेल किया है। उदय भानपाल, जय हिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश, इन सब का नाम शामिल किया है। और अगला जो मेल हमारे पास है वो रामराज जी का है, इन्होंने रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से मेल किया है और गाने की फरमाइश की है। संजू देवी जी का मेल हमारे पास है, डियर चंद्रकला मैम नमस्ते, आप कैसी हैं, प्रोग्राम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और इन्होंने गाने की फरमाइश की है और आपने हमें एड्रेस, अच्छा ठीक है, सीतापुर से आपने लिखा है, पहाड़पुर पोस्ट बिठौला सीतापुर से। जय जी की मेल हमारे पास है, नमस्कार लिखा है, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से आपने लिखा है, जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का नाम शामिल किया है और गाने की फरमाइश की है। संजय कुमार जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है गाने की फरमाइश के साथ और बिजनौर से आपने हमें मेल किया है, संजय और शालिनी वर्मा का नाम शामिल किया है। अगला जो मेल हमारे पास है वो है बोधराज खोरवाल जी का, इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ उत्तम नगर दिल्ली से लिखा है, बोधराज खोरवाल, दीपांशु, कमला रानी और गीतिका जी का नाम शामिल किया है। मेहर अरोड़ा जी का नाम हमारे सामने है, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से आपने मेल किया है, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति, भूमिका का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है। सतीश अनेजा जी का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है जो रब की इबादत का पूरा हक अदा करता है, रब उसे उसकी ज़रूरत और तलब से कहीं ज़्यादा अदा करता है और आपने गाने की फरमाइश के साथ चंडीगढ़ सिटी से लिखा है, सतीश और बिमला अनेजा का नाम शामिल किया है। दिग्दर्शन गौड़ जी की मेल हमारे पास है, मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया, इन सब का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है। बेहद शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। शंभू दयाल जी की मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश के साथ, गांव जाखोद राजस्थान से मेल किया है, शंभू दयाल, विमला, योगेश, दीपक और कुमारी पूजा का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है, मल्होत्रा टीडी मोहाली सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये मेल हमारे पास आई है, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह, अमनदीप, इन सब का नाम शामिल किया है। और सुधाकर जाधव जी की मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है, चंद्रकला दीदी आज तो हमारा मेल मैसेज आपकी प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए, मेहरबानी होगी। बिल्कुल सुधाकर जी, आपका मेल शामिल हो चुका है और आज आपने गाने की फरमाइश लिखी है, गाने की फरमाइश के साथ आपने सुधाकर, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वज, सानवी, कल्पना, इन सब का नाम शामिल किया है। नितेश देवांगन का मेल हमारे पास है, पलारी छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है, नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम, कृष्णा का नाम शामिल किया है। बिट्टू गगनेजा जी का मेल हमारे पास है, जय श्री कृष्णा, लिखा है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है वो सुधांशु जी की है, इन्होंने लिखा है भगवतीपुर पोस्ट मोहना थाना इटौंजा बख्शी का तालाब लखनऊ और गाने की फरमाइश की है और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। सुनील पाठक जी का मेल हमारे पास है, सुनील जी आपने हमें मेल किया है अनारकली बाजार जगराऊं पंजाब से, सुनील, कमल, दीपिका, गाविया और सुच्चा सिंह जी का नाम शामिल किया है। हीरामणि वर्मा का मेल हमारे पास है, दतरंगी भाटापार छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल जी का नाम शामिल किया है, गाने की फरमाइश की है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम आपके मेल्स को शामिल करेंगे और ये जो खूबसूरत आपके मेल्स को पढ़ने का सिलसिला है वो चलता रहेगा और ये जो गाना है आप ही की फरमाइश का है, आपके रेडियो सेट पर रहा ये।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: करके 16 मिनट हो गए हैं, आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ, आपकी दोस्त चंद्रकला है आपके साथ और आपकी मेल्स का सिलसिला जारी है क्योंकि आपका अपना प्रोग्राम हॉटमेल जारी है, चल रहा है और 3 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा। अगली जो मेल हमारे पास है वो किन की मेल है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो है हमारे पास राजकुमार जी की और इन्होंने गांव फ्रांसी हिसार से मेल किया है। राजकुमार दूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार जी की अच्छा का नाम लिखा है और जो अगला मेल हमारे पास है वो है तनुजा देवांगन जी का और तनुजा जी ने हमें मेल किया है पाहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से। नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई जी का नाम शामिल किया है और किसी भी गीत में नाम शामिल करने के लिए लिखा है। अगला जो मेल हमारे पास है वो बाबू अंसारी जी का है और इन्होंने हमें अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से मेल किया है और अहमदपुर बाज़ार बाराबंकी से इन्होंने नाम लिखा है नसीम अंसारी, मुनान अंसारी, कुलदीप गुप्ता, फैज़ अंसारी, बाबू अंसारी का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। बिट्टू गगनेजा का मेल हमारे पास है जलालाबाद वेस्ट से, सुरेश, पूनम, विशाल, प्रिया का नाम शामिल किया है। अगली जो मेल हमारे पास है वकील अहमद की है, इन्होंने लिखा है आवाज़ अच्छी लगती है, हॉटमेल अच्छा है, कवाली मुबारक हो। अच्छा, आपने सीतापुर से मेल किया है हमें, साहिबा, साजिया और इन सब का नाम शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। जॉन डेकेस्ट्रो का मेल हमारे पास है और गुड आफ्टरनून लिखा है, इन्होंने जनकपुरी सहारनपुर से मेल किया है, जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस डेकेस्ट्रो का नाम शामिल किया है, बहुत बहुत शुक्रिया, गाने की फरमाइश की है आपने साथ में। ताज मोहम्मद की मेल हमारे पास है।

अगली जो मेल हमारे पास है वो तुलसी मस्कीन जी की है. इन्होंने लिखा है, रिस्पेक्टेड होस्ट मैडम नमस्कार, नौतपा कब तक है? आज दिल्ली का मौसम कुछ ठीक है, एनी सॉन्ग में मेल पढ़ें जी. तुलसी जी, नौतपा तो 1 जून तक होने की संभावना थी, 25 से 1 तक, लेकिन अभी मौसम विभाग का अलर्ट ऐसा आया है कि अभी कुछ राहत मिलने की जो है वो अनुमान है कि कुछ राहत मिल सकती है. आपने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से लिखा है तुलसी मस्कीन वीना मस्कीन, और राधे कुमार विद्यार्थी हैंडल से मेल आया है और गाने की फरमाइश की है. गंग जला सहरसा बिहार से आपने मेल किया है. राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, कुमकुम, साक्षी, बुल्की और फलन झा का नाम शामिल किया है. और जो अगली मेल हमारे पास है नरेश जी की है. नरेश जी ने लिखा है, ओके, गाने की फरमाइश के साथ आपने खैल बाजार पानीपत से मेल किया है. नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष कोयल डुगू, इन सब का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. अगली जो मेल हमारे पास है वो है कीर्तनपुरी गोस्वामी जी की, और आपने गाने की फरमाइश की है. नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से आपने मेल किया है. कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, दिशा, इन सब का नाम शामिल किया है. अगली जो मेल हमारे पास आने वाली है वो पता नहीं किसकी है, क्योंकि हम रुख कर रहे हैं अगले पेज की तरफ. और बबलेश पवार जी की मेल हमें मिली और गाने की फरमाइश के साथ बबलेश जी ने हमें लिखा है, पारस मणि रेडियो श्रोता क्लब, गांधी चौक, बाड़मेर, राजस्थान से. बबलेश, डैनी पवार, मनीष पवार, इन सब का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. सुदर्शन शाह जी की मेल हमारे पास है. आपने हमें गाने की फरमाइश के साथ पद्मा टॉकीज, नेपानगर, मध्य प्रदेश से मेल किया है. सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगला बेन, राजेंद्र जी का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. अनिल कुमार घुवाणकर जी का मेल हमारे पास है, और आपने गाने की फरमाइश के साथ मेहर नगर, उमरखेड़, महाराष्ट्र से मेल किया है. अभिजीत घुवाणकर, श्रीमती सरिता, प्रणीता, टुक टुक, इन सब का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. स्वर्ण सिंह जी का मेल हमारे पास है, गांव लोहगढ़, ठाकुरांवाला से. स्वर्ण सिंह, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह जी का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. पंकज शर्मा जी का मेल हमारे पास है. गुड आफ्टरनून, एनी सॉन्ग लिखा है, मॉडल टाउन करनाल से लिखा है. सुधीर, नूतन, संदीप, ओके, इन सब का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमें मेल करने के लिए. और संदीप मक्कर जी का मेल हमारे पास है, और आपने ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जालंधर से हमें मेल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. और जो अगली मेल हमारे पास है हितेंद्र दास जी की है. इन्होंने लिखा है, एनी सॉन्ग टू रीड आउट माई नेम प्लीज़ आर जे जी. आपने आसाम से हमें मेल किया हितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, और आपकी मेल हो गई है शामिल. और आर कुमार हैंडल से हमें मेल आया है. वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, इन सब का नाम शामिल किया है. महेंद्र देपन जी का मेल हमारे पास है और नमस्कार लिखा है. और महेंद्र देपन, गाँव रूण, ज़िला नागौर, राजस्थान से आपने मेल किया है, और आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है बना के भेजा है हमें पोस्टर. अच्छा ये बताइए महेंद्र जी, आप ये सिंदूर और बिंदी लगा के क्यों भेजते हैं हमें आप? मतलब मेरी फोटो में सिंदूर और बिंदी लगा के, मंगलसूत्र लगा के भेजते हैं, मेरे तो विवाह ही ना हो पाए अभी तक. खैर मजाक की एक बात है, मतलब पर मैंने कई बार देखा, मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन अभी इस बार देखा तो बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है आपका, बहुत बहुत खूबसूरत पोस्टर है आपका. लेकिन बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, पर ऐसे देख लेती हूँ तो थोड़ा सा अटपटा लगता है. खैर कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए. फागू राम यादव जी का मेल हमारे पास है. संबलपुर कांकेर से आपने मेल किया है. फागू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इन सब का नाम शामिल करके आपने गाने की फरमाइश की है. मुकेश कश्यप जी ने हमें मेल किया है, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से. मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर, सब का नाम शामिल किया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए. और अगली मेल की तरफ हम रुख करें, लेकिन ये खूबसूरत सा गाना आपने हमें रिक्वेस्ट किया है, ये खूबसूरत सा गाना आपके रेडियो सेट पर ये रहा, तुरंत आते हैं.

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: दो बजकर के 30 मिनट हो गए हैं और प्रोग्राम चल रहा है हॉटमेल। ओ माय गॉड, होंठों पे तेरी बात बोलने वाली थी लेकिन मैं अभी तो

आपकी जो मेल्स का सिलसिला है वो चलता चला जा रहा है और ढेर सारी मेल्स हमारे पास आ रही हैं, ढेर सारी, मतलब इतनी मेल्स हैं कि पढ़ते पढ़ते ना आप थक भी सकते हैं, मैं तो थक जाती हूँ, लेकिन मेल्स खूबसूरत होती हैं, फरमाइशें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं कि उतनी थकान नहीं होती है, कह सकते हैं। तो अगली मेल जो हमारे पास है वो अगली मेल हमारे पास है किन की है, संजय ढिंगिया जी की है। आपने हमें मेल किया है बागपत उत्तर प्रदेश से। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया जी का नाम शामिल किया है और आपने गाने की फरमाइश की है साथ में ही। अगली जो मेल हमारे पास है वो अगली मेल है तौहीद रहीन जी की। इन्होंने लिखा है, गम में हंसने वालों को रुलाया नहीं जाता,

हम लोग रेडियो मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं, कोई भी गीत सुना दीजिए। अंगद यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। बिल्कुल बेशक आपको खूबसूरत सा गाना सुनाया जाएगा। सावित्री देवी का मेल हमारे पास है। गुड आफ्टरनून, इन्होंने लिखा है प्रोग्राम अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन्होंने लिखा है स्वीट आवाज़ है आपकी, आप कितनी मेहनत करते हैं हम सबको मेल शामिल करने के लिए, थैंक यू लिखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये समझने के लिए। इन्होंने लिखा है इसीलिए जब कभी मेरा मेल मिस हो जाता है तो हम बुरा नहीं मानते, आई नो योर प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया सावित्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप। आपने हमें बरगदी अर्जुनपुर लखनऊ से मेल किया है, बहुत शुक्रिया, और गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया सावित्री जी, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हम दुआ करते हैं कि आप इसी तरीके से समझदार स्वीट हों, आपके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। पीएस नावकर जी का मेल हमारे पास है, गाने की फरमाइश के साथ नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, सोपान ताइडे का नाम शामिल किया है, बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। अब्दुल गफ्फार जी का मेल हमारे पास है, किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आपने मेल किया है। अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का नाम शामिल किया है। गुरमीत सिंह का मेल हमारे पास है, खुशनुमा नमस्ते लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बेहतरीन खुशनुमा नमस्ते। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से आपने लिखा है, नई दिल्ली, हर गीत खुशनुमा होता है। क्या बात है, हर गीत खुशनुमा होता है, जिंदगी भी एक गीत है, खुशनुमा जिंदगी है, जो आपको मिले लपेटते चले। मतलब गुरमीत जी आपने दिल खुश कर दिया, इसी तरीके की वाइब होनी चाहिए ना जिंदगी में, जो मिले भाई खुशनुमा है, मस्त है जो मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेल करने के लिए, और दुआ है कि आपके चेहरे पर यूं ही मुस्कान बनी रहे। राजेश वर्मा जी की मेल हमारे पास है, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनाने के लिए कहा है। गोल्डन श्रोत रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, आपने इन सब का नाम शामिल किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगली जो मेल हमारे पास है वो अनमोल सिंह जी की है। अनमोल जी आपकी मेल, अच्छा आपने लिखा, अनमोल सिंह बज गहनी बाराबंकी, और गाने की फरमाइश की है, और इन्होंने लिखा है फ़कत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शोखी तो दिलबरी क्या है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेल करने के लिए हमें। और अगली जो मेल हमारे पास है वो सत्यम जोशी की मेल है, और इन्होंने लिखा है आपको और आपकी पूरी टीम को प्यार भरा नमस्कार, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू। और गाने की फरमाइश की है सत्यम जोशी, श्रद्धा जोशी, प्रियंवदा जोशी, मंगलपुर कानपुर देहात से आपने मेल किया है हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली जो मेल ओके ठीक है, ढेर सारी मेल्स हैं आपकी, ढेर सारी मेल्स हमारे पास हैं। और जो अगली मेल हमारे पास हम लेने शामिल करने जा रहे हैं वो एक खूबसूरत से गाने के बाद शामिल करने जा रहे हैं। ये खूबसूरत सा गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, ये रहा आपके रेडियो सेट पर, आप इसे एंजॉय करिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
4: जी हाँ, 2:42 हो गए हैं, आपने ट्यूनिंग किया है 100.7 FM रेनबो स्टेशन लखनऊ, एंड हियर इज योर फ्रेंड चंद्रकला विद यू। और आपको बताते बताते बताते और आपकी मेल्स शामिल करते करते हम भी जो ये खूबसूरत खुशनुमा सफ़र है इसमें खो गए हैं कहीं। इतने खूबसूरत गाने, मतलब आज कहाँ से इतनी प्यारी प्यारी फरमाइशें आ रही भैया, मतलब एकदम दिल खुश हो गया एकदम। इतना अच्छा, मतलब डांसिंग टाइप के नंबर्स आ रहे हैं, मज़ा आ गया। और ये तो गोविंदा नंबर स्पेशल चल रहा है क्या आज? बढ़िया, आपकी फरमाइशें बहुत खूबसूरत हैं और कई लिसनर्स भेजते भी हैं मेल। अभी अभी एक लिसनर ने भेजा भी था मेल कि भाई जो दूसरे लोग फरमाइश करते हैं ना, हर गाना अपने आप में खुशनुमा है, तो मतलब वाइब जो है ना वो सेट हो ही जाती है, कुछ भी कहिए आप। अगला जो मेल हमारे पास है वो आफ्ताब अंसारी का है, और आपने हमें मेल किया है कहाँ से? शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना, आलिया, इन सब का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु का एक मेल आया है और एक खूबसूरत गाने की फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें मेल करने के लिए। और सदानंद मंडूरकर का मेल हमारे पास है, इन्होंने किसी भी गीत में शामिल करने के लिए लिखा है। डाबकी रोड अकोला महाराष्ट्र से आपने मेल किया है। सुशीला देवी, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर का नाम शामिल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए। और अगली मेल जो हमारे पास है सुरेश

तरंग जी की है और इन्होंने हमें मेल किया है, यू सो स्वीट वॉइस जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी, आपको हमारी आवाज़ स्वीट लगी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर से आपने मेल किया है, आशा नारंग और सुरेश नारंग, सोनाली नारंग का नाम शामिल किया है, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत गाने की फरमाइश की है आपने। और अगली जो मेल हमारे पास है, रविंद्र मोहन दास जी की मेल है, कोई भी गीत सुना दें। किशनगंज बिहार से आपकी मेल हमारे पास आई है और रविंद्र मोहन दास, आशा देवी जी की मेल नाम आपने शामिल किया है। और वारिस अली खान का मेल हमारे पास है, इन्होंने लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्ले द टाइटल ट्रैक। ओके ओके, आपने लिखा है संजय नगर यशबाग लखनऊ से, बहुत बहुत शुक्रिया वारिस अली खान जी हमें मेल करने के लिए। और अगली जो मेल हमारे पास आ रही है, उस मेल को देखिए, आप जो है एक ही मेल कई बार फॉरवर्ड मत करिएगा, ये अच्छी बात नहीं होती है। और मोहम्मद सादिक खत्री का मेल हमारे पास है और आपने हमें पुरानी मेल टाइप करके भेजी है, तो पुरानी मेल टैग करके मत भेजिए, कोई बात नहीं। अगली मेल हमारे पास है आनंद कुमार शुक्ला जी की, और आनंद कुमार शुक्ला जी ने हमें मेल किया है महमूदाबाद श्यामदासपुर से, कोई भी गीत सुना दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी हमें मेल करने के लिए, और शुक्रिया आपकी मेल के लिए। और बस इसी तरीके से आपकी मोहब्बत जो है रेनबो लखनऊ के लिए बनी रहे, ये खूबसूरत सा गाना आपने फरमाइश की है, आप इस खूबसूरत से गाने को सुनिए, हम भी तुरंत वापस आएंगे और ये चाहेंगे कि आप ये जो गाना आपने फरमाइश की है और जिसकी फरमाइश की बारी पड़ी है उसकी फरमाइश के साथ खुश हो लें, क्योंकि हम भी बहुत खुश हैं, खुश खुश बहुत ज़्यादा खुश हैं इस गाने को सुनकर।

2:49 हुए हैं और कहते कहते 2:50 हो गए हैं और इस समय प्रोग्राम हॉटमेल चल रहा है। साई गायकवाड़ जी का मेल हमारे पास है और इन्होंने लिखा है, गुड आफ्टरनून जी, और गाने की फरमाइश की है, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से मेल किया है। नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़ का नाम शामिल किया है। भाई मूसा शेख का मेल हमारे पास है और मूसा शेख जी ने मेल लिखा है, खैरियत से हो? हम बिल्कुल खैरियत से हैं। और इन्होंने गाने की फरमाइश के साथ सनावत से लिखा है, शेख मूसा मोहसिन का नाम लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र जी, आपकी मेल शामिल हो चुकी है भाई, किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें मेल करने के लिए, कृपया बार बार रिपीटेड मेल्स ना करें। और ये खूबसूरत सा गाना आपने हमें फरमाइश की है, ये रहा आपके रेडियो सेट पर।

2:54 हो गए हैं और आज प्रोग्राम हॉटमेल का सफ़र जो है समाप्ति की ओर है. आज यही वाइंड अप करना पड़ेगा हमें प्रोग्राम हॉटमेल को, लेकिन कुछ मेल्स हैं जो बच गई हैं, उन मेल्स को शामिल कर लेते हैं. मुजम्मिल शेख का मेल है और इन्होंने लिखा है, आई एम लिसनिंग फ्रॉम जुबली हिल्स हैदराबाद तेलंगाना. इन्होंने लिखा है, हम भी तो हैं मैडम जी आपकी जीमेल लिस्ट में, हमको क्यों भूल रही हैं आप, भूल नहीं गए हैं मुजम्मिल जी. ये जो बहुत ज़्यादा मेल करते हैं ना, डबल ट्रिपल चौपल 10-10 मेल्स करते हैं, उनकी वजह से जो है कहीं मेल छूट जाती है. और बाकी बहुत सारी जो मेल्स फिर से आ रही हैं उन सबको मैं बता दूं, जैसे रविंद्र मोहन जी हैं, स्वर्ण सिंह, शाहरुन नूर हैं, सादिक खत्री जी हैं, इन सब की मेल शामिल हो चुकी है, उसके बावजूद इनकी मेल अभी तक आती रह रही है. खैर, मैंने कोशिश पूरी की है कि आपकी मेल जो है वो पूरी तरीके से सारी शामिल हो जाएँ, और शामिल हुई भी आपकी मेल सारी सारी. और इन्हीं सारी बातों के साथ मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अगले प्रोग्राम को सुनने के लिए रेडी रहिए. ट्यून इन करके रखिए न्यूज़ ब्रेक के उस पार, आपका अपना प्रोग्राम सतरंगी दुनिया आता है. ये खूबसूरत से गाने के साथ आज प्रोग्राम हॉट मेल से आपकी अपनी दोस्त चंद्रकला को दीजिए विदा. टेक केयर.

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है, आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में भारतीय नौसेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी लखनऊ में आने वाला हर व्यक्ति भारत की परंपरा और विरासत को जानने के साथ देश की सुरक्षा से जुड़े इस केंद्र में भ्रमण कर गौरव की अनुभूति कर सकता है। इस अवसर पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल त्रिपाठी ने कहा कि इस वाटिका में नौसेना को लगभग 3.5 दशकों तक सेवा देने वाले INS गोमती के साथ प्रदर्शित अन्य सैन्य उपकरण युवाओं को देश की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को समझने का मौका देंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। उन्होंने बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बकराऊर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में मत्था टेका और बोधगया स्थित बर्मी मठ का भी दौरा किया। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा कोठी समेत गिरने और 6 मजदूरों की मौत के मामले में पुल निर्माण कराने वाली कंपनी के मालिक विजय सिंह व सुपरवाइजर के खिलाफ कुराना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसके अलावा पूरे मामले की जांच ADM NG की देखरेख में 3 सदस्यीय टीम को दी गई है। IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम ने फाइनल्स में जगह बना ली है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

3:04 हो गए हैं और ये वक्त कुछ और है. कुछ और इसलिए है क्योंकि वक्त सतरंगी दुनिया का है और सतरंगी दुनिया एक अलग और ऐसी दुनिया है जिसमें एक खूबसूरत अलग और हटके सेगमेंट आपके पास आता है. कभी कुछ ऐसे यूनिक फैक्ट्स, कभी कुछ कलरफुल बेहतरीन, लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ वो भी बेहतरीन है, रंगीन है, एक अलग सी दुनिया का हिस्सा है. जिस बारे में लेकर के आई हूँ उसको जानने के लिए तो आपको ट्यून इन करके रखना पड़ेगा. फिर से स्वागत है आपका आपकी दोस्त के साथ. आपने ट्यून इन किया है 100.7 FM रेनबो लखनऊ स्टेशन और प्रोग्राम सतरंगी दुनिया शुरू हो चुका है. स्वागत हो चुका है आपका और ये खूबसूरत गाने के साथ मैं सोच रही हूँ कि आगाज कर दिया जाए इस खूबसूरत से प्रोग्राम का. ये खूबसूरत गाना सुनिए और तुरंत वापस आते हैं.

वाह, आपको पता है ये हंसी किसकी थी? जो ये लास्ट में हंसी आई, मतलब एकदम ठहाकेदार हंसी, मैं बताती हूँ, पंकज कपूर की हंसी थी ये, शाहिद के पप्पा की, और ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं। खैर, इनकी हंसी से मुझे याद आ गया, आगे जो आज हम सतरंगी दुनिया में बात करने वाले हैं उस बारे में आगे बात करते हैं। आज मैं तीन फिल्में आपके लिए लेकर के आई हूँ। जी हाँ, तीन फिल्म्स जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट में जगह रखती हैं। इसमें आपको पता है कमल हसन की एक फिल्म है जिसको बाद में, अच्छा वो ओरिजिनल फिल्म है कमल हसन की, जो मतलब दुनिया के मतलब टॉप फिल्म्स में शामिल किया गया, जिसको बाद में दयावान नाम से उसका रिमेक किया गया था। हर साल इंडियन सिनेमा ढेरों फिल्म्स बनाती है, 100 साल से भी ज़्यादा समय से भारतीय फिल्मों का एक जो मनोरंजन का एक संगम चल रहा है वो बेहतरीन तरीके से चलता चला जा रहा है। अब तो भाषा का भी कोई बैरियर नहीं है, फिल्में पैन इंडिया रिलीज की जा रही हैं, और लेकिन इनमें से जहाँ कुछ फिल्में हिट हो जाती हैं तो वहीं कुछ पिट जाती हैं। फिल्मों के पिट जाने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे ना, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं और कुछ पर बेचारी फिल्मों पर विवाद का खतरा मंडराने लगता है। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रही हैं हिंदी सिनेमा की जो हमेशा के लिए दर्शकों के दिल में बस गई, कुछ ने ऑस्कर तक में अपने नाम का डंका बजाया और दुनिया में खूब नाम कमाया। अगर बात करें तो भारत हर साल 20 से अधिक भाषाओं में 1,500 से 2,000 के बीच फिल्में बनाता है, हर साल लगभग 1,500 फिल्में। सोचिए, दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में ही प्रोड्यूस की जाती हैं। पर आपको पता तो होना चाहिए कि 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में भारत की 3 फिल्में शामिल हैं। कौन सी हैं वो फिल्में, उसके लिए तो आपको ट्यून इन करके रखना पड़ेगा। ये खूबसूरत सा गाना आपको सुनना ही पड़ेगा और मैंने सोचा है कि आपको सुना दिया जाए। चलिए ये सुनिए, ट्यून इन करके रखिए, तुरंत वापस आते हैं, बात करते हैं उन 3 फिल्मों के बारे में।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: क्या खनकदार और खूबसूरत आवाज़ है ना इनकी, मतलब हर तरीके का जोनर जो है ये संभाल लेते हैं, समेट लेते हैं अपने आप में, और ऐसा लगता है कि जैसे ये गाना इन्हीं के लिए बना था, कोई और तो गा ही नहीं सकता था। इतना खूबसूरत, इतने प्यार से निभा देते हैं, और कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें इतनी मुर्कियाँ, इतनी मुर्कियाँ, इतना टिपिकल कि सोचते हैं हाय हाय क्या खतरनाक गा दिया इन्होंने। लेकिन इस गाने को सुनकर कितनी खूबसूरत वाइब आती है कि आहा, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। खैर, हम बात क्या कर रहे थे, जो बात कर रहे थे उसके लिए आपका वेलकम बैक। दूसरे जोन में चले गए थे ना आप। अब तो ज़माना ऐसा है कि आप पुरानी से पुरानी फिल्मों को इंटरनेट पे देख सकते हैं, वो भी घर बैठे, ना कहीं थिएटर जाने की ज़रूरत, ना सीडी खरीदने की ज़रूरत, ना कैसेट खरीदने की ज़रूरत। तो अब जो घर पे रह करके ख़रीद सकते हैं, देख सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, और इवन बहुत ज़्यादा टिकट्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, आपस में फैमिली के साथ देख सकते हैं, बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी LED स्क्रीन्स जो हैं वो सबके घर पे ऑलमोस्ट लगी हैं। अरे नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, मोबाइल में देख सकते हैं। अकेले हैं तो कोई बात नहीं, ईयरफोन लगा करके अकेले देख सकते हैं। खैर, समय जो है ना वो सुविधाओं के साथ जो है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाता है। जैसे इतनी पुरानी पिक्चरों को कहाँ देखें, कहाँ से थिएटर में दोबारा देखें, इंटरनेट पर सब अवेलेबल है। ऐसी फिल्में जो 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में शामिल है भारतीय फिल्मों में से, सबसे पहली फिल्म जो है ना प्यासा, गुरुदत्त और वहीदा रहमान की फिल्म है प्यासा। इसकी गिनती दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्मों में की जाती है, और इस फिल्म में गुरुदत्त ने

एक ऐसे उर्दू कवि का किरदार निभाया था जिसकी कविताओं और काम को लोग कोई भाव नहीं देते थे। तब उस कवि की जिंदगी में एक वैश्याई लड़की आती है जो उसे उसकी कविताओं के लिए बहुत मोटिवेट करती है, और वैश्या का रोल वहीदा रहमान ने निभाया था। वही मीना कुमारी गुरुदत्त की एक्स गर्लफ्रेंड के रोल में थी। कितनी खूबसूरत ये पिक्चर है, मैंने देखी है। मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर को, और इसके बारे में बहुत सारी और बातें भी जान सकते हैं। है ना खूबसूरत बात, कितनी पुरानी फिल्म है और कितनी मतलब अमेजिंग सी स्टोरी है इसकी। आप इसके बारे में सोचिए, सर्च करिए, तुरंत आती हूँ और दूसरी मूवी आपको बताती हूँ।

पुरानी फिल्म है और कितनी कितनी मतलब अमेजिंग सी स्टोरी है इसकी. आप इसके बारे में सोचिए, सर्च करिए, तुरंत आती हूँ और दूसरी मूवी आपको बताती हूँ.

और शतरंज की दुनिया में ऐसी ही खूबसूरत दुनिया की कहानी आपके लिए लेकर के आई हूँ। खैर ये कहानी नहीं है लेकिन कहानी जैसी अपने आप में समेटी है। पाथेर पांचाली दूसरी फिल्म वो है जिसने भारतीय सिनेमा का नाम दुनिया भर में किया और सत्यजीत रे की ये फिल्म है पाथेर पांचाली। ये फिल्म विभूति भूषण बंदोपाध्याय के बंगाली उपन्यास पर आधारित है, मतलब एक सही कहानी है जो लिखा है उपन्यास में वही 1929 में लिखा गया था। पाथेर पांचाली की कहानी 1910 के ग्रामीण बंगाल से शुरू होती है। वहाँ हरिहर रॉय नाम का एक आदमी रहता था जो कि मंदिर का पुजारी था, लेकिन उसका सपना कवि नाटककार बनने का था। फिल्म की कहानी में अपू और उसकी बड़ी बहन दुर्गा के गरीब परिवार की कहानी दिखाई गई थी। इसमें दिखाया गया था कि उनका परिवार गांव की कठोर जिंदगी में कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। पाथेर पांचाली सुबीर बनर्जी, कानू बनर्जी, करुणा बनर्जी और उमा दास गुप्ता जैसे कलाकारों को अपने आप में समेटी हुई थी। अब देखिए पाथेर पांचाली थी तो एक बहुत ही करुण कहानी, लेकिन इस कहानी ने दुनिया भर के लोगों का दिल झकझोर दिया। कितनी छोटी सी कहानी कई दुनिया के किस किस कोने तक लोगों के दिलों में बस सकती है, लोग उसे रिलेट कर सकते हैं। वो सत्यजीत रे की फिल्म पाथेर पांचाली कहती है। और ये खूबसूरत सी फिल्म जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ढूंढ पाएंगे वो पहलू जिससे दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में इसको अपनी जगह दी, मतलब इसकी जगह बनी। आप देख पाएंगे कि क्या ऐसा खास था इस फिल्म में जो दुनिया भर में इसकी इतनी तारीफ की गई। ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके रेडियो सेट पर।

3:45 हुए हैं और प्रोग्राम चल रहा है सतरंगी दुनिया, आपकी दोस्त चंद्रकला आपके साथ और ढेर सारी बातें. और जिन फिल्मों के बारे में हम बात करने जा रहे थे, वो फिल्मों को बताते बताते हम पहुंच गए हैं बहुत आगे. और दो फिल्में तो मैं आपको बता चुकी हूँ.

जैसा महबूब स्टूडियो दिया, तो इस फिल्म को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। इस फिल्म के बारे में बात करना तो बनता था, लेकिन वो फिल्म जिसने जो है रिमेक बनाई, जिस फिल्म की रिमेक बनी दयावान, उस फिल्म के बारे में तो बात करनी है हमें। लेकिन हम सोच रहे हैं खूबसूरत सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद बात की जाए उस फिल्म के बारे में। वही तो है हमारा आखिरी चंक। ट्यून इन करके रखिए 100.7 FM रेनबो।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: 3:54 हो गए हैं और समय हो गया है, बहुत देर हो गई है मतलब, और हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी बता दें कि कौन सी फिल्म है आखिरी वाली। वो तीसरी फिल्म है कमल हासन की फिल्म नायकन। कई ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दे चुके कमल हासन, ढेरों अवार्ड्स जीत चुके। एक फिल्म को उनकी टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों की लिस्ट में शामिल किया। इस फिल्म का नाम है नायकन। जी हाँ, 1987 में रिलीज हुई, तब सिनेमाघरों में 75 दिनों तक चलती रही और ब्लॉकबस्टर रही। बाद में इस फिल्म को बॉलीवुड में दयावान नाम से बनाया गया था। माधुरी दीक्षित, विनोद खन्ना, फिरोज खान लीड रोल में थे, याद तो आ गई होगी दयावान। लेकिन हो सकता है नायकन देखी ना हो। जी खरे, आपका तो इंटरनेट पे देख कर ढूंढ कर इसे देख सकते हैं आप। बाकी मेरा समय हो गया है जाने का, 3:55 और 56 होने को है। मैं जाती हूँ और अगली आवाज इंतजार कर रही है आपसे जुड़ने का, आपसे कनेक्ट करने का। मैं फिर किसी और दिन आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। खूबसूरत से गाने के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।

नमस्कार, शाम के 4 बजे हैं और अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज लखनऊ के CGCT में 9 करोड़ की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का

पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार सुरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा।

चार बजकर छह मिनट का वक्त हो चुका है और फहीम हाजिर लेकर के प्रोग्राम यूथ वेव। और जैसा कि दोस्तों आज है सैटरडे का दिन यानी शनिवार का दिन, और शनिवार के दिन हम इस विषय पर बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। जी हाँ, आज का जो विषय है वो सब्जेक्ट जो है वो है स्किल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा विषय कि वो बहुत कुछ आपको निखार सकता है अगर आपके अंदर कोई ऐसा हुनर है जो अभी तक आपके पूरी तरह से आपको नहीं आता है, या यूँ कहें कि उसमें आप परफेक्ट नहीं है। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं कि जहां पर आप एडमिशन ले करके और अपने जो स्किल है उसको आप अच्छे से बना डेवलप कर सकते हैं। कौशल विकास एक ऐसा विषय है जिस पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो युवाओं का एक जो विषय है ये ऐसा विषय है कि उनका जो भविष्य है वो उज्ज्वल होने के साथ साथ वो स्वयं को तो आत्मनिर्भर बनाएंगे ही, साथ ही साथ बहुत से युवाओं को भी रोजगार भी दे सकते हैं।

दोस्तों, भारत में युवाओं को रोजगार के जरिए उनको योग्य बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल इंडिया के तहत कई सारे कौशल विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें सबसे जो खास योजना है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY है। इसमें युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान युवाओं को उनकी स्किल और योग्यता के अनुसार उनके कौशल का विकास करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, भारत सरकार के कई सारे संस्थान हैं जो युवाओं को स्किल डेवलपमेंट में मदद करते हैं।

तो दोस्तों हम बात कर रहे थे स्किल डेवलपमेंट की, और इस स्किल डेवलपमेंट में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का बहुत ही खास स्थान है। इसका जो उद्देश्य है वो युवाओं को उद्योग, प्रासंगिक और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है दोस्तों। और इसके जो फायदे हैं वो फायदे क्या हैं कि इस कोर्स को पूरा करने के बाद अगर आपके अंदर बहुत सारी स्किल है या एक स्किल है तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और इसमें आपको फायदा ये है कि कोर्स पूरा करने के बाद सरकार आपको एक मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट में मदद करेगी आपको, यानी कि नौकरी दिलाने में भी आपको मदद करेगी।

टाइम हो चुका 4:21 दोस्तों, और अब से थोड़ी देर में यानी 4:25 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो जल्दी से बात कर लेते हैं कि अगर आपके अंदर कोई कौशल है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, तो आप यूपी कौशल विकास मिशन या भारत सरकार के कई ऐसे संस्थान हैं जिनकी वेबसाइट पर है, जाकर आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं।

नमस्कार। समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। भारत सरकार, रेल मंत्रालय, रेलवे भर्ती बोर्ड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। तकनीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। रिक्तियों की संख्या है 323।

0: तकनीशियन ग्रेड 3, रिक्तियों की संख्या है 6242। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रेलवे भर्ती बोर्डों की वेबसाइट। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA पुलिस अधीक्षक के 10 पदों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर आवेदन आमंत्रित कर रहा है। तैनाती भारत में कहीं भी की जा सकती है। पात्रता मानदंड, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के लिए देखिए NIA की वेबसाइट www.nia.gov.in। होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र पंजाब परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस एक पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग एक पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रबंधन एवं व्यवस्थापन एक पद, भर्ती की विधि रहेगी सीधी भर्ती। शैक्षिक योग्यता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अथवा MBA में मास्टर डिग्री या प्रबंधन के विषयों में मास्टर अथवा समकक्ष योग्यता। अनुभव रहेगा मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए। संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की वेबसाइट www.mgiri.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

4:30 का वक्त हो चुका है और अभी आप सुन रहे थे रोजगार समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और बस 4:30 जैसा कि मैंने बताया टाइम हो चुका है और ये टाइम होता है प्रोग्राम यूथ वेव का। और यूथ वेव में आज हम बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट की।

जी 4:35 का वक्त हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव और इस प्रोग्राम में मैं हूँ आज आपके साथ आपका आवाज़ दोस्त फहीम। सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है और आज हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन, जी हाँ ये है वो नाम जिससे आप जुड़ कर करके अपने जो स्किल है उसको और डेवलप कर सकते हैं। इसका उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है उस स्टेट के जो युवा हैं उनको विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें प्रशिक्षित करने के लिए ये मिशन चला रहा है। लगभग 30 से ज़्यादा सेक्टर्स में लगभग 300 से ज़्यादा जॉब्स रोल्स के लिए ये यूपी मिशन जो है उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन फ्री में ट्रेनिंग देता है। इसके अलावा ITI है, पॉलीटेक्निक है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहां पर आप जुड़ कर कर ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके अपने स्किल को और मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं और दूसरों को भी आप रोजगार दे सकते हैं।

और आप अपने कोर्स के ज़रिए कोई स्टार्टअप इंडस्ट्री या कोई छोटी मोटा काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो आपको फाइनेंशियल यानी कि आपको लोन भी देती है।

छात्र हैं। और इसमें जो सर्टिफिकेट लगते हैं उसमें आधार कार्ड, बैंक खाता और पासपोर्ट साइज फोटो, ये चीजें चाहिए। और आवेदन कैसे करें, आप कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की आधिकारिक जो वेबसाइट पर है उस पर विजिट कर सकते हैं और वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं।

दोस्तों स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आईटी और सॉफ्टवेयर का कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म का भी कोर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा हस्तशिल्प और कारीगरी, प्लंबिंग, सिलाई, ब्यूटिशियन, इलेक्ट्रीशियन और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यानी पात्रता, जो मानदंड या जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके लिए आवेदक की आयु 15 साल से 45 साल के बीच होनी चाहिए। अगर शैक्षिक योग्यता की दोस्तों बात करें तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले या बेरोजगार युवा इसके पास

4:50 का टाइम हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है यूथ वेव और इस प्रोग्राम के साथ मैं हूं आज आपका आवाज़ दोस्त फहीम। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जी हाँ, इसके जो ये जो योजना है इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इनकी जो वेबसाइट है उस पर आप जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन से कोर्सेज इस वेबसाइट पर आपको मिल सकते हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन भी आपको एक सुनहरा मौका देता है अपने स्किल डेवलपमेंट को और अच्छे से मजबूत करने का। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन योजनाओं के तहत युवाओं को किस प्रकार के आधुनिक स्किल्स में ट्रेंड किया जा रहा है और कौन कौन से नए कोर्स जोड़े गए हैं तो इनकी वेबसाइट पर आप जा करके वहाँ पर ज़्यादा डिटेल हासिल कर सकते हैं।

0: तो दोस्तों आजकल एआई का ज़माना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, बहुत सारे स्किल में एआई का इस्तेमाल हो रहा है और एआई का इस्तेमाल हर जगह अब होने लगा है। फिर वो चाहे आपका कंप्यूटर हो, आपका मोबाइल फ़ोन हो, या आपके माइंड में जो भी थॉट्स हों, वो तुरंत एआई आपको जो विचार होते हैं वो कहीं ना कहीं वो रीड कर लेता है। तो एआई का जो आजकल ज़माना है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आजकल एआई का इस्तेमाल हर जगह दोस्तों हो रहा है, नए नए स्टार्टअप सामने आ रहे हैं और ये सब स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल मिशन के जरिए हो रहा है। तो आप भी इनसे फायदा उठाएं और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। अगर आपके अंदर कोई स्किल है जिसे आप डेवलप करना चाहते हैं तो आप जो प्लेटफॉर्म है इनसे जुड़िए और इनसे फायदा उठाइए। फिलहाल 4:55 का वक्त दीजिए प्रोग्राम यूथ वेव से फहीम को इजाजत। मुलाकात होगी समाचारों के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम टॉप 10 के साथ। तब तक ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा मोहब्बत के साथ।
1: बटुक साहब ने एक छोटी सी पार्टी रखी है ऐसी जगह।
2: अरे झुमका भी मैं भूल गई जाने जा तेरे लिए।
3: थोड़ी देर नीचे चलते ना, बटुक अंकल बुरा मान जाएंगे। चलिए ना।
2: अरे

के मुख्य समाचार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहूं का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहूं नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। बिजली विभाग के इस आदेश के मुताबिक ईंधन अधिभार के कारण जून महीने से उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने हेतु हम सभी संकल्पित हैं। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। जमींदार लाला परेड ग्राउंड में आयोजित पासिंग आउट परेड में जवानों ने अनुशासन, साहस और सैन्य कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को सम्मानित भी किया गया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: कामकाज और योजनाओं में भी बखूबी दिखता है, जिसने न केवल सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का खाका खींचा है बल्कि सबके साथ और सबके विकास की सोच को आगे ले जाते हुए विरासत के साथ देश को आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि 12 सालों में सरकार का लक्ष्य जन कल्याणकारी नीतियों के जरिए सबके विकास का है, परिवर्तन में सबको सहभागी बनाने का है।
1: हम 12 साल से केंद्र में है, देश के 21 से ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी एनडीए की सरकारें हैं और हम राज्य के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकारों के लिए लोक कल्याण सर्वोपरि है और ये शब्द नहीं है, हमने जी करके दिखाया है, तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास का है, हमारा मॉडल गुड गवर्नेंस का है।
0: सरकार की योजनाओं की बात करें तो जहां जनधन योजना के माध्यम से करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया, वहीं उज्ज्वला योजना ने गरीब परिवारों की रसोई को धुएं से मुक्त किया। आयुष्मान भारत योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, एक्सप्रेसवे, रक्षा और डिजिटल सेवाओं में तेजी से हुए विकास ने भारत को नई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। देश के अन्नदाता किसान पर सरकार का विशेष ध्यान रहा है। खेती को उन्नत बनाने के साथ ही किसान को आर्थिक सबलता देने में किसान सम्मान निधि योजना बड़ी प्रभावी साबित हो रही है। वाराणसी के रहने वाले किसान राजेंद्र मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना के तहत उनको खेती से संबंधित चीजों को पूर्ण करने में बड़ी मदद मिल रही है।
2: हम लोगों के लिए एक वरदान है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा, ये जो कराया गया है किसानों के लिए, वो हम लोगों को 6,000 रूपए साल में मिलता है और इस 6,000 रूपए से जो बीज बीज की किस्त हम लोगों को 2,000 की मिलती है, उससे हम लोगों को बीज खरीदने में आसानी होती है, हम लोगों को यूरिया खरीदने में आसानी होती है, वे मौसम के भी जो फल हैं सब्जियां हैं उसको उगाने में भी हम लोगों को काफी लाभदायक।
0: वाराणसी के ही रहने वाले किसान संजय सिंह भी सम्मान निधि को किसानों को उनकी खेती के अलावा अन्य जरूरत को पूरी करने में उपयोगी मानते हैं। उनका कहना है कि किसान इससे अपनी खेती किसानी से जुड़ी काफी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
3: हम लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से उर्वरक, बीज, खाद खरीदने में हम लोगों को काफी सहूलियत हो रही है और किसान को काफी बढ़ावा मिल रहा है।
0: किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों के साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने, किसानों के सुरक्षित भविष्य पर भी सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। इसी सोच को साकार करते हुए साल 2019 में स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की गई, जिसके तहत 18 से 40 वर्ष आयु के छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 3,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। ग्रामीण परिवारों की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने वाली इस योजना में उत्तर प्रदेश पंजीकरण के मामले में अग्रणी राज्यों में शामिल है। हापुड़ के रहने वाले किसान गौरव त्यागी सरकार की इस योजना की सराहना करते हुए इसे वृद्धावस्था में बड़ा आर्थिक सहारा मानते हैं।
4: ये जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चल रही है बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रूपए की इसके मिलेंगे टाइम की जो एज के हिसाब से इसके काम आएंगे, तो इसके लिए मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ उनके लिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 12 वर्ष के कार्यकाल में कल्याणकारी योजनाओं के जरिए अलग अलग वर्गों को बड़ा लाभ दिया है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना छोटे उद्यमियों, स्वरोजगार करने वाले दुकानदारों, महिला उद्यमियों, युवाओं और सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायों को बिना गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध करवा रही है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें या उसका विस्तार कर सकें। साल 2015 में शुरू की गई इस योजना ने उत्तर प्रदेश में उद्यमिता और रोजगार सृजन को नई गति दी है। वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 11 लाख से अधिक लोगों को 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण दिया गया और इस मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर था। लखनऊ के रहने वाले बलराम विश्वकर्मा ने लकड़ी के फर्नीचर और टूल्स का काम छोटे पैमाने पर शुरू किया था। व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने मुद्रा योजना के तहत बैंक से ऋण लिया और अपने व्यापार को और अधिक विकसित किया। बलराम योजना की सराहना करते हुए कहते हैं कि इस योजना के तहत ऋण लेने में किसी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं पड़ती।
5: मुद्रा योजना से हमने लोन कराया और अप्लाई करते हुए बहुत कम समय में हमारा लोन हो गया। ये हमारा विश्वकर्मा पैकर्स है जिसमें हमारा फर्नीचर और टूल

0: का दोनों है, जो कारपेंटर टूल्स का काम भी है और मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे आप पूरा बिल्डिंग का काम। ये तो बहुत लाभदायक है, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, समय भी बहुत कम लगता है।
1: आगरा के रहने वाले बबलू भी मुद्रा योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि कोरोना काल में उनका काम प्रभावित हो गया था, ऐसे में मुद्रा योजना के तहत बैंक से मिला लोन उनके लिए बड़ा मददगार साबित हुआ।
2: जूते का मेरा छोटा सा काम था, कोरोना काल में मेरा काम हो गया बंद। मैंने लोगों से सुना कि मतलब लोन मिल रहा है, बैंक में गया, बैंक जाकर के मैंने एक फॉर्म अप्लाई किया, बिना किसी गारंटर के मेरे को 2 लाख रुपए का लोन मिल गया। अब वो काम भी चल रहा है, घर भी मतलब सही स्वच्छता सब लोग बढ़िया है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण जलीय जीवों के संरक्षण, उनके विकास को लेकर विशेष प्रयास किए गए हैं। प्रोजेक्ट डॉल्फिन सरकार द्वारा साल 2020 में शुरू की गई ऐसी ही एक महत्वाकांक्षी संरक्षण पहल है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का संरक्षण करना है। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में गंगा, घाघरा और चंबल नदियों में डॉल्फिन संरक्षण के लिए निगरानी, जन जागरूकता और नदी पारिस्थितिकी सुधार के प्रयास तेज हुए हैं। इन पहलों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में गंगा डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इटावा के क्षेत्रीय वनाधिकारी के त्यागी ने बताया कि चंबल सेंचुरी में डॉल्फिन की संख्या अब 191 से अधिक हो गई है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा है।
3: हमारे यहाँ पे साल जो डॉल्फिन की गणना हुई है वो 191 पाई गई है। हम साल भर में 2 बार गणना करते हैं, एक जनवरी में होती है, एक फरवरी, पिछले साल के मुकाबले लगभग बराबर है। तो इसके लिए वहाँ पे हमारा स्टाफ रहता है इनकी मॉनिटरिंग के लिए।
1: किसान, युवा, श्रमिक के सामाजिक परिवर्तन की बात हो या फिर देश की आधी आबादी, महिलाओं के सशक्तिकरण की पहल, सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में जन कल्याण और विकास को नई गति दी है। सरकार की योजनाओं ने न केवल सभी वर्गों पर ध्यान देते हुए सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया है, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति और योजनाओं के सही क्रियान्वयन से विकसित भारत का मजबूत आधार भी तैयार किया है।
4: विशेष कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने पर शैलेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: पांच बजकर 12 मिनट का वक्त और फहीम हाजिर एक बार फिर से लेकर के प्रोग्राम FM टॉप 10। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको बताते हैं 90s, 80s और 70-80 के दशक के वो गाने, कभी कभी 90s के भी गाने आपके सामने लेकर के हम आते हैं कि बताते हैं वो गाना अपने दौर में किस पायदान पर रहा है। तो इस प्रोग्राम में 10वें पायदान पर रहा है फिल्म जुड़वा का वो गाना जो अपने ज़माने में तहलका मचा के रखा हुआ था। जुड़वा जिसे रिलीज़ किया गया था साल 1997 में और इस फिल्म के डायरेक्टर थे डेविड धवन। उन्होंने इस फिल्म में सलमान खान को डबल रोल में जो था वो लॉन्च किया और इस फिल्म में ये कॉमेडी फिल्म थी जिसमें सलमान खान को डबल रोल करने थे और सलमान खान के साथ में थी करिश्मा कपूर, रंभा, और अगर म्यूजिक की बात की जाए तो संगीतकार थे इस फिल्म के अनु मलिक, और अगर गाने की बात की जाए तो आइए आप खुद ही गाना सुनिए।

0: थोड़ा जी लो थोड़ा थोड़ा मस्त रेनबो।
1: जी दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा थोड़ा जी लो और थोड़ा थोड़ा मर लो। इस गाने को पिक्चराइज किया गया था करिश्मा कपूर और गोविंदा के ऊपर, सॉरी माफ करिएगा, करिश्मा कपूर और सलमान खान के ऊपर ये गाना पिक्चराइज किया गया था। और ये गाना अपने जमाने में बहुत ही मशहूर हुआ था, हिट हुआ था। और इस प्रोग्राम में इस गाने का जो सिक्वेंस है वो 10वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर गाने की बात की जाए तो 9वां नंबर जो है वो है फिल्म आंदोलन से। आंदोलन जिसे 1995 में बनाया गया था, अजीज सेजवाल और निर्देशित साजिद नाडियावाला द्वारा निर्मित इस फिल्म में गोविंदा, संजय दत्त, ममता कुलकर्णी और सोमी अली मुख्य किरदार में नजर आए। दिव्या भारती को भी इस फिल्म में लिया गया था लेकिन उनकी अचानक मौत की वजह से उनकी जगह मिली ममता कुलकर्णी को। और इस फिल्म का ये गाना उस जमाने में काफी पसंद किया गया जो आज के इस प्रोग्राम में है नंबर 9 पर।

गाना नंबर 8 की अगर बात करें तो फिल्म दिल तेरा आशिक, ये वो फिल्म थी जो 1993 में बनी और इस फिल्म को बनाया था लॉरेंस डिसूजा साहब ने। फिल्म की कहानी लिखी थी रीमा राकेश नाथ ने और इस फिल्म में सलमान खान, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर जैसे कलाकार नजर आए। और फिल्म के अगर गानों की बात की जाए तो फिल्म के गाने उस जमाने में काफी पसंद किए गए,

0: ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

फिल्म शपथ, एक फिल्म थी शपथ जो रिलीज हुई थी 1997 में, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो डायरेक्टर थे राजीव बब्बर साहब, और निर्माता भी यही थे राजीव बब्बर जी। और फिल्म में इस फिल्म में जो नजर आए वो मिथुन चक्रवर्ती, गुलशन ग्रोवर, जय किशन श्रॉफ, रामदेव कृष्णा और शक्ति कपूर, रंजीत जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आए। और इस फिल्म का जो गाना था वो गाना आज भी

मुंडा गोरा रंग देख कर दीवाना हो गया, ये वो गाने हैं जो कहीं ना कहीं आपको झूमने पर, गाने पर, नाचने पर मजबूर जरूर कर रहे होंगे। अगला गाना है फिल्म कसूर से और वो इस वक्त इस प्रोग्राम में 6 नंबर के पायदान पर है। कसूर 2001 बनी दोस्तों हिंदी फिल्म थी जिसके निर्देशक थे विक्रम भट्ट साहब, लेखक थे महेश भट्ट और निर्माता थे मुकेश भट्ट और फिल्म में जो हीरो नजर आए वो आफ्ताब, शिवदासानी, लीजा रे, आशुतोष राणा, इरफान खान, अपूर्व अग्निहोत्री जैसे कलाकार इस फिल्म में नजर आए और फिल्म का जो संगीत दिया था वो नदीम और श्रवण की जोड़ी ने दी थी। फिल्म का ये गाना दोस्तों आज भी काफी सुना और पसंद किया जाता है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: अब जो गाना आप सुनेंगे वो गाना है पायदान नंबर 5 पर और फिल्म का नाम है कुली नंबर 1। अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म जिसे बनाया था जी डायरेक्टर डेविड धवन साहब ने, और इस फिल्म में भी उन्होंने गोविंदा, करिश्मा कपूर, हरीश कुमार, कंचन, कादर खान, महेश आनंद, सदाशिव अमरापुरकर, शक्ति कपूर जैसे कलाकारों को काम करने का मौका दिया। और मौका दिया संगीतकार आनंद मिलन को संगीत देने के लिए इस फिल्म में। इस फिल्म का ये गाना जो कि आजकल गर्मियों का मौसम भी चल रहा है, लेकिन फिलहाल मौसम जो 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं जेठ की जो दोपहर होती है उस पर बड़ा फिट बैठता है। फिलहाल 5:37 का वक्त हो चुका है और आप सुन रहे हैं FM Top 10 आज अपने आवाज़ें दोस्त फहीम के साथ।

0: ट्यून 200.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।

5:45 होने वाले हैं दोस्तों, और प्रोग्राम चल रहा है FM टॉप 10। आज आपकी आवाज है दोस्त फहीम के साथ। अभी आपने सुना गाना नंबर 5 फिल्म कुली नंबर 1 से, और अब हम आपको सुनाते हैं गाना नंबर 4 फिल्म भ्रष्टाचार से। November 22, 1989 को रिलीज ये फिल्म, जिसके निर्देशक थे रमेश सीपी साहब और मनोहर श्याम जोशी। GPSCP ने कहानी लिखी, और इस फिल्म में जो एक्टर कलाकार नजर आए वो मिथुन चक्रवर्ती, रजनीकांत, रेखा, शिल्पा शिरोडकर, अनुपम खेर, रजा मुराद, अंजना मुमताज और अभिनय चतुर्वेदी जैसे कलाकार नजर आए। और फिल्म का ये गाना अपने ज़माने में काफ़ी पसंद किया गया।

बढ़ते हैं गाना नंबर तीन पर। फिल्म है सपने साजन के, जिसे रिलीज किया गया था 1992 में। फिल्म के निर्देशक लॉरेंस डिसूजा साहब थे और फिल्म में करिश्मा कपूर, राहुल रॉय, जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार नजर आए। और फिल्म के अगर म्यूजिक की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम और श्रवण की जोड़ी ने, और इस म्यूजिक पर अपनी आवाज दी थी कुमार सानू ने।

पढ़ते हैं गाना नंबर दो की तरफ, जो है फिल्म तड़ी पार से। साल 17 दिसंबर साल 1993 को रिलीज ये फिल्म, जिसके निर्देशक थे महेश भट्ट, रॉबिन भट्ट और निर्माता मुकेश भट्ट, मिथुन चक्रवर्ती, पूजा भट्ट, अनुपम खेर, अवतार गिल, गुलशन ग्रोवर और कई सारे कलाकारों के साथ। जूही चावला भी इस फिल्म में नजर आई थी और मेन लीड रोल में पूजा भट्ट नजर आई। फिल्म का ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर कहीं ना कहीं आ ही जाता है। और इस फिल्म की अगर गानों की बात की जाए तो कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज से फिल्म को हिट कराने में काफी मदद की।

बात करते हैं गाना नंबर एक की जो है फिल्म साथी से, जिसे रिलीज किया गया था 1991 में। फिल्म के डायरेक्टर थे महेश भट्ट और इस फिल्म में आदित्य पंचोली, मोहसिन खान, वर्षा उसगांवकर जैसे कलाकार नजर आए और फिल्म का म्यूजिक जो था वो भी नदीम श्रवण ने ही दिया था। और इस फिल्म ने अपने ज़माने में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया और फिल्म के गाने कहीं ना कहीं आज भी लोगों की यादों में रचे और बसे हैं। फिल्म साथी एक ऐसी कामयाब फिल्म रही महेश भट्ट साहब की कि जिसको कुछ लोगों ने ज़्यादा ही पसंद किया। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो चुका है 5:55। दीजिए इस प्रोग्राम से फहीम को इजाज़त। मुलाकात होगी समाचारों के बाद अगला प्रोग्राम शाम यावत के साथ। तब तक ये मोहब्बत भरा साथ दोस्तों यूँ ही निभाते रहिए।

नमस्कार, शाम के 6 बजे और अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के CGCT में 9 करोड़ की रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजना

संस्थाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी। उन्होंने बताया कि सभी संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर राज्य सेतु निगम के महानिदेशक ने AE को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ डिपार्टमेंट जांच शुरू कराई गई है। गुरुवार देर रात हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर आप सुनेंगे हमारे प्रादेशिक हिंदी समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

6:11 का टाइम और प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध और शामी अवध लेकर के हाजिर हैं मैं आज आपका आवाज़ दोस्त फहीम। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर पर, वो है खबर मौसम के बारे में। मौसम 2-3 दिन से दोस्तों ऐसा हो चुका है कि लगता ही नहीं कि गर्मी कहीं हो रही है, कहीं बारिश हो रही तो कहीं आंधी आ रही है, कहीं पानी बरस रहा है तो कहीं बिजली कड़क रही है, और ऐसा भी शायद 1 या 2 दिन और आपको गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलना स्वाभाविक है। गर्मी से आपको राहत मिलती रहेगी, लेकिन अब ये गर्मी से राहत कितने दिनों तक मिलेगी ये तो खैर मौसम विभाग ने अभी आगे नहीं बताया है, लेकिन आज और कल का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी ठंडा रहने की उम्मीद है। ठंडे की बात करें तो तापमान जो है वो 30 के आसपास रहने की उम्मीद है, और इसके अलावा भी कल भी काफ़ी बारिश हुई और कहीं कहीं आंधी भी आई तो लोगों को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जिसकी भरपाई के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि उनकी भरपाई की जाएगी। और अगली खबर दोस्तों ये है कि LT ग्रेड में जीव विज्ञान और उर्दू में जिनके एप्लीकेशंस कैंसिल कर दी गई हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी UPSC में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक कैटेगरी में की जो परीक्षा है वो 2025 जीव विज्ञान और उर्दू विषय में 207 कैंडिडेट्स का जो अभ्यर्थन है वो तमाम दिक्कतों के वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें जीव विज्ञान के 155 और उर्दू के 52 अभ्यर्थियों के आवेदन शामिल हैं। तो जिनके आवेदन कैंसिल किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी 3 जून शाम 5 बजे तक आयोग के समक्ष अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं, और जीव विज्ञान में कुल 155 आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो ये खबर, ये सूचना कहीं ना कहीं अगर आपसे जुड़ी है तो देर मत कीजिए, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यालय से संपर्क कीजिए।

0: ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

और चलिए अब आपको बताते हैं बिजली से रिलेटेड खबर, और वो खबर ये है कि अब कंज्यूमर खुद चुन सकेंगे पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर। बिजली उपभोक्ताओं को अब अपने कनेक्शन पर पोस्टपेड या प्रीपेड स्मार्ट मीटर चुनने का राइट होगा, अधिकार होगा। यूपी विद्युत नियामक आयोग ने इस संबंध में एक बहुत ही खास फैसला सुनाते हुए ये कहा है कि किसी भी कंज्यूमर को, उपभोक्ता को, उसकी इच्छा के विरुद्ध प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। और आयोग इससे आदेश का जो है आयोग का, उसमें स्मार्ट मीटरों को लेकर चल रहे विवाद पर विराम लग सकता है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपना मीटर प्रीपेड रखना चाहते हैं या पोस्टपेड रखना चाहते हैं। ये अब जो मौका है वो आपके हाथ में है। 6:18 का वक्त, फिलहाल आप सुन रहे प्रोग्राम शाम में अवध, आज फहीम के साथ।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: आप सुन रहे हैं धड़कन लखनऊ की 100.7 एफएम रेनबो और इस धड़कन पर आज आपके साथ जुड़ा हुआ है प्रोग्राम शामे अवध के जरिए आपका आवाज़ दोस्त फहीम। तो जल्दी से बता दूं आपको कि केदारनाथ में अगर आप दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से दर्शन हो जाएं भोलेनाथ के, तो इसके लिए आपको वीआईपी दर्शन के लिए देने होंगे 1100 रुपए। श्री बद्री केदार मंदिर समिति ने केदारनाथ मंदिर में वीआईपी दर्शन व्यवस्था को लेकर एक नई जो करेक्शन एसओपी जारी की है, उसके मुताबिक अब वीआईपी दर्शन करने वालों को 1100 रुपए की पर्ची मंदिर समिति काटेगी और श्रद्धालुओं की जो बढ़ती संख्या है और लोकल लेवल पर जो वहां पे उनको सुझाव मिले हैं, इसी के आधार पर मंदिर समिति ने यह फैसला किया है ताकि दर्शन पर कम प्रभाव पड़े और दर्शन सुगम और समयबद्ध हो सकें। तो अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको 1100 रुपए की रसीद कटवानी ही पड़ेगी।

और चलिए बात अब लिखाई पढ़ाई की थोड़ी सी हो जाए। कल यानी कि संडे को बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें लखनऊ में 17,881 अभ्यर्थियों का पंजीकरण किया गया है। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन 31 मई को पूरे यूपी में किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय को 5 जिलों समेत लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में इस प्रवेश परीक्षा के लिए नोडल विश्वविद्यालय दोस्तों नामित किया गया है। इन जिलों में कुल 68 केंद्रों पर 30,286 परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा का समय सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। तो कल अगर आप इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाइए और अपना पेपर जो है वो अच्छे से दीजिए। ये बीएड प्रवेश परीक्षा में अगर पास हो जाते हैं तो आपको बीएड करने का मौका मिलेगा, तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। फिलहाल एक मुलाकात सॉन्ग आपके लिए।

बात की जाए नेशनल पीजी कॉलेज में, तो इसमें ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा 7 को, 8 और 9 जुलाई को है। तो कॉलेज ने फाइनल की डेट दे दी है, 31 मई तक है आवेदन करने का मौका। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सेशन 2026-27 में ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की जो डेट है उसको फाइनल कर दी है, और ये एग्जाम्स जो हैं अब 7, 8 और 9 जुलाई को आयोजित किए जाएंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं या लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये डेट इसका ध्यान रखिए, और निर्धारित जो डेट है इस पर आप पहुँचिए और एग्ज़ाम दीजिए और ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिए।

टाइम हो चुका है 6:36 और प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध, और शामी अवध के साथ मैं हूँ आज आपके साथ आपका आवाज दोस्त फहीम। और इस वक्त फहीम आपको लेकर के चलता है चारबाग रेलवे स्टेशन पर, जहां पर ट्रेनों की क्या है ताजा स्थिति मैं आपको जल्दी से बता दूं। ट्रेन नंबर 14216 यानी 14216 लखनऊ से चलकर प्रयागराज संगम को जाने वाली ये ट्रेन 16 मिनट की देरी से जा चुकी है। ट्रेन नंबर 15910 लालगढ़ से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली अवध आसाम एक्सप्रेस 1 घंटा 4 मिनट की देरी से चल रही है। ट्रेन नंबर 13066 आनंद विहार टर्मिनल से हावड़ा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 2 घंटा 38 मिनट की देरी से चल रही है। 15743 बालूरघाट जंक्शन से चलकर भटिंडा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 6:45 और अपने सही समय पर चल रही है। 09094 यानी 09094 अयोध्या कैंट से चलकर उधना जंक्शन को जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन 39 मिनट की देरी से आने की संभावना है। 20504 नई दिल्ली से चलकर डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस 32 मिनट की देरी से चल रही है। 14124 कानपुर सेंट्रल से प्रतापगढ़ इंटरसिटी 18 मिनट की देरी से चल रही है। 13041 हावड़ा जंक्शन से चलकर जम्मू तवी को जाने वाली हिमगिरी एक्सप्रेस 7:20 अपने निर्धारित समय पर चल रही है। 14209 प्रयागराज संगम से लखनऊ चारबाग आने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस 7:35 और अपने सही समय से चल रही है। ट्रेन नंबर 14205 अयोध्या कैंट से चलकर दिल्ली जंक्शन को जाने वाली यह ट्रेन 7:40 ऑन टाइम चल रही है। 12204 सहरसा गरीब रथ अमृतसर से चलकर सहरसा जंक्शन को जाने वाली यह ट्रेन 1 घंटा 22 मिनट की देरी से चल रही है। 12326 नांगल डैम कोलकाता गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8:05 सही समय से चल रही है। 15127 बनारस से चलकर काशी नई दिल्ली जाने वाली काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस 8:10 अपने निर्धारित समय से सही चल रही है। 01415 पुणे जंक्शन से चलकर गोरखपुर जाने वाली ये ट्रेन 10:16 की देरी से चल रही है और रात्रि के 8:16 पर लखनऊ में आने की संभावना है। 09465 अहमदाबाद जंक्शन से दरभंगा जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 2 घंटा 6 मिनट की देरी से चल रही है। 13009 दून एक्सप्रेस हावड़ा जंक्शन से योगनगरी ऋषिकेश जाने वाली ट्रेन 8:25 अपने सही समय से चल रही है। 11123 ग्वालियर जंक्शन से बरौनी जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 8:35 सही समय से चल रही है। 04225 मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से वाराणसी जंक्शन को जाने वाली ये ट्रेन 8:50 अपने सही समय से चल रही है। 15128 नई दिल्ली से बनारस जाने वाली ये ट्रेन 4 मिनट की देरी से चल रही है और 9:09 पर लखनऊ आने की संभावना है। ट्रेन नंबर 12392 नौ दिल्ली से चलकर राजगीर जाने वाली श्रमजीवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस 9:20 पर लखनऊ चारबाग आने की संभावना है।

0: Stay tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow ki.
1: बजकर 45 मिनट का वक्त हो चुका है और प्रोग्राम चल रहा है शामी अवध आज के आपके आवाज़ दोस्त फहीम के साथ। और अब बात करते हैं जी, अर्जेंटीना की कमान फिर मेसी को मिल चुकी है, यानी फुटबॉल मैच की अगर बात की जाए तो 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की मेजबानी में शुरू होने जा रहे फीफा फुटबॉल विश्व कप के लिए 2022 की जो विश्व चैंपियन अर्जेंटीना की टीम थी वो विजयी घोषित कर दी गई है। इस टीम की कमान एक बार फिर स्टार खिलाड़ी लियोन मेसी को दी गई है। वहीं अगर बात की जाए

और अब एक खास खबर ये है कि देश में जल्द ही दिख सकते हैं आपको प्लास्टिक के नोट। जी हाँ, आने वाले वक्त में कागज के नोट बिल्कुल ही चलन से बाहर हो जाएंगे और आपको आपके हाथों में होंगे प्लास्टिक के नोट। जी हाँ, पॉलीमर बैंक नोट एक पतली और लचीली प्लास्टिक पर प्रिंट किए जाते हैं। प्लास्टिक नोट की जो खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। ये क्रेडिट या डेबिट कार्ड की तरह सख्त नहीं होते हैं, हल्के होते हैं और इन्हें मोड़ा जा सकता है और इसका इस्तेमाल जो है कागजी मुद्रा की तरह ही किया जा सकता है। ये नोट काफ़ी मजबूत होते हैं और इस पर गंदगी या नमी का असर नहीं होता है। तो आने वाले वक्त में भारत में, इंडिया में अपने बहुत ही जल्द प्लास्टिक के नोट मिलने वाले हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सालों पुराने विचार को आगे बढ़ाने जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में आपके हाथों में कागज के नोट नहीं बल्कि प्लास्टिक के नोट होंगे।

टाइम हो चुका है 5:52, दीजिए प्रोग्राम शाम अवल से फहीम को इजाजत, मुलाकात होगी समाचारों के बाद अगला हरदिल अजीज प्रोग्राम हेलो एफएम के साथ 0522 2238 845 और 0522 2982 377, ये नंबर याद कर लीजिए, इन्हीं नंबर पर आप कॉल लगाइएगा और आप हमसे बात करिएगा और हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद का सॉन्ग। फिलहाल इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी हेलो एफएम के साथ।

नमस्कार, शाम के 7 बजे और अब सुनिए टॉप 10 समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ की रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। आज लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका लोकार्पण के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जन कल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। ये महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करती है।

संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैश्रम ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की होगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। जून महीने में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। हमीरपुर जिले में बेतवा नदी के निर्माणाधीन पुल हादसे को लेकर राज्य सेतु निगम के महानिदेशक ने एई को सस्पेंड कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ डिपार्टमेंट जांच शुरू कराई गई है। गुरुवार देर रात हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7:20 पर आप हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।

7:03 का वक्त और फहीम हाजिरी लेकर के हारदिल अजीज प्रोग्राम हेलो एफएम 0522 2238 845 और 0522 2982 377 ये हमारे नंबर हैं जिस पर हमें रहेगा आपकी फोन कॉल्स का इंतजार अगर आपको सुनना है अपनी पसंद का कोई सॉन्ग।

0: और देखिए तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, एफएम रेनबो आपका है और आप एफएम रेनबो के हैं, और इस वक्त हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ा हुआ है, उनसे करते हैं बात। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: जिला सीतापुर पचैनापुर मस्जिद के पास से शमा परवीन अंसारी बात कर रहे हैं। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम, मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बताइए सर, आप कैसे हैं?
0: जी हम खैरियत से हैं, आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक चाहते हैं।
1: सर आपकी आवाज साफ नहीं मिल रही है।
0: जी अब आवाज मिल रही साफ?
1: आपकी आवाज साफ नहीं, भर भरा रही है आपकी।
0: अच्छा, आप कैसी आवाज आ रही है?
1: तो हेलो सर
0: जी बोलिए,
1: आप इतने दिनों के बाद क्यों आते हैं, जल्दी आया करो। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं और आप सॉन्ग चलाते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है, अब आपका देखिए आपने कहा है, अब हम जल्दी जल्दी आया करेंगे और अच्छे अच्छे गाने लेकर के आया करेंगे। तो ये बताइए गाना कौन सा सुन?
1: सर हम आपको 4 बजे से सुन रहे हैं।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: गाना सुनेंगे सिर्फ तुम मूवी का, दिलबर दिलबर।
0: और ये गाना किसको सुनाना चाहेंगी?
1: सबसे पहले आपको
0: जी शुक्रिया,
1: फिर बाबू अंसारी भाई हैं, अकबर अंसारी भाई हैं, सिराजुद्दीन भाई हैं और मोहम्मद सद्दाम भाई हैं, मोहम्मद फैज भाई हैं, मोहम्मद अमीन भाई, जावेद अख्तर भाई हैं, मोहम्मद आसिफ भाई और वकील अहमद मंसूरी भाई हैं, सत्यम कुमार भाई, विनीत कुमार भाई हैं और गुलाब साहब की साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, महक अंसारी, रिंकी पिंकी, आरजे पूनम और जितने सुन रहे हैं उन सभी को और मिंटू तिवारी अंकल को।
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के।

0: शमा अंसारी जी से मिलने के बाद में अब देखिए किसका चैन किसका सुकून खोया हुआ है, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो, नमस्ते सर, गुड इवनिंग।
0: जी नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: ठीक हैं, बढ़िया है सर।
0: जी तो सबसे पहले सभी सुनने वालों को अपना परिचय बताइए।
1: जी विनीत कुमार बोल रहे हैं, ग्राम अर्थापुर, कोस्ट रामगढ़ चीनी मिल, जिला सीतापुर।
0: जी रामगढ़ जिला सीतापुर से आप बोल रहे हैं और एफएम रेनबो को सुन रहे हैं।
1: जी हम आप पांच वाला प्रोग्राम जो 5 से 6 बजे बीच में गाने सुपर हिट बजाए आपने।
0: चलिए शुक्रिया, ये सारा प्रोग्राम आप ही लोगों के लिए होता है। जो भी हमारी टेक्निकल टीम है इतनी मेहनत करती है, जितने भी हमारे सारे आरजे हैं मेहनत करते हैं, वो जब आपकी लोगों को अच्छा लगता है तो मेहनत हमारी सफल होती है। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: नैवेद्य राम की तरफ थे तो सुन रहे थे प्रोग्राम आप।
0: अच्छा तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे विनीत जी?
1: गाने के बोल हैं, वो दिल तोड़ के हंसती हो मेरा वफाएं मेरी।

0: तो ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आप सर हैं,
0: शुक्रिया,
1: और सुमा परवीन अंसारी सीतापुर से
0: जी,
1: और ओमकार सीतापुर से, सीमा रावत राजा जी पुरम लखनऊ से हैं, सुरभि सीतापुर से हैं, नवनीत हरकेश लखनऊ से हैं
0: जी,
1: संतोष कुमार मौर्य हैं हरदोई से, ममता हरदोई से
0: जी,
1: सुलक्षा सिद्दीकी है संडीला से, और हमारे बउआ महाराज हैं बेलरा से।
0: चलिए, सभी की आपने सभी के नाम लिए, आपकी पसंद का गाना सभी को हम सुनाते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में टाइम हो चुका है 7:15 और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। तो देखते हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कौन जुड़ा हुआ। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बताइए
2: जी। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
1: तो उज्जैन से आप हमें सुन रहे हैं
2: जी? सर आवाज साफ नहीं आ रही थोड़ी।
1: आप थोड़ा सा हवा आपके पास करीब में कुछ हवा कुछ ज्यादा ही आपसे गुजर रही है, तो थोड़ा सा कहीं हवा से बचें।
2: हेलो
1: जी, अब आवाज आई साफ आपके पास?
2: जी सर, फिल्म का नाम है बादल
1: जी
2: और गाने के बोले जुगनी जुगनी।
1: चलिए ठीक है, हम आपको सुनाते हैं आपके पसंद का वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं और लोगों को सुनाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

टाइम हो चुका है 7:16, अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 7:30 पर प्रोग्राम हेलो एफएम के साथ।

पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, यह सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहां पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहां लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है। इसके लिए भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूं।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण है उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित यह परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम एवं इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर स्थित लोहम का दौरा किया। यह उद्यम लिथियम आयन बैटरी, महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन करता है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि उनका निर्माण भारत में ही किया जाए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर हो। उन्होंने कहा कि इसी परिकल्पना के अनुरूप लोहम नामक एक युवा स्टार्टअप ने सफलतापूर्वक एक जटिल तकनीक विकसित की है। केंद्रीय राज्य मंत्री और पीलीभीत के सांसद जितिन प्रसाद ने आज पीलीभीत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेकर संगठनात्मक विषयों पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए हम सभी संकल्प

0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप समाचारों का बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। और अब शेष समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। प्रदेश भर में कल उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 आयोजित होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में सम्पन्न होगी। इसी क्रम में अमरोहा की अपर जिलाधिकारी गरिमा सिंह ने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा जनपद में 6 परीक्षा केंद्रों पर संपादित होगी।
1: जिले में बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए लगभग सभी सेंटर्स तय हो चुके हैं। उस पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और परीक्षा के पेपर्स के संबंध में सभी चीजें लगभग तैयार कर ली गई हैं। जिले में जितने भी सेंटर्स हैं, बच्चों को वहां पे पर्याप्त सुविधा भी मिल पाए, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। क्लॉक रूम की भी व्यवस्था कर ली गई है।
0: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय किया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में आज अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाति के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
0: आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज के दिन ही हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
3: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी।
0: प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज ग्रेटर नोएडा में लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी की तकनीक का स्वदेशी विकास है प्रधानमंत्री की परिकल्पना। और प्रदेश भर में कल आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: टाइम हो चुका है 7:31 और फहीम हाजिर एक बार फिर से लेकर के प्रोग्राम हेलो एफएम। और इस वक्त हेलो एफएम में एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ये करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
1: जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: जी हम लोग भी अच्छे हैं और सब बढ़िया है, सब ठीक है।
1: आपको ईद मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद।
0: जी आपको भी मुबारक और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। तो ये बताइए कि आप संडीला से बोल रही हैं?
1: जी सर हम गुलाबपुर से, देखिए संडीला से बोल रहे हैं लेकिन इस वक्त हम अपने गांव में हैं।
0: गांव का नाम क्या है आपके?
1: मौलवी खेड़ा।
0: मौलवी खेड़ा
1: जी सर।
0: जी मौलवी खेड़ा, समत खेड़ा।
1: जी जी सर आप तो सब जानते हैं।
0: और रसूलपुर हरदल में वो है ना, बहुत सारे गांव वहाँ पे हैं। क्योंकि जब आप लोग हमें फोन करते हैं तो आप लोगों की लोकेशन हम लोगों के पास आ जाती है कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो पूरी हमारे पास लोकेशन आ जाती है। जी तो संडीला का इस वक्त मौसम तो काफी ठंडा हो चुका है, बारिश हो रही है।
1: संडीला का तो मौसम नहीं बता सकते लेकिन मौलवी खेड़ा का बता सकते हैं, बादल है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी।
0: नहीं इस वक्त का हमारे यूपी में कई जगह पर बहुत से लिसनर ने हमें ईमेल भेजा है जिसमें रामराज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भान, शंकर भैया, पप्पू, मनीष, धीरज, मधु, बजरंगी,
1: ये बादल, ये हवाएं सब कहीं
0: हैं। हाँ सभी कहीं हैं, मौसम के बारे में जानकारी लोग हमें दे रहे हैं तो मौसम काफी खुशगवार हो चुका है। तो
1: 4 बजे वाला प्रोग्राम बहुत अच्छा किया, गर्दा ही उड़ा दिया, जो पति खुशी थी वो हवाएं ले गए।
0: चलिए आप लोग जो ये वर्ड यूज कर देना गर्दा उड़ा दिया तो बड़ा अजीब गरीब लगता है। चलिए ये हमारी सारी टेक्निकल टीम जो है ना, हम लोगों के पीछे जो टेक्निकल टीम होती है सब उनका सहयोग होता है और कहीं ना कहीं बहुत सारे।
1: आपको जैसे ही सुना हमने सोचा फहीम सर से बात तो हमें करनी है।
0: जी और आपसे पहले तालिब अंसारी जी का भी फोन लगा था, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया, उनका भी गाना भी हम प्ले करेंगे। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: मेरे साथ यही होता है, किसी का कटता है तो मेरा लग जाता है।
0: तो ये बताइए कि आपका फोन, तालिब अंसारी का फोन कट करके आपका फोन लगा है, तो बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: जी मैं नाड़ी तो खिलाड़ी का पास वो आने लगे जरा जरा।
0: और ये गाना किसको सुनाना चाहेंगी जी?
1: हेलो सर नाम ले लें?
0: बिल्कुल लीजिए नाम।
1: सबसे पहले आपको
0: शुक्रिया।
1: समा परवीन है, साहिब अंसारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है, निशा अंसारी है, ममता गौतम है, रोशनी रावत है और जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाबसा अंसारी जी, गुलाबसा सिद्दीकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।

और इस गाने के बाद आप सुनेंगे मोहम्मद अली अंसारी का वो गाना जो वो सुनना चाहते थे लेकिन किसी वजह से उनका फ़ोन डिसकनेक्ट हो गया। इस गाने के जस्ट बाद हम उनका गाना प्ले करेंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे आपके फ़ोन कॉल्स।

0: और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर कोई कॉलर मौजूद है, उनसे तो फिलहाल हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने फोन नहीं लगाया है तो आपको नंबर बता दें 0522 2238 845 और 0522 2982 377। ये हमारे दो फोन नंबर है जिस पर हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। और फोन कॉल्स के अलावा हमारे पास जिन लोगों के फोन नहीं लग पा रहे हैं वो धड़ाधड़ ईमेल हमारे पास भेज रहे हैं। निधि चौरसिया जी का भी ईमेल आया है, लिख रहे हैं कि प्लीज सर मेरा भी कॉल रिसीव कर लीजिए, आई एम शालिनी चौरसिया फ्रॉम लखनऊ। इसके अलावा भैया मोनू सेठ साहब भी, इनका भी मेल आ चुका है, लिखते हैं फहीम भैया जी को नमस्ते, कैसे हैं आप, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप, है खुशी हुई लेकिन इतनी लंबी तन्हाई मार जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी आने की कृपा कीजिएगा। तो मोनू सेठ साहब आप हम जरूर बहुत ही जल्दी जल्दी आने की कोशिश करेंगे, आप लोगों को अच्छे अच्छे गाने सुनाते रहेंगे। रामराज जी का भी हमारे पास ईमेल आ चुका है, वो भी बहुत प्यार भरा नमस्कार भेज रहे हैं, तो आप सभी को नमस्कार। कृष्णकांत जी का भी हमारे पास ईमेल आ चुका है, कैसरगंज बहराइच से लिखते हैं बहुत दिन बाद आज आपको प्रोग्राम में सुनकर अच्छा लग रहा है, बारिश से मौसम भी खुशगवार हो गया है, ठंडी हल्की ठंडी हवा शाम को और ज़्यादा रोचक बना दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णकांत सिंह साहब इस प्यार भरे ईमेल के लिए। जितेंद्र नामदेव, इनका भी ईमेल हमारे पास आया हुआ है और इनको भी काफ़ी प्रोग्राम अच्छा लगा, गाने अच्छे लग रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे को मौजूद है, उनसे करते बात। हेलो हेलो,
1: बैंकी साथ में होगी, बैंकी साथ में होगी जवानी छोड़ जाऊंगा, बैंकी साथ में होगी जवानी छोड़ जाऊंगा, मैं अपने वक्त की जिंदा कहानी छोड़ जाऊंगा, रहेगा सत्य हो तो पर हमेशा तस्करा जहर, रहेगा सत्य होतों पर हमेशा तस्करा जहर, कलम से निकली कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाऊंगा, कलम से निकली कुछ ऐसी निशानी छोड़ जाऊंगा।
0: जी कौन सा बोल रहे हैं?
1: जी मैं जावेद अख्तर रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से फहीम भाई आपसे मुखातिब हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी
0: जावेद अख्तर साहब, और बड़े ही शायराना अंदाज से आपने बात को शुरू किया है तो काफी हमें भी अच्छा लगा। तो जो कुछ आपके पास है वो आप हमको दे के जाइएगा फिर
1: जी,
0: यानी आपका जो शेर है जिसमें आपने कहा है कि मैं सब कुछ आपको देकर जाऊंगा, तो जो भी आपके पास है मुझे दे करके जाइएगा। तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: देखिए गाना फिल्म का नाम है बाजीगर।
0: जी
1: छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता,
0: हमें तुमसे मोहब्बत है बताना भी नहीं आता, तो ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे आप?
1: जी मोहम्मद फैज साहब हैं, रामपुर कटरा से हैं
0: जी,
1: शमा परवीन अंसारी जी हैं
0: जी,
1: साहिबा अंसारी जी हैं
0: जी,
1: रिंकी पिंकी जी हैं
0: जी,
1: राजेश कुमार वर्मा जिला हैं
0: जी,
1: और इरशाद अहमद आजमी साहब हैं आजमगढ़ से हैं,
0: चलिए
1: भारती
0: चलिए सभी को सभी सुनने वालों को मुबारक अली जावेद अख्तर साहब की तरफ से ये गाना।

0: 7:43 का वक्त और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम आज फहीम के साथ, और फहीम के साथ बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे फोन, बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। अमीन अहमद ग्राम बढ़िया गोसाईगंज लखनऊ से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फैज मोहम्मद फैज का भी फोन हमारे पास आया लेकिन पता नहीं क्यों कट गया। तो बहुत सारे फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं और इस वक्त एक फ़ोन कॉल हमारे पास आया हुआ है और आइए करते हैं उनसे बात। वो हालांकि डेली लिसनर हमारे हैं। हेलो जी, नाम बताइए।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: जी नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: सर रिमी सिंह की बात कर रहे हैं, एफएम रेनबो पे वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता जगदीशपुर शिवगढ़ दीवानों के शहर रायबरेली।
0: चलिए रायबरेली से बोल रही हैं आप, तो रायबरेली का मौसम कैसा है?
1: सर रायबरेली का मौसम एकदम झटका हुआ है सर, आपके आने से और भी अच्छा हो गया। आप बताओ आप कैसे हो सर, आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: जी हमारे यहाँ का तो मौसम बहुत ही अच्छा है, मौसम गुलाबी है। और
1: जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर जब फेवरेट अनाउंसर आते हैं ना तो कार्यक्रम और मतलब मौसम भी बहुत।
0: जी तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: सर दिलवाले से सुना दीजिए, मौका मिलेगा तो हम बता दें।
0: किसको बताएंगी आप?
1: सर वैसे तो हम किसी से बताना पसंद नहीं करते लेकिन अपने श्रोताओं को अपने गीत में शामिल कर चाहेंगे।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आपकी पसंद का गाना हम आप तक भेज रहे हैं रिंकी पिंकी जी।
1: जी सर, और सभी सुनने वालों को ये गाना डेडिकेट करते हैं, साथ में हमारे भाई इलीराज और नीरज राजमाही।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए रिंकी पिंकी जी।

0: और देखिए मौका मिल चुका है किसी इंसान को, और वो इंसान कौन है आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। गया प्रसाद जी, कहाँ से
1: जी?
0: सिधौली सीतापुर से बोल रहे हैं और प्रोग्राम का मजा ले रहे हैं
1: जी।
0: और करते क्या हैं आप?
1: जी सर, खेती किसानी करते हैं।
0: खेती किसानी करते हैं, तो चलिए बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: जी सर, आई मिलन पेड़ा
0: और ये गाना किसको सुनाना चाहेंगे?
1: जी सर, आप
0: हमको सुनाना चाहेंगे?
1: जी सर,
0: हमको आप दौड़ाएंगे सिधौली तक? चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का वो गाना जो आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी 7:50 का वक्त, अब 10 मिनट का वक्त शेष रह गया है इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने में। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, ये करते हैं उनसे बात। हेलो।
3: हेलो
2: जी, अपना नाम बताइए।
3: हम मिंटू तिवारी, ग्राम पटना, जिला फतेहपुर से बोल रहे हैं।
2: फतेहपुर से बोल रहे हैं तो फतेहपुर का मौसम कैसा है पिंटू तिवारी जी?
3: कल रात में बारिश हुई थी, आज का मौसम सारा दिन धूप थी सर।
2: अच्छा, तो धूप थी और धूप का मजा आपने लिया है इसके मतलब?
3: जी
2: तो क्या करते हैं आप पिंटू तिवारी जी?
3: आवाज आपकी आ नहीं रही सर।
2: जी अब आई?
3: हाँ अब आई है।
2: तो ये बताइए क्या करते हैं?
3: बस यही खेती किसानी के काम करते हैं, आपसे आप सुनते रहते हैं।
2: अच्छा, तो ये बताइए आज कौन सा गाना सुना दें आपको?
3: गुरु क्षेत्र का सुना
2: जी बिल्कुल, गाना आप नाम ले लीजिए।
3: पहले तो आप हो गए, आपके एफएम की टीम, मेश कुमार हो गए, प्रभाकर तिवारी जी और राहुल भाई हो गए और लोग सुन रहे हैं सभी के लिए गाना।
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए पिंटू तिवारी जी।

0: और प्यार के साथ हमारे पास किसी का टेलीफोन आ गया है, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम सर।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही हैं?
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: सर सनीला नाम है मेरा।
0: सनीला जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: सर कस्बा सेवता जिला सीतापुर से।
0: कस्बा सेवता जिला सीतापुर से आप हमसे जुड़ी हुई हैं फोन लाइन के जरिए। तो सनीला जी, क्या करती हैं आप?
1: सर मैं इस साल इंटर पास हो चुकी हूँ।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: और आगे क्या करने का इरादा है?
1: सर अभी सोचा नहीं है।
0: अभी सोचा नहीं है तो कुछ सोचिएगा। और
1: नहीं सर, पैसों की प्रॉब्लम इसीलिए नहीं सोचा, अगले साल लिखाएंगे नाम।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसके पढ़ाई के अलावा भी कुछ सिलाई कढ़ाई का काम कुछ कर लेती हैं आप?
1: सर अभी तो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि अभी छोटी है ना।
0: अच्छी बात है, चलिए ठीक है। तो इतनी दूर से आपने हमें फ़ोन लगाया है और आज के इस प्रोग्राम के आप आखिरी कॉलर हैं, तो ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगी?
1: सर आप लौट चले मूवी का टाइटल ट्रैक है जी।
0: चलिए आपकी पसंद
1: सर,
0: जी
1: सर आपसे हमारी फर्स्ट टाइम बात हो रही है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कि
1: आप नाम ले लें।
0: जी बिल्कुल, नाम ले लीजिए
1: जी। मेरी फ्रेंड है प्रीति मिश्रा
0: जी,
1: जयंती श्रीवास्तव, काजल अवस्थी और मेरी छोटी बहन अनिला
0: जी।
1: और सर आपको डेडिकेट है।
0: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। इसी के साथ इस प्रोग्राम से फहीम को दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त हो चुका है 7:55। ऋचा श्रीवास्तव बिल्कुल तैयार हैं अगले प्रोग्राम के साथ। फहीम की मुलाकात होगी फिर कभी और किसी प्रोग्राम के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ के सीजी सिटी में 9 करोड़ की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। जून महीने में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। सुल्तानपुर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए लंबित अनुदानों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने NHM के लेखाकार को सोमवार तक सभी लंबित प्रकरणों के निस्तारण के निर्देश देते हुए चेतावनी दी कि लापरवाही पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मातृ स्वास्थ्य, कुपोषण, टीबी उन्मूलन, आयुष्मान भारत, नियमित टीकाकरण समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने से लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ

खदशा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने से भी आशंका जताई गई है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

गजलें जो आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सिर्फ जिंदगी है, सिर्फ कपड़े बदलती है।
2: जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है।
1: अल्लाह की कायनात में जो राज हाय सर्वस्ता है छुपे हुए ख्यालात,
2: बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। सुनेगा, बावजू हो के भी
3: छूते हुए
2: डर लगता है, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है।
1: मेरे दुख सिर्फ मेरे नहीं है, वस्तुओं के सुख इसमें शामिल है।
2: और तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो।
1: सारी पर्दे उठाती है और हर ख्याल के सबको ख्याल पैदा करती है।

0: उतार लूं।
1: मुझे लगता है कि जिस शेर
2: यकीन मानिए जब जब ये अशआर आपके कानों में पड़ते हैं तो आपको हर बार हर लफ्ज़ में उनकी याद ताज़ा होती है। अगर उन्होंने कहा कि तुझे हर लफ्ज़ में उतार लूं तो यकीनन शीशे की तरह आईने के में सबको उतारा उन्होंने। वो नाम जो बेशक आज हमसे दूर हो गए हैं लेकिन याद रखें कि कभी ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। न जाने कितनी बार इस अशआर को हमने आपने कहा सुना पढ़ा है लेकिन आज शायद ये कहना सुनना पढ़ना लाजमी है।

बेशक आपसे आबशार के जरिए हम रोज जुड़ते हैं, लेकिन आज का आबशार महज आबशार नहीं बल्कि उनकी याद और उनकी लिखी मखमली और दिलों को छू लेने वाली गजलों का आबशार है, जिन्होंने अपनी शायरी और गजलों से उर्दू अदब के साथ साथ अपने सुनने वालों के दिलों को भी रोशन रखा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपसे उर्दू अदब और साहित्यकाश के मशहूर शायर पद्मश्री डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। मशहूर शायर बशीर बद्र साहब भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, अपनी यादों का उजाला छोड़कर इस जहाने फानी को अलविदा कह गए हैं, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि ऐसी शख्सियतें कहीं नहीं जाती। तो आज का आबशार हम नाम करेंगे उनके, जिन्हें हमने अभी दो दिन पहले खो दिया, लेकिन जब जब बात आएगी उर्दू अदब की तो हाँ, वो यही हैं, हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। नमस्कार, आदाब। सौ शार सात एफएम रेडियो पर आप सभी के साथ मैं आपकी दोस्त आपकी मेज़बान रिचा आज का आबशार श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें समर्पित करते हुए।

0: उनसे मिलने के बाद भी आपको ये लगता है कि नहीं, शायद अभी मुलाकात अधूरी है, या फिर मिलने की आरज़ुएं वैसे ही तारी रहती हैं, ठीक वैसे ही जैसे जब बात बशीर बद साहब की होती है तो हर बार ये कहना पड़ता है कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मशहूर शायर, गीतकार और साहित्यकार, जिनकी शायरी ने मोहब्बत, इंसानियत और ज़िंदगी के जज्बातों को शब्दों का अमली जामा पहनाया, उसे अमर कर दिया। मोहब्बत का शायर जिसने ज़िंदगी भर तितली, शहद, इंद्रधनुष, बादल, बिजली और रोशनी के अशआर पढ़े और उन्हें गज़लों में पिरोया, गोया कंदीलों वाली पतंगें नफ़रतों के आसमान पर राज कर रही हूँ। कहते हैं कि उनकी भाषा में वो रवानगी मिलती रही जो बड़े बड़े शायरों में नहीं मिलती थी। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपनी गज़लों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए बेहद गंभीर भाषा का इस्तेमाल न करते हुए, उर्दू या फिर फारसी के शब्दों से बचते हुए उसे अपनी गज़ल का हिस्सा बनाया। इसीलिए शायद जब उन्होंने ये लिखा तो सुनने वाला, पढ़ने वाला हर कोई उनका दीवाना हो गया। जब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई तो ये बात सीधा दिलों में घर कर गई, और इसकी बड़ी वजह यह रही कि हाँ, उन्होंने अपनी भाषा को, जो उर्दू अशआर थे, उसको फारसी या फिर बड़े बड़े शब्दों के साथ ना लेकर सहज, साधारण, आम भाषा में लिखकर आम जनमानस तक पहुँचाया। 8:13 का वक्त हुआ है। आज का आबशार हम और आप दोनों सुन रहे हैं, श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित कर रही हूँ बशीर बद्र साहब को।
1: ये भी ब्लॉक।

यकीन मानिए बशीर भद्र साहब ऐसी शख्सियत थे जिनसे मोहब्बत होना लाजमी है। जब जब उनकी गजलों को आप पढ़ते हैं सुनते हैं तो वो आपको हमेशा अपनी तरफ खींचती हुई सी मालूम होती हैं। बशीर भद्र साहब सिर्फ एक शायर नहीं बल्कि एक नज़रिया एक विचार थे, एक ऐसा विचार जो मोहब्बत और अमन के ख्यालों से आगे बढ़ता रहा। अगर हम उनकी ज़िंदगी की बात करें तो वो भी किसी इत्तेफाकों से भरी रही, हमेशा से कम नहीं रही। ऐसे कई सारे इत्तेफाक रहे, फिर चाहे उनके शुरुआती दौर की बात करें जब वो कॉलेज में थे, या फिर मुशायरों का वो दौर जहां उनकी मखमली अंदाज में कही गई शायरियों ने तमाम सुनने वालों को स्तब्ध किया हो और उन्हें सुनने पर मजबूर किया हो। किस्सा उस वक्त का भी है जब एक बार उनके कॉलेज के एग्ज़ाम में उनसे एक शेर का मतलब पूछा गया। इत्तफाकन वो शेर बशीर भद्र साहब का ही लिखा हुआ था और जब उनसे उसकी तशरीह यानी कि मतलब बताने की बात कही गई तो कहते हैं कि एक्सटर्नल एग्जामिनर ने उन्हें ये कहकर कि तुम तो अभी छोटे हो और तुम इतने संजीदा शेर का मतलब क्या बता पाओगे, उसे गलत बताया। इस बात पर बशीर भद्र साहब थोड़ा सा मुस्कराए और फिर उन्होंने कहा, हुजूर माफ़ी चाहता हूँ लेकिन आपको बताना भी चाहता हूँ कि ये शेर इसी नाचीज़ का कहा हुआ है। जाहिर सी बात है कि एग्ज़ामिनर के लिए मानना बेहद कतई नामुमकिन सी बात थी, क्योंकि जिस दौर की हम आपसे बात कर रहे हैं ना, उस दौर में वाकई गहरे शेर लिख पाना या पढ़ पाना सबके बस की बात नहीं होती। महज 7 साल की उम्र से लिखना उन्होंने शुरू किया था और जब कॉलेज का ये दौर आया तो एग्ज़ामिनर ने उनकी बात को मानने से कतई इनकार कर दिया था। लेकिन सच तो ये था कि वो शेर उन्हीं का लिखा हुआ था और जब भी कभी ऐसे कोई दौर आए तो उन्होंने हमेशा इस बात को साबित किया कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा।

हमेशा कायम रखा और यही माना कि जब जब गज़लों में हम आम भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, तो ज़्यादा समझ आएगी और आप उनकी किसी भी गज़ल को उठाकर सुन लें, देख लें, पढ़ लें, कह लें, आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि हाँ, ये बात एकदम सही है, एकदम सही है। 8:27 का वक्त, आप शायर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके अपने 107.7 FM रेडियो पर। आज आपकी मेज़बान ऋचा के साथ श्रद्धांजलि स्वरूप बशीर बद्र साहब को।

मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। कभी किसी दौर में यह अशआर उन्होंने लिखा, लेकिन लगता है शायद ऊपर वाला भी कभी कभी आपकी बात को सुन लेता है, बारीकी से सुनता है और वक्त के किसी दौर में उस बात को साबित भी करता है। कहते हैं जिस शख्स ने दुनिया को उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो जैसे कालजयी शेर दिए, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आखिरी समय में सबसे पहले उनकी यादें ही उनसे छीन ली। भोपाल के एक शांत कोने में रहते हुए बशीर साहब अल्जाइमर भूलने की बीमारी के उस मकाम पर पहुंच गए जहां वो कमरे में बैठी अपनी पत्नी को देखकर भी अक्सर उनसे पूछते थे कि आप कौन हैं।

0: सकी।
1: दूसरा, आखिरी दिनों में जब कभी उनके सामने कोई उनका ही पुराना शेर पढ़ता तो वो बच्चों की तरह ताली बजाकर कहते थे, वाह कितना उम्दा शेर है, किसने लिखा है। कहते हैं बशीर बद्र साहब का इस दुनिया से रुखसत होना सिर्फ एक महान फनकार का जाना नहीं है, बल्कि उर्दू गजल के उस स्वर्ण युग का पूरी तरीके से खामोश हो जाना है जिसने शायरी को मखमली मिजाज और आम आदमी की धड़कन बनाया था। आज भले ही बशीर बद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं और उनकी आँखें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, आवाज़ हमेशा के लिए खामोश है, लेकिन आप और हम सभी ये जानते हैं कि उनकी लिखी गज़लें हमेशा हमारे बीच कही, पढ़ी और सुनी जाएंगी। जब भी ये दुनिया मोहब्बत और बिछड़ने के दर्द को बयां करना चाहेगी, उनके लिखे अल्फाज हमेशा जिंदा रहेंगे। चलते चलते उनका यही शेर जहन में वापस आ रहा है जो हमने कई बार कितनी बार आप तक पहुंचाया है, वही शेर जो कहता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में डिमेंशिया से वो जूझ रहे थे और इसके चलते 28 मई 2026 को भोपाल में इस महान शायर ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ उर्दू जगत हाँ खाली ज़रूर हुआ है, लेकिन यकीन मानिए जैसा कि मैंने कहा कि उनकी कही लिखी गई गज़लें हमेशा हम सबके साथ रहेंगी। उर्दू शायरी की दुनिया में दिए गए उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 1999 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया और इसी साल उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। ये पुरस्कार उन्हें उनकी गज़ल आस के लिए दिया गया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें मीर तकी मीर पुरस्कार और शिखर सम्मान भी मिला है। रात के 8:41 का वक्त हो चुका है, आप शार को यहीं पर रोकने की बारी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि ये श्रद्धांजलि जो आज हमने आपने मिलकर सबने रेनबो के ज़रिए बशीर बद्र साहब तक पहुँचाई है, हाँ ये ज़रूर कामयाब होगी। भले ही आज वो हमारे बीच नहीं हैं, जिस्मानी तौर पर नहीं हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमेशा रहेंगे, अपनी गज़लों शायरी अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा रहेंगे। 8:41 का वक्त या आखिरी गज़ल पर आप कहीं मत जाइए, 8:45 पर समाचार संध्या और फिर वापस लौटेंगे आपके अपने फेवरेट शो रेनबो कैफ़े के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया, बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और

0: मंत्रिमंडल के सदस्य जून 3 तारीख को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सचेतक एग्री एसएस कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ टीवी के द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना डीएमके से इस्तीफा देने के तुरंत बाद टीवीके में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 1 महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
4: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य

0: मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम ITI क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन, प्रधानमंत्री सेतु

योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 175,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: रात के खामोश पहर में

0: हैरान हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़।

0: पंजाबी सी बीट पे दिल फिर धड़का।
1: पॉप और रॉक की सिज़लिंग केमिस्ट्री,
0: या फिर मिलियंस ऑफ लिस्नर्स ने क्रिएट कर दी हिस्ट्री।
1: द वन स्टॉप सेंटर फॉर गर्दा म्यूजिक। तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा हुसैन, तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा। सिर्फ रेनबो कैफे में हर रात 9 से 10
0: ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो।
1: धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: क्या हाल है? ठीक है।
3: हाँ जी, हम भी जानना चाहते हैं कि आपके क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, और नहीं अगर होंगे तो बस ये वो दौर शुरू हो चुका है जहाँ पर आप वैसे भी ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। 9:04 का वक्त हो चुका है, आपका फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे, लेकर आपके साथ आ चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त, आपकी रुचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। तो गुड इवनिंग, शामदीद, वेलकम, नमस्कार, जहाँ कहीं भी आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके बिना ये जो रेनबो कैफे की महफिल है ना, ये है बिल्कुल बेकार। ये मुझे एफ एम आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर कि क्या हाल है आपके, कहाँ से सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है, तमाम सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं। बहरहाल फिलहाल ये गाना आप सबके रेडियो सेट्स पर रेनबो कैफे के जरिए, और मैं आपकी दोस्त, आपकी रुचा।

अभी भी इसमें कोई शक है कि हम आपके दीवाने हैं और आप रेनबो के दीवाने हैं, तो अगर आप रेनबो के दीवाने हैं तो कहाँ है, 9:07 का वक्त हो चुका है, आपका बेसब्री से मुझे इंतजार है आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर, जहां पर आपका फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं रेनबो कैफे बिल्कुल शुरू हो चुका है। आपके इमेज पहुंचाऊंगी इस गाने के बाद, बस यही, जुड़े रहिए, सुनते रहिए मेरे अनुरुचा के साथ।

तो दिल से बताएं, हम भी इस वक्त आपको इस पूरे घंटे नच दी देखने वाली चाहत हमारी भी, हालांकि ऐसे नहीं देख पाएंगे पर मन की आंखों से बिल्कुल आपको हम देख सकते हैं। और देखो ना कितने सारे लोग डांस करते हुए आपका जो वो GIF वाला वो होता है ना उसको भेजते हैं मुझे, तब लगता है कि हाँ हमारे साथ साथ आपने वहां पर थिरकना शुरू कर दिया। मेरी तो बात आप जानते ही हैं, कुर्सी पर कम होंगे इस वक्त, इधर तो ज्यादा नजर आएंगे हम आपको मन की आंखों से। बहरहाल 9:12 का वक्त हो चुका है, रेनबो कैफे का ये सफर हम बिल्कुल शुरू कर चुके हैं आपके साथ। मेरे साथ हैं बड़े सारे ईमेल्स, तो क्या कहते हैं चलिए उनकी तरफ। पहला ईमेल जो मेरे पास आया है ये हमेशा की तरह मोनू सेठ साहब ने भेज दिया है और लिख रहे हैं, कोयल जैसी शहद वाली मीठी आवाज वाली जो ऋचा है उनको दिल से स्वागत है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतने अपने प्यार से आपका ईमेल हम तक पहुंचाने के लिए। सुल्तान रजा साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं और इन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से लिख रहे हैं और आपके साथ सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफजल रजा, मोनिश रजा, सादिक और आपके रजा और आपके मम्मी पापा हैं साथ में, संजीदा भी, शाना भी, अच्छा प्रोग्राम आपको लग रहा है, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने इतना बढ़िया खाना भेजा है ना हमको, अभी हम इसको रखें, ऐसे चाय वाय भेजिए बाकायदा, देख कर मुँह में पानी आ गया जो साथ में भेजा है उसको, बट कोई बात नहीं अभी थोड़ी देर में हम उसका भी मज़ा लेंगे। बहरहाल तो आपके साथ रेनबो कैफे इसको कर रहे हैं ये आप तक अच्छे से पहुँच जाए, बस है ना। आपने लिखा है, चाय का नाम सुनते ही मुस्कुराने लगते हो, मेरी तरह तुम भी चाय के दीवाने लगते हो, बात तो बिल्कुल सही कही है। चाय एक ऐसी चीज है ये कि कई बार होठों पर मुस्कान ले आती है, खासकर तब जब आप थके भी हों या तब जब आपको लगता है कि अब थोड़ा सा आपके साथ बैठकर दो चार बातें कर ली जाए, मतलब बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहां पर ये चाय जो है ना क्या ही कहना। बहरहाल अगला ईमेल जो मेरे पास है वो है विजय पाल यादव जी का, लिख रहे हैं कि आप आज का आबशार आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, पसंद आया उसके लिए। और आपने लिखा है कि आपका यहाँ का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, गर्मी का नाम नहीं। हाँ ये बात तो है, आज गर्मी थोड़ी कम है और जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से आने वाले 2-3 दिन भी थोड़ा राहतें रहने वाली हैं, होना भी चाहिए ना, जब इतनी गर्मी के बीच थोड़ा सा ये बारिश हो जाए, मौसम थोड़ा सा ठीक हो जाए तो अच्छा लगता है। आप लिख रहे हैं कि मौसम में कार्यक्रम का आनंद लो और अच्छा लगता है और मिठास भरी आवाज़ का परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आपने हमें लिखा है ज़िला लखीमपुर खीरी से और आपके साथ बबलू यादव भी हैं जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसे ही आप बने रहिए। बापू अंसारी जी भी आ चुके हैं नाचते हुए, यस उन्होंने अपनी प्यारी सी पिक भेज दी है, मतलब वीडियो भेजा उसमें नाच रहे हैं वो, क्या बात है। और आपके साथ में कौन कौन है जो प्रोग्राम सुन रहा है उनका नाम भी पढ़ देती हूँ, नसीम अंसारी, मुन्नान फैज एंड कुलदीप गुप्ता जी भी हैं, सब लोग मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अहमद बाजार बाराबंकी से हमेशा की तरह आपका ईमेल है, देवकली अहमद अहमदपुर बाजार बाराबंकी से। नेक्स्ट ईमेल किसका है इसको भी आप तक पहुंचाया जाए, अशनूर नूर अंसारी जी हैं हमेशा की तरह आपका ईमेल है और आपके साथ वो सारे लोग जो रोज सुनते हैं, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी हैं ग्राम व पोस्ट हरपुर हरहरपुर मटकली जिला बरेली से आपने आपका ईमेल भेजा, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, आपके ईमेल्स भेजते रहिए। और हमें क्या चाहिए है ना, इंद्रपाल मिश्रा जी भी आ चुके हैं, क्या लिखते हैं चलो ये भी पढ़ देती हूँ। आपने लिखा कि आपके आने से श्रोताओं में खुशी की लहरें हैं, ऐसे ही बताइए, सुनकर अच्छा लगता है। और लिख रहे हैं कि मीठी बोली के कारण कार्यक्रम पसंद आता है और सभी को आपने बहुत बहुत बधाई दी है जितने लोग सुन रहे हैं, धन्यवाद, शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। और हमेशा की तरह आपने महोली सीतापुर ग्राम अमृता से आपका ईमेल भेजा है। तो 9:16 का वक्त हो चुका है, क्या कहते हैं गानों का सिलसिला जारी रखा जाए, आप तक वो गाने पहुंचाए जाए जो आपके अंदर वो डांस वांस की जो फील है उसको बढ़ा देंगे, तो बस चलिए 11 गाना आप तक भेज रहे हैं, आप जुड़े रहिए आपकी अपने 107 FM रेनबो के साथ जो है धड़कन लखनऊ की, जिस पर अभी आप इंजॉय कर रहे हैं आपका मोस्ट अवेटेड मोस्ट फेवरेट शो जिसे आप कहते हैं, यस क्या, रेनबो कैफे। और आपके साथ हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी रुचा।

तो हम तो थक गए भैया डांस कर करके. आपका क्या हाल है? मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी आपने बिल्कुल डांस फ्लोर हिला रखा होगा. जिस तरीके से अभी गाने थी ना कि डांस फ्लोर मूड बना के तोड़ने के मूड में हो, तो वैसा ही मुझे लग रहा है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है. और ये हम नहीं कह रहे, ये आपके ईमेल्स मुझे लगातार बता रहे हैं. मेरे पास दीपाली का ईमेल आया, लिख रही है कि जबरदस्त गाने बज रहे हैं और हम डांस कर करके थक चुके हैं. तो आपको क्या लग रहा है कि हम इससे बचें? यहाँ भी वही हाल है. आपके साथ साथ हम भी अपनी जो है कुर्सी पर थोड़ा बहुत दाएं बाएं यूं ही, मतलब आपके साथ साथ आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं हम. अशोक कुमार जी का भी ईमेल आ चुका है मेरे पास, और आपने रायपुर उडारा मितौली लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल भेजा है और लिख रहे हैं गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, आवाज़ पसंद आ रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और आपके साथ में अजय राज, पलिस्तर राज, प्रदीप राज, ये सारे लोग हैं जो मिलकर सुन रहे हैं. तो बस करते रहिए राज, ऐसी क्या बात है. आपका रेनबो कैफे है, आपका रेडियो है, आपका रेनबो है, आपके दिल के करीब है, दिलों की धड़कन है, तो राज करना तो बनता ही है ना, जाहिर सी बात है. अगला ईमेल किसने भेजा है? राम. देखो राज की बात हो रही तो राम राज्य का भी ईमेल आ गया है और लिख रहे हैं कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और आपके साथ साथ सुन रहे हैं कौन कौन. राजू भानु, शंकर भैया हैं, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी, काका और सारे लोग मिलकर इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं. बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमें सुनने के लिए. और आपने लिखा है कि हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, तो आपको भी दिल से धन्यवाद इतने प्यारे ईमेल को हम तक पहुंचाने के लिए. और रही बात आपकी, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये आपको पता ही है कि ये रिक्वेस्ट शो नहीं है, तो फिर वहाँ भेजिए जहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट है, आपकी फरमाइशें पूरी हो सके. तो दोपहर 2 से 3 एंड शाम को 7 से 8, क्या समझे आप. अगला ईमेल किसके पास, किसका है? मोहम्मद आसिफ है हमारे साथ और आपने हमें हैदराबाद से आपका ईमेल लिखा है. तेलंगाना से इस वक्त आप सुन रहे हैं हमें और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, भोजपुरी गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपने लिखा हम बहुत अच्छे हैं, बस गांव नहीं जा पाए. कोई बात नहीं, जल्दी वहां भी चले जाइएगा. पहले जिस काम से वहां गए हैं तो उसको निपटा लीजिए और फिर गांव सब आपको याद करेंगे, सब आपसे मिलेंगे. क्या कहते हैं आप. अगला ईमेल किसका है? वकील अहमद है मेरे साथ और लिख रहे हैं सलाम वालेकुम. तो वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है और तबीयत हमारी इस समय क्यों, क्या हुआ? ठंडा पानी पी लिया था, ज़्यादा पी लिया था, या गर्मी और बाहर ठंडा गर्म कुछ ऐसा हुआ? तो अगर ऐसा कुछ किया है तो इसका ध्यान रखें. और आपने लिखा है कि तूफान आने से मौसम ठंडा हो गया है. और मंसूरी कटका हथौरी जिला सीतापुर से आपका ईमेल है. आपके साथ साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफ शास्त्री की, अमन नवाब भी हैं जो मुझे इस वक्त सुन रही हैं. कहाँ गायब हैं अमन? अपना ईमेल किसके थ्रू भेज रही हैं आप हैं? अगला ईमेल किसने भेजा है? रणधीर गुप्ता. तो रणधीर जी आपने लिखा कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, गाने पसंद आ रहे हैं, दिल से इसके लिए धन्यवाद आपका. और ओखला संगम विहार दिल्ली से आपका ईमेल है और आपके साथ बबीता रानी गुप्ता भी हैं जो इस वक्त प्रोग्राम को सुन रही हैं. रब ने बना दी जोड़ी वाली बात है. रणधीर गुप्ता एंड बबीता गुप्ता, वही याद आ जाता है, रणधीर कपूर एंड बबीता कपूर. बहरहाल अगला ईमेल किसका है? मनीष गुप्ता जी ने ईमेल भेजा है. गोसाईगंज से आपका ईमेल है. प्रोग्राम शिमला में सुन रहे हैं इस वक्त. तो शिमला का तो माहौल बड़ा यू नो अभी और ठंडा ठंडा हो रहा होगा. कैसा है वहाँ का मौसम ये भी ज़रूर से बताइएगा, है ना. और आपने लिखा है कि प्रोग्राम सुनकर बड़ा मज़ा आ रहा है, थकान निकल जाती है जब ये प्रोग्राम आता है. ये बात तो सही है, थोड़ा सा डांस वांस हो जाता है, वार्म अप हो जाते हैं आप इसी बहाने. और आपने लिखा है कि प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, सो गुड. तो थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए. आनंद तिवारी है हमारे साथ, लिखते हैं दौलत नहीं शोहरत नहीं ना वाह चाहिए, है ना, यही है ना, दौलत नहीं शोहरत नहीं ना वाह चाहिए. कैसे हो, बस दो लफ्ज़ों की परवाह चाहिए. एकदम सही बात आपने लिखी. कोई बस प्यार से पूछ ले कि आप कैसे हैं, यकीन मानिए सारी थकान मिट जाती है और अच्छा लगता है कि किसी ने आपका ख्याल रखा. तो बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए. आपने लिखा वो मोहब्बत थी तुम्हारी, नफ़रत भी तुम्हारी थी, हम अपनी वफ़ा का इंसाफ किससे मांगते, वो शहर भी तुम्हारा था, वो अदालत भी तुम्हारी थी. अरे ये रेनबो तो आपका है ना, यहाँ ये इससे जुड़िए और सब कुछ आपका है. आपने लिखा है आनंद तिवारी आपका नाम, दारू कुया मल्लावा हरदोई यूपी से आपका ईमेल है. प्रोग्राम ज़बरदस्त होने वाला है आज, उम्मीद पे दुनिया कायम है. अभी कितनी उम्मीदें पूरी हो रही है ये आप हमको बताइएगा, है ना. सुन करके मोनू सेठ जी वापस आ चुके हैं. क्या लिख रहे हैं? रेनबो कैफे सुनकर हाल और बढ़िया हो गई बार, आप इतनी बताइए ऋचा जी. वैसे प्रोग्राम एकदम झक्कास, लाजवाब, बेमिसाल बात. थैंक यू सो वेरी मच, शुक्रिया, धन्यवाद. और आपने पूछा कि हम कैसे हैं, तो आपकी दुआओं से, आपके प्यार से, ऊपर वाले की दुआओं से फिलहाल तो ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है. तो 9:32 हो चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा विराम दिया जाए, क्या कहते हैं. और उसके बाद वापस लौटेंगे, कुछ और ईमेल्स जो मेरे पास हैं लगातार उन्हें आप तक पहुँचाएंगे. तब तक आए बाएं दाएं जितने हैं सबको लेकर के आइए. अगला गाना वही देने जा रहे हैं जिस जो उस वक्त आपको क्लिक

कर गया होगा. कौन सा? ये वाला. चलिए भेज दिया ये गाना आप सबके रेडियो सेट पर. तो जहां कहीं है आप फटाफट जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आपका रहना हमेशा हमेशा बेहद जरूरी है. 9:32 का वक्त रेनबो कैफे आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर मेरे अनिरुचा के साथ.

तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं, आप फैन तो हो जाएंगे किसके, मेरे नहीं, आपके अपने रेनबो कैफे के, क्या समझे आप कहीं और मत जाइए। जाहिर सी बात है जब रेनबो बचता है तो इससे आप बच नहीं सकते, इसके इसका जो जादू है ना इससे आप बच नहीं सकते हैं। 9:42 का वक्त हो चुका है, आपके ईमेल्स लगातार मेरे पास है। वारिस अली खान साहब का ईमेल आ चुका है, लिख रहे हैं, अर्ज है, आए हैं जब जमीन पर किरदार निभाने, आए हैं जब जमीन पर किरदार निभाने, कुछ ऐसा कर चले कि जमाना मिसाल दे। बात तो बिल्कुल सही कही है आपने, और आगे आप लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम धरती को हरा भरा कर देंगे, और भी अच्छी बात है, जरूरत भी है, जरूरी भी है, करना भी चाहिए आपको। आपने लिखा कि रेनबो कैफे आपका पसंदीदा शो है और इसे आप जरूर सुनते हैं, और आपने लिखा है कि हम प्रोग्राम अच्छा करते हैं, इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और आज मध्य रात्रि तक जागना होगा, और क्या भाई, ये तो जरूरी सी बात है, अगर आप लोग नहीं होंगे साथ में तो हमें कैसे एहसास होगा कि आप हमें सुन रहे हैं ना, तो ये होना भाई बेहद जरूरी है, आपको रहना जरूरी है। और आपने हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमेशा की तरह आपका ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीलू शर्मा आ चुकी है रूपपुर चंदेला से, लिख रही हर

इसके लिए भी आपका बहुत धन्यवाद। और आज मध्य रात्रि तक जागना होगा, और क्या भाई, ये तो ज़रूरी सी बात है। अगर आप लोग नहीं होंगे साथ में तो हमें कैसे एहसास होगा कि आप हमें सुन रहे हैं ना, तो ये होना भाई बेहद ज़रूरी है, आपको रहना ज़रूरी है। और आपने हमें संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हमेशा की तरह आपका ईमेल भेजा, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नीलू शर्मा आ चुकी है रूपपुर चंदेला से, लिख रही हर आहट एहसास हमारा दिला देगी, हवा एक रिश्ता हमारा सुनाएगी, आपके दिल में इतनी यादें हम छोड़ जाएंगे कि ना चाहते हुए भी आपको हमारी याद आएगी। अरे याद तो तब आएगी ना जब आपको भूलेंगे, क्या समझे आप, तो जब भूलेंगे नहीं तो याद आने का कोई मसला ही नहीं है। आपने लिखा कि फहीम जी ने प्रोग्राम किया इसके पहले और आपको पसंद आया, बहुत शुक्रिया, हमको बोल देंगे आपकी तरफ से। और आपने लिखा है कि जल्दी जल्दी आया करो, और आपके प्रिय दोस्त कौसर पूर्णिमा जी को गाने की फरमाइश है। तो फरमाइश की बात तो नीलू आपको पता है ना कि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ना, कोई नए अगर हमारे श्रोता ये बात कहते हैं तो समझ आती, आप तो इतनी पुरानी लिस्टर हैं फिर ये कैसे हो सकता है, तो ये बात आपको मालूम है कि ये रिक्वेस्टेड शो नहीं है, ठीक है। सुनील कुमार जी का ईमेल आ चुका है, आप लिख रहे हैं कि रेनबो कैफे सुनने वाले सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, आवाज एकदम कोयल की तरह मीठी है, अरे वाह क्या बात है दिल खुश हो जाता है, देखो खुशी के मारे आवाज भी सही से नहीं निकल रही है लेकिन अच्छा लग रहा है। और आपने लिखा है कहाँ से, आपका ईमेल है गोकुलपुर लहरपुर सीतापुर से, और आपने गाने की फरमाइश की, अगली बार बजाएंगे क्योंकि आपको पता है कि रिक्वेस्टेड प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको आपके गाने सुनने हैं रिक्वेस्ट वाले ना, तो उसके लिए दोपहर 2 से 3 और शाम को आप 7 से 8 यहाँ ट्राई कर सकते हैं और फिर आपके गाने आप तक पहुंच सकते हैं। साहिब आलम जी का ईमेल है और आपने लिखा कि आजकल रेनबो कैफे नहीं नचा रहा बल्कि आपकी शो की प्रस्तुति नचा रही बात तो एक ही है, हम और रेनबो कैफे एक दूसरे से अलग थोड़ी है, तो बस ये अच्छी सी बात है। आपने लिखा राजा जीपुरम लखनऊ से, बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। सतीश कुमार जी हैं, और आपको पहले तो बता दूं कि आप, मेरा नाम रिचा है और आप इस वक्त सुन रहे हैं रेनबो कैफे, आपकी दोस्त आपकी रिचा के साथ। अगला गाना ईमेल किसका वो पढ़ दे, फिर उसके बाद वापस आप तक गाना पहुंचाएंगे। मोहम्मद आसिफ जी का ईमेल है हैदराबाद तेलंगाना से, तो मोहम्मद आसिफ जी आप शायद सुन नहीं पाए, आपका ईमेल मैंने ऑन एयर किया था, लेकिन अभी आपने लिखा है कि आप फ्रॉक बना रहे हैं और प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, तो फिर देखिए प्रोग्राम भी सतरंगी बनेगी, बढ़िया वाली बनेगी, क्योंकि जहां आप प्रोग्राम सुन रहे हैं वो आपका सतरंगी चैनल है, जिसे आप कहते हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, जिस पर अगला गाना हम आपको देने जा रहे हैं। इस गाने को एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए, कहीं मत जाइए, आपके 100.7 FM रेनबो के साथ। अरे गाना ये रहा जो अब पहुंचा सीधा आपके रेडियो सेट तक।

पहुंचाएगी। 9:52 का वक्त हो चुका है, आपकी ईमेल वापस आप तक पहुंचाने की बारी है। इतने सारे ईमेल है भैया, लगातार फटाफट आप तक पहुंचा दी जाए। जितेंद्र नामदेव जी का ईमेल आ चुका है मेरे पास, और आपने मैं पोस्ट हनौती जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है, और लिख रहे हैं कि हर सांस में तेरी याद आती है और मेरी आंखों में तेरी तलाश होती है। कितनी खूबसूरत है ये चीज़ मोहब्बत, अर्ज कर रहे हैं कितनी खूबसूरत है चीज़ मोहब्बत कि दिल धड़कने में भी तेरी आवाज़ आती है। अब दिल है धड़केगा तो आवाज़ तो आएगी ना, धक धक धक ऐसे करके धड़कना भी चाहिए। और अगर किसी की याद में धड़क रहा है तो फिर क्या ही कहने, मतलब अलग ही बात होती है ना। नीलू

जी वापस आपका ईमेल मेरे पास है, मैंने उसको पढ़ दिया, शायद आप सुन नहीं पाए, लेकिन आपका ईमेल मुझ तक पहुंच चुका है। थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए। राजकमल जी हैं हमारे साथ, ग्राम बरैया से आपका ईमेल है, बाराबंकी सूरतगंज से, और लिख रहे हैं प्रोग्राम की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार हुई थी और इससे लगता है कि गद्दा बस उड़ेगा और उड़ गया। चलिए बहुत शुक्रिया, आपको आवाज़ पसंद आ रही है। आपने लिखा है कि 4 साल की आपकी बेटी है, जब तक प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक डांस करती है। देखो ये है मेरी पक्की वाली लिस्नर, तो मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार। उनको नाम बता देते तो मैं नाम बता करके उनको ये सारा प्यार भेज देते हैं मैं ना, बट कोई बात नहीं, उनसे बोलिए कि अभी भी थोड़ा सा कुछ मिनट बचे हैं हमारे साथ गानों पर डांस करने की, जो उनकी प्रक्रिया है ना उसको रोकेंगी नहीं। अरविंद कुमार बुद्ध दुबे जी का ईमेल मेरे पास आ चुका है, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठा जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से आप मुझे सुन रहे हैं, लिख रहे हैं आपका इंतजार रहता है, फिर चाहे पॉप टाइम हो या फिर रेनबो कैफे। ये अच्छी वाली बात आपने लिखी है, और आपने लिखा है कि प्रोग्राम की शुरुआत गजब अंदाज में हुई, उम्मीद है कैफे में एक से बढ़कर एक गाने धमाल मचाएंगे। आपका ईमेल शायद मुझे तेरे से मिला है, तो अगर आप सुन रहे हैं तो बता दीजिएगा कि मिल गया। आपने लिखा कि आपकी एंकरिंग का जवाब नहीं, ईमेल जरूर शामिल कीजिए, तो हो गया है, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया है, मस्ती और मूड का डांस का मूड है, और आपके साथ श्याम कुमारी, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, गोविंद दुबे, दुबे सभी मुझे सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश मध्य उत्तर प्रदेश से मुझे आप सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए। यास्मीन बानो भी है मेरे साथ और लिख रही हैं, कैसी हैं आप, बिस्वान सीतापुर से आपका ईमेल। आपने लिखा कि आप शार बहुत अच्छा लगा आपको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बशीर बद्र साहब की नज़र जो किया गया, शुक्रिया उसके लिए धन्यवाद, और ये कार्यक्रम भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है। साहिब आलम जी वापस आए हैं, और आपने लिखा कि आपका ईमेल मैं पढ़ चुकी हूँ साहिब आलम जी, बट आपने ईमेल वापस किया है, तो चलिए शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। सतीश कुमार जी आपका ईमेल ऑलरेडी शामिल हो चुका है। रोशनी रावत बहुत देर से आई हैं हमेशा की तरह, कोई बात नहीं, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, आप शार अच्छा लगा, रेनबो कैफे पसंद आ रहा है, दिल से धन्यवाद, लगातार डांस कर रही हैं, ये और अच्छी बात है, करते रहना चाहिए ना। अनिल कुमार जी भी आ चुके हैं हमारे पास, सदाठेर डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आपका ईमेल है, और लिख रहे हैं अभी हम अपने किराने की दुकान पर हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, सॉन्ग अच्छे सुनने को मिल रहे हैं, आवाज़ पसंद आ रही है, और आपने लिखा कि ईमेल पढ़ने का अंदाज सबसे हटके है, जुदा है। बस जब आप कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं ना तो वाकई दिल को छूती हैं, वो जो रोज़ लिखते हैं उससे हट करके। तालिब अंसारी जी भी आ चुके हैं, आपने लिखा कि अच्छा आपकी कॉल कट गई थी फहीम जी के साथ में, तो हमसे जब वो मिलेंगे तो हम कह देंगे कि आपने ईमेल में उन्हें वापस हाय हेलो भेजा था, ठीक है। और आपने लिखा कि आप आई, धमाल वाले गीत सुनने को मिले हैं, और मूड हैप्पी वाला हो गया, प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, अंदाज अलग है, अच्छा है, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। राजा कटरा बाराबंकी से आपका ईमेल। सावित्री देवी जी आ चुकी, 9:56 हो गए, आपका ईमेल मुझे मिल चुका है। बरगदी पोस्ट अर्जुनपुर से आपका ईमेल है, और आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। अगला ईमेल किसका है मेरे पास, आकाश लोधी है, मोनू सेठ जी है वापस आ चुके हैं, रणधीर गुप्ता जी धन्यवाद के साथ हैं, और केसरी नंदन जी हैं, शुक्रिया, अलीगंज सुल्तानपुर से सुन रहे हैं आप मेरा प्रोग्राम, आपको अच्छा लग रहा है। सत्यम वर्मा, एम के राज, गुलफसा सिद्दीकी, और आपके साथ साथ कौन है, युवराज सिंह भी हैं, सारे लोग मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। आस्था, रामिका, अर्तिका और अंशिका ये हैं जो आपके साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं, युवराज सिंह का ईमेल। तो भैया 9:56, अगर किसी का ईमेल, देखो फिर दो ईमेल आ गए, बबलेश पवार जी का ईमेल है, और आपने हमें लिखा है गांधी चौक बाड़मेर राज से, बबलेश पवार और डैनी पवार है जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, अच्छा लगता है जब भी मेल आ जाते हैं। अरविंद कुमार जी वापस आपका ईमेल आया, मैंने पढ़ दिया आपका ईमेल, बहुत शुक्रिया, आपने लिखा कि गाने वाकई बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। और अब हमारे इस शो को वाइंड अप करने की बारी बहुत जल्दी से तेज़ी से हमारी तरफ आ रही है, क्योंकि 9:57 का वक्त हो चुका है, इस शो को यहाँ वाइंड अप करेंगे, और जब यहाँ से जाएंगे तब लेकर आएंगे आपके लिए आपके दिल का के बेहद करीब सदाबहार नगमों से सजा हुआ गीत, वो प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं रजनीगंधा। सुनना नहीं भूलिए, क्योंकि आपका रहना है बेहद ज़रूरी, आपके बिना तो हम हमेशा ही कहते हैं सारी बातें हैं अधूरी। तो चलिए फिलहाल आज के लिए आपकी दोस्त आपकी आरजे ऋचा को दीजिए इजाज़त, पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो जो है धड़कन लखनऊ की, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आपके साथ।

नमस्कार, रात के 10 बजे हैं। सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्रेटर नोएडा स्थित बैटरी पुनर्चक्रण एवं महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र की अग्रणी कंपनी के अत्याधुनिक संयंत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बैटरी रिसाइकिलिंग प्रक्रियाओं और भारत में हरित ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका की सराहना की। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बैटरी रिसाइकिल और महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति देश की आत्मनिर्भरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रेलवे बोर्ड के सदस्य आर राजगोपाल ने आज बनारस रेल इंजन कारखाना का विस्तृत निरीक्षण किया तथा लोको उत्पादन, गुणवत्ता, नवाचार एवं अवसंरचनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की। इस अवसर पर बरेका के महाप्रबंधक आशुतोष पंत एवं प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष गण उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान श्री राजगोपाल ने लोको फ्रेम शॉप, लोको असेंबली शॉप, ट्रक मशीन शॉप का भ्रमण कर रेल इंजनों के निर्माण, असेंबली, कवच फिटेड लोको का परीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं का अवलोकन किया। जौनपुर जिले के मछली शहर से सांसद प्रिया सरोज आज गुलमर्ग, जम्मू एवं कश्मीर में संसदीय स्थायी समिति की बैठकों में सहभागिता की। बैठकों के दौरान अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक, सफाई कर्मियों एवं जनजातीय समुदायों के कल्याण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति, प्रभावी क्रियान्वयन एवं लाभार्थियों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्ट्रीट फूड 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
1: समझे जनाब याली।
0: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
2: रात के खामोश पहर में

0: कौन हूँ मैं।
1: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। रजनीगंधा हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: ये है 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: रात के 10:04 का वक्त, एक बार फिर से आपके साथ मैं, आपके दोस्त, आपके रिचा लेकर आपके लिए वो कार्यक्रम जहां से आप सुनते हैं सदाबहार गीतों से भरे हुए खूबसूरत सफर को, समा को। तो बस गुजारिश, इल्तिजा आपसे हमेशा की तरह कि यहीं रहिए मेरे साथ, क्योंकि आपका रहना है बेहद ज़रूरी।

तो कहीं ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं ना कि किसी हसीन शाम को कोई नज़र एक नज़र से टकराती है और उसके बाद शुरू होता है दिलों का वो सफ़र जहां ख्वाबों का खूबसूरत कारवां चलता है, वो ख्वाबों का खूबसूरत कारवां जो प्यार इश्क मोहब्बत की बानगी के साथ ना जाने कितने सिलसिले आपके दिल दिमाग जहन में किसी ताने बाने की तरह बुन देते हैं। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी ये हसीन इत्तेफाक हुआ है जिसने आपके साथ जुड़कर मोहब्बत के ताने बानों का एक सिलसिला आपकी ज़िंदगी में शुरू किया, तो बस रुक जाइए, ठहर जाइए, थम जाइए यहाँ मेरे साथ जहाँ इस वक्त आप सुन रहे हैं रजनीगंधा। और अगर ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है ना, तो ये जो अगला गाना है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

वहमो गुमान से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

रात चुप है मगर हवाओं में एक सरसराहट है, रात चुप है मगर हवाओं में एक सरसराहट है, ये मोहब्बत की दस्तक है या दिल की बगावत है। महक उठती है रूह रजनीगंधा की खुशबू से, महक उठती है रूह रजनीगंधा की खुशबू से, या खामोश रातों में तुम्हारी यादों की आहट है।

0: शायद यही खूबी है मोहब्बत की, प्यार में दिल इतना डूबता है कि जरा सी आहट पर भी हर बार हर पल ये लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं। अच्छा, आसमान में निकला ये चांद यूं तो जैसे हर बार बेहद खूबसूरत लगता है, लेकिन पता नहीं आपने कभी गौर किया है कि नहीं, किसी किसी रोज़ ये चांद वाकई रोज़ से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक वैसे जैसे आज का चांद है, पूनम का चांद जो है बाहर, है ना। आसमां पर पूरा चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। आप अगर गौर से देखें तो आप उसकी इस आबोताब को महसूस कर पाएंगे। उसकी सफ़ेद ठंडी चांदनी ज़मीन पर इस तरह बिखर रही है जैसे किसी ने मखमली सफ़ेद चादर सी बिछा दी हो। और इस चांदनी की साए में जब ये ठंडी मदहोश करने वाली फिजाएं चलती हैं ना, तो पेड़ों के पत्ते भी कहीं धीरे से आकर गुनगुनाने लगते हैं। और फिर कुछ यूँ लगता है जैसे मोहब्बत, चांदनी, रातें, नज़र और ये खूबसूरत फिजाएं सब एक साथ मिलकर जैसे कोई हसीन सी साजिश रच रहे हों। तो पता है, जिनका पता हवाएं आकर सीधे कानों में देती हैं और कहती हैं कि कोई तो है जो इस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा है। हाँ, ये वही तो है जिसकी आहट आपके दिल पे एक छोटी सी बात पर महसूस हो जाती है, और तभी तो आप कहते हैं कि कहीं ये वो तो नहीं। और जब ये प्यार आपको पुकारता है तो उस पुकार की, उस सदा की तरफ आप ना खींचे जाएं, ये हो नहीं सकता। 10:30 का वक्त, रजनीगंधा आपकी अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रिचा के साथ।
1: और ये कंटिन्यू नहीं, जानवर है उनकी तरफ देख के मदद मांगना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प दे जाएंगे।

यही तो जादू है ना मोहब्बत का, जो पल भर में अपना असर दिखाती है, जो एक दिल से दूसरे दिल तक सीधा उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मोहब्बत ढूंढने से मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मोहब्बत तो वो एहसास है जो तब जागता है जब चांदनी रातों में किसी की नज़रों का जादू इन हसीन खूबसूरत फिजाओं से मिलकर सीधे दिल में उतर जाता है। वो नज़र जो चुपके से उठती है, किसी का अक्स तलाशती है, और जब वो सामने वाले की नज़रों से टकराती है तो मानो जैसे वक्त वहीं कहीं ठहर सा जाता है। उस एक पल में नजरों ही नजरों में सदियों की बातें हो जाती हैं। ना कोई शिकवा, ना कोई शिकायत, बस एक खामोश इकरार जो इन खूबसूरत फिजाओं में खुल कर सांस लेता है, जो शायद कुछ यूं कहता है कि आंखों आंखों में हम तुम हो गए दीवाने।

अक्सर लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत महज एक लफ्ज़ है, इसकी कोई मुकम्मल परिभाषा नहीं। लेकिन ये बात शायद आप भी जानते हैं कि मोहब्बत महज एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि शायद दास्तान है, इबारत है, कहानी है प्यार इश्क मोहब्बत की, जिसे अक्सर हम और आप कहते हैं, सुनते हैं और गढ़ते हैं। और जब आसमान में खिले इस चांद के साथ उस रात को देखती हूँ ना, तो लगता है कि जैसे कायनात भी खुद मोहब्बत की एक नई किताब हमारे सामने खोल देती है अक्सर, ये बताने के लिए कि देखो मोहब्बत के कितने सारे आयाम तुम्हें इस रात के साथ, इस चांद के साथ दिखाई दे जाएंगे। तमाम परिभाषाएं जो दिलों के करीब होती हैं। और फिर मुझे लोग ये कहते हैं ना कि मोहब्बत महज एक लफ्ज़ है, उसे कहीं झूठा सा साबित करती हैं। और अगर आज की रात की बात करें तो ये तो वैसे भी कोई आम रात नहीं, बल्कि एक ऐसी रात है जिससे किससे और क्यों कर मोहब्बत ना हो जाए।

रात के 10:56 का वक्त हो चुका है. रजनीगंधा के फर्स्ट हाफ को यहीं पर हम रोकेंगे, लेकिन अगले घंटे भी आप रहेंगे मेरे साथ, हमें है ऐसा पूरा यकीन, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बिना ये सफर कभी पूरा नहीं होता.

नमस्कार। रात के 11 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ में 9 करोड़ की रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान का स्मरण कराएगी। कानपुर देहात जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद कानपुर देहात के विकास खंड अकबरपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पत्रा सड़वा में झोपड़ी में अचानक आग लग जाने की दुखद घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई थी। प्रभावित परिवार को शासन द्वारा अनुमन्य राहत सहायता प्रदान की गई। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की तथा अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। सुल्तानपुर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने रायबरेली रोड स्थित अंकारीपुर दुबेपुर में ईवीएम एवं वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी को बताया गया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें वेयर हाउस में सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रांग रूम की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद रखी जाएं और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह गोरखपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का विधिवत दर्शन पूजन किया। सभापति के दर्शन पूजन के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही। उन्होंने गोरखनाथ पीठ की आध्यात्मिक परंपरा की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थान केवल आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: ऐसे ही सफर पर ले चलता है हमारा ये खास प्रोग्राम रजनीगंधा। हर रोज रात 10 से 12 बजे सिर्फ एफएम रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: ये है 100.7 एफएम रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: तो रात के 11:05 का वक्त, वापस एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल, इस उम्मीद के साथ कि हाँ आप अभी भी हैं मेरे साथ, और पूरी उम्मीद ये भी कि आप रहेंगे रात 12 बजे तक इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए। चलिए वापस आपके साथ, मैं आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर कार्यक्रम रजनीगंधा में।

जानते हैं हम कि रात सुहानी जाग रही है और इस रात के साथ साथ आपकी आंखों में नींद भी अभी जाग रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे आपके साथ मेरा साथ जो देना है, वहां जहां से रजनीगंधा का ये खूबसूरत सफर लेकर हम आपके साथ चलते हैं। जानते हैं ना वो ये रात भी, ये नींद भी, कि बिना आपके ये सफर मुकम्मल जो नहीं होगा। रात के ठीक इस पहर में जब पूरी दुनिया सो जाती है, यकीन मानिए तब कुछ दिल हैं जो धड़कते हैं किसी की याद में, कुछ आंखें हैं जो जागती हैं किसी के ख्याल में। रात का ये पहर वाकई बड़ा जादुई है। सब तरफ जब शोर थम जाता है और दिल की आवाजें साफ सुनाई देने लगती हैं, जब इस गहरी खामोशी में मोहब्बत का सुर्ख रंग घुलता है तो लफ्ज कम और जज्बात ज्यादा बोलने लगते हैं। और फिर रात के इस खामोश पहर में बन जाती है न जाने कितने प्यार भरे दिलों की आपकी और हमारी मोहब्बत की गवाह, जिसकी दास्तान कभी ना भुलाई जा सकने वाली सदा बनकर फिजाओं में गूंजती है बरसों। तो चलिए एक बार फिर से मिलकर हम और आप दोनों सुनते हैं उस सदा को जो सीधा आती है एक दिल से और पहुंचती है सीधा उस दिल में जहां प्यार, इश्क, मोहब्बत, इनके अफसाने पलते हैं।

है ना कितनी अजीब सी बात, किसी का याद आना और धड़कनों में जैसे किसी सुंदर संगीत का बजना, हवाओं में खूबसूरत खुशबू का घुल जाना और वो चंदा जो आसमान में है इस वक्त, उसका अपनी खूबसूरती के साथ, सादगी के साथ ज़मीन पर किसी मखमली से चादर की तरह बिखर जाना। लोग कहते हैं कि जीवन एक खूबसूरत संगीत है और मोहब्बत कुदरत का दिया हुआ वो तोहफा जो सबसे नायाब और सबसे खूबसूरत है, जो ज़िंदगी के संगीत को और भी खूबसूरत बना देता है। कहते हैं कि जब ये तोहफा किसी को मिलता है ना, तो ज़िंदगी के सारे बेसुरे तान भी सुरीले से लगने लगते हैं। कभी बैठकर गौर से सुनिएगा, जब सब कुछ शांत होता है तब भी कहीं एक आवाज़ सुनाई देती है, आवाज़ हमारी सांसों की रवानगी की, आवाज़ दिल की धड़कनों की, आवाज़ हवाओं की सरसराहट की और ज़िंदगी बनकर फिजाओं में खुलने वाली मोहब्बत की, वो मोहब्बत जिसका संगीत शायद हर दिल अपनी धड़कन में बसाना चाहता है, कुछ इस गीत की तरह जो ये कहता है कि ये वही गीत है जिसको मैंने धड़कन में बसाया है।

तो जहाँ एक मन कभी एक आस लेके चलता है कि कभी किसी मोड़ पर वो अपनी जिंदगी के जो रास्ते हैं, मोहब्बत के जो रास्ते हैं, उनको पा लेगा, तो वहीं मोहब्बत का सबसे कड़वा और सच्चा सबक ये भी है कि हर मोहब्बत मुकम्मल हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं अक्सर, कुछ हाथ बीच राह में भी छूट जाते हैं, लेकिन संजीदा दिल जानते हैं कि अधूरापन भी एक तोहफा है। मोहब्बत हमें ये नहीं सिखाती कि किसी को पा लिया जाए, बल्कि वो हमें ये भी सिखाती है कि किसी को खोने के बाद भी उसके लिए दिल में दुआ कैसे रखी जाए। रजनीगंधा का फूल जब सूखकर किताब के पन्नों में दब जाता है ना, तब भी उसकी खुशबू कभी मरती नहीं है। अधूरी मोहब्बत का सबक भी कुछ ऐसा ही है, वो दिल के किसी कोने में एक मीठा सा दर्द बनकर हमेशा जिंदा रहती है, सिखाती है और बताती है हमें कि हाँ, हमेशा मिल जाना या पा लेना, यही मोहब्बत की निशानी नहीं है।

मोहब्बत की आखिरी हद भी तो यही है ना, मिट जाना, जहां मैं और तुम का फर्क मिट जाए, जहां जिस्मानी सोच पीछे छूट जाए और सिर्फ दो रूहें एक में मिल जाएं। जरा देखिए इस पल को बाहर जाकर, चारों तरफ फैला ये मखमली सन्नाटा और उसमें घुली हुई रजनीगंधा की तीखी मगर रूह को महका देने वाली खुशबू। वो खुशबू गवाही है उस इश्क की जो दूर रहकर भी मुकम्मल है। जब आप किसी से इस हद तक मोहब्बत करते हैं ना, तो वो इंसान भले ही आपके सामने नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं वो आपके भीतर ही सांस ले रहा होता है। आपकी हर धड़कन में हर पल उसका ही नाम गूंजता है, आपकी हर सोच पर उसका ही अक्स तैरता है, जैसे दिल की हर धड़कन पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही इख्तियार हो। 11:41 का वक्त, रजनीगंधा आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर आपकी दोस्त रिचा के साथ।

पता है अक्सर लोग दर्द से भागते हैं, खासकर मोहब्बत में मिलने वाले इस दर्द से। लेकिन सच तो ये है कि मोहब्बत में मिलने वाला ये दर्द भी जिंदगी को एक गहराई देता है। ये कैसी गहराई? जो हमें अंदर से तोड़ती जरूर है, लेकिन जब हम दोबारा जुड़ते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा संवेदनशील और खूबसूरत हो जाते, संजीदा हो जाते, चीज़ों को समझने वाले हो जाते हैं। यकीन मानिए, जिसने कभी खोया नहीं वो पाने की असल कीमत भी कभी समझ नहीं सकता, और जो इस कीमत को समझ जाते हैं ना, वो फिर कुछ यूं ही गाते हैं कि तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है।

रहते हैं, चलते रहते हैं जब तक कि सफ़र ख़त्म ना हो जाए। ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी जीने में बस एक ही फ़र्क है, वो है संजीदगी। जो वक्त को समझ गया कहते हैं कि वो ज़िंदगी को जीत गया, और जो ज़िंदगी को जीत जाता है मानते हैं लोग कि फिर उसके लिए ज़िंदगी किसी प्यार के गीत की तरह ही होती है।

पता है, जिंदगी किताब में सबसे महंगे सबक अक्सर वही होते हैं जो हमने सबसे सस्ती गलतियों से सीखे होते हैं। हकीकत यही है कि यहाँ कोई मुसाफिर रुकता नहीं कभी, हम बस यादों के काफिले लेकर चलते।

नमस्कार, रात के 12 बजे है, सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में खेत बचाओ अभियान की तैयारियों के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR ऐप मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से राज्य में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू कर दिया गया है। जून महीने में उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। अलीगढ़ में राष्ट्र सेविका समिति के प्रवेश प्रबोध समिति शिक्षा वर्ग का शुभारंभ CV गुप्ता विद्यापीठ सिद्धारपुर मथुरा रोड में हवन पूजन के साथ हुआ। पूजन में मुख्य यजमान नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा, गौरव हरकुट व विष्णु भैया सपत्नीक उपस्थित रहे। नगर आयुक्त ने समिति का वर्ग कर रही सभी शिविरार्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण के लिए एक प्रभावी प्रयास है। और अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:13 पर और सूर्यास्त 6:54 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। 100.7 मेगाहर्ट्ज़।